आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की

0: सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती,
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन स्वामी विवेकानंद का कथन है, जब तक जीवन है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। ये था आज का चिंतन। वंदनवार में लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में लीजिए, सुनिए आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे रामचरितमानस का भाग 214। 6:45 से संगीत सरिता में आप सुनेंगे श्रृंखला सीने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला का 9वां भाग आज आप सुनेंगे। कलाकार तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन। सात बजे से भूले बिसरे गीत और 7:30 से हम हैं राही प्यार के। 8:15 और दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी लेकर आएंगे। सुबह व रात्रि 8:30 से, माफ कीजिए, सुबह 8:30 से और रात्रि 8:15 से चित्रलोक। सुबह 9:30 से लेकर आएंगे आज के फनकार। आज ये प्रोग्राम केंद्रित होगा फिल्मकार राज खोसला पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। दस बजे से पिटारा में सुनिए मधुमेह कारण और बचाव, डॉक्टर कुणाल मेहता से बातचीत आप सुनेंगे। 11 बजे से रंग तरंग और 12:05 से यादों की महफिल। 1 बजे से कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2:30 से सदाबहार नगमे और 3 बजे लेकर आएंगे प्रोग्राम सखी सहेली।

चार बजे से लेकर आएंगे पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत। पांच बजकर तीस मिनट से तराने नए पुराने, छह बजकर पैंतीस मिनट से भक्ति गीतों का कार्यक्रम संध्या रंजन सुनिएगा।

सात बजे से लेकर आएंगे फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। सात बजकर 45 मिनट से इंद्रधनुष में पॉप एक्सप्रेस।

रात 8 बजे हवा महल में सुनिएगा झलकी। मैं मछली तो नहीं, लेखक केपी सक्सेना, निर्देशक पुरुषोत्तम द्वारवेकर। रात 9 बजे से आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 से आज के फनकार केंद्रित होगा गीतकार असद भोपाली पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात 10 बजे समय होगा छाया गीत का, ढलती जाए रात 10:30 से, और रंग तरंग का वक्त होगा रात 11 बजे से। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

चित्रकूट में माताओं से श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साक्षात्कार और चारों भाइयों के परस्पर मिलन का दृश्य जहां एक ओर स्नेह सिंचित था, वहां दूसरी ओर अयोध्या पति के निधन के समाचार ने एक बार फिर सभी को शोक के सागर में डुबो दिया। दूसरे दिन कुलगुरु के आदेशानुसार वैदिक रीति से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्राद्ध संपन्न करके वैसे ही शुद्ध हुए जिस प्रकार तीर्थों के आवाहन से पतित पावनी गंगा शुद्ध होती हैं। अद्भुत दृश्य उपस्थित है चित्रकूट में, जहां दुखी अयोध्यावासी कंदमूल और फल का आहार करते हैं। भरत, शत्रुघ्न, मंत्रियों तथा माताओं को व्याकुल देख श्री राम को एक एक पल भारी हो रहा है। अतः उन्होंने वशिष्ठ जी से सबको लेकर अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: नमस्कार रविंद्र जी, ताल वाद्यों की फिल्म संगीत में जो उपयोगिता है और जिस तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग तालों की चर्चा भी हम कर रहे हैं।
2: हाँ।
1: ताल कहरवा जितना एक और ताल है दादरा।
2: हाँ।
1: वो भी बहुत प्रचलित है।
2: बिल्कुल है।
1: और बहुत से ऐसे गाने हैं जिनमें ताल दादरा का उपयोग हुआ है, तो मूल रूप से ये दादरा ताल कैसे बजाया जाता है?
2: जैसे केरवा हमें कई सारे गीतों में सुनने को मिलता है
1: जी,
2: वैसे दादरा है, दादरा भी हमें कई सारे गीतों में सुनने को मिलता है
1: जी।
2: तो दादरा जो है वो तो मूलतः दादरा तो केवल धा धी ना, ये तो दादरा ताल है
1: जी।
2: लेकिन ये जो ताल है, ये ताल कई सारे गीतों में आया है। तो इसको जब गीतों में ढाला जाता है इस ताल को, तो उसमें जो है वो एक नजाकत लाने की दृष्टि से उसमें वो परिवर्तन किया जाता है
1: जी।
2: तो वो दादरे में जो परिवर्तन है वो इस तरह है।

0: मतलब धाधीना धातीना जो है उसका ये परिवर्तित रूप है
1: जी।
0: लेकिन परिवर्तित रूप जो गीतों में बहुत सटीक होता है, सटीक बैठता है, और वहां से फिर गीत का जो प्रभाव है वो भी बढ़ता है
1: जी।
0: तो दादरे में तो वैसे कई सारे गीत बने हुए हैं
1: जी।
0: तो दादरा जैसे हमने कहा था कि अलग अलग पैटर्न होते हैं, तो वैसे दादरा के भी कई सारे पैटर्न इस्तेमाल किए गए हैं, और वो पैटर्न ही एक वजह है कि जिसकी वजह से हर गाना हमको सुनने में अलग लगता है। एक गाने की दूसरे गाने में समानता नहीं लगती, हर गाना अपना अपना एक खुद का अस्तित्व लेके आता है।
1: जी जी जी।
0: तो ये जो है ये चमत्कार उस पैटर्न का है, जो पैटर्न वो गीत को सजाता है,
1: और हर संगीतकार अपने ढंग से अपनी संगीत रचना में इस ताल का उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल करते हैं।
1: तो अब बात वही है कि फिर हमें किसी फिल्मी गीत का उदाहरण लेना होगा।
0: हाँ, मेरा बहुत पसंदीदा गीत है
1: जी,
0: जिसमें दादरा का बहुत प्रभावी उपयोग किया गया है।
1: हाँ।
0: वो है वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते।
1: बड़ा सुंदर गाना है, जहां आरा फिल्म का ये गीत है।
0: हाँ।
1: और संगीतकार है मदन मोहन साहब, आवाज लता मंगेशकर की।

0: रविंद्र जी, जिस प्रकार कहरवा ताल के प्रकार आपने बताए,
1: हाँ,
0: वैसे ही दादरा ताल के भी कुछ प्रकार हैं, वो कौन से हैं?
1: दादरा ताल के भी प्रकार हैं। अभी मैंने बताया कि

0: अभी ये इसी रूप को और थोड़ा सा बदला है, उसको कहते हैं खेमटा।
1: अच्छा,
0: ये खेमटा जो है गरबा नृत्य के लिए, मतलब गरबा नृत्य के जो असंख्य गीत है
1: जी जी,
0: तो उसमें हम लोग हमेशा सुनते हैं और उसपे गरबा नृत्य गुजरात में होता है।
1: नवरात्रि के दौरान लगभग सभी भारतीय जानते हैं कि डांडिया खेला जाता है, रास गरबा होता है, तो गरबा में जो गीत बजते हैं वो इस खेमटा ताल
0: में है। तो वो खेमटा कैसे है,

0: वाह क्या बात है।
1: इसमें मैंने दो प्रकार भी किए हैं
0: जी।
1: अभी खेमटा जो है वो खेमटा का आगे थोड़ा सा रूप बदला है, मतलब लय बढ़ती है या उसके बाद में जो उसका जिस तरह से उसको बजाया जाता है उसको कई जगह पर हिंच भी कहते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, तो वो जो हिंच है वो इसी मतलब खेमटा के साथ में ही वो जुड़ी हुई है। अक्सर ढोलक के साथ में जब तबला ये दादरा का ये प्रकार बजाया जाता है
0: जी।
1: तो ढोलक के साथ में फिर वो उसकी नजाकत और भी अच्छी लगती है और खूबसूरत लगता है वो
0: जी।
1: और उसी के लिए वो उस तरह से उस अंदाज में बजाया जाता है।

0: वाह, तो अब फिल्म संगीत में हमें खेमटा ताल कहाँ सुनने को मिलता है, या ताल हिंच की आप बात कर रहे थे।
1: हाँ,
0: इसे अगर फिल्म

0: संगीत में ढूंढने जाए तो कौन से गीत याद आ रहे हैं?
1: फिल्म सरस्वती चंद्र में मैं तो भूल चली बाबुल का,
0: जी जी जी, इसमें खेमटा ताल का बहुत सुंदर इस्तेमाल हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: और हिंच हमें कहाँ सुनने को मिलती है?
1: दिल अपना और प्रीत पराई, ये जो गाना है
0: जी,
1: उसमें वो ढोलक के साथ में मैं
0: शीर्षक गीत की आप बात कर रहे
1: हैं। शीर्षक गीत।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आइए इन दोनों गीतों की झलक अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

श्रोताओं, लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में ताल खेमटा पर आधारित इस गीत की झलक आप सुन रहे थे, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और अब सुनते हैं दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म के शीर्षक गीत की झलक, जिसमें ताल हिंच हमें सुनने को मिलता है। संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: साल हिंच में निबद्ध ये गीत था दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में, संगीत शंकर जयकिशन का। इसी के साथ हमें अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आज आप सुन रहे थे

0: इस श्रृंखला की नौवीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: ये है विविध भारती कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

मस्त कलंदर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में। असद भोपाली ने इसे लिखा था, हंसराज बहल का संगीत था। आज गीतकार असद भोपाली जी की पुण्यतिथि है। आज भूले बिसरे गीत में उन्हीं के लिखे गीत आपको सुनवा रहे हैं और आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार जो कि केंद्रित होगा गीतकार असद भोपाली पर।

सुमन हिमाड़ी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मिस्टर क्यू से। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा था और मनोहर ने संगीत दिया था। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत विविध भारती से।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

तू नहीं तो और सही, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। रवि ने संगीत दिया था और असत भोपाली ने इस गीत को लिखा था।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

रंगीय राजा ये था फिल्म का नाम। तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। शिवराम ने संगीत दिया था और इस गीत को लिखा था असद भोपाली ने।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अली बाबा और 40 चोर फिल्म से। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा था, उषा खन्ना का संगीत था। आज का ये कार्यक्रम गीतकार असद भोपाली जी पर आधारित है। आज उनकी पुण्यतिथि है और आज रात 9:30 पर आज के फनकार उन्हीं पर केंद्रित होगा।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे अफसाना फिल्म से। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा था, उसने लाल भगत राम का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं संपन्न होता है।

दिल की बातें दिल ही जाने, रूप तेरा मस्ताना, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसे लिखा था असद भोपाली ने। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं गीतकार असद भोपाली द्वारा लिखे गीत।

0: मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाजों में गुमराह फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। उषा खन्ना ने संगीत दिया था और इसे लिखा था असद भोपाली ने।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम हैं राही प्यार के। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान ज़ुल्फ़ें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?

हम सब उस्ताद हैं, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और असद भोपाली ने इसे लिखा।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले को आप सुन रहे थे। इस गीत में फिल्म का नाम था तू नहीं और सही। असद भोपाली ने इसे लिखा था और रवि का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता। बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम है राही प्यार के।

आशा भोसले और तलत महमूद को आप सुन रहे थे। इस गीत में मस्त कलंदर फिल्म का नाम था। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम हम है राही प्यार के यहीं संपन्न होता है।

0: इस समय सवेरे के 8 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा

0: अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकीप और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
4: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।

0: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
0: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रह रहा हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की

0: मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

ये जवानी है दीवानी, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत इस फिल्म से। आवाजें श्रीराम और शिल्पा राव की, बोल है अमिताभ भट्टाचार्य के और धुन बनाई है प्रीतम ने।

फिल्म संगीत में आगे बढ़ते हैं और लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत, आई हेट लव स्टोरीज। इस फिल्म से आवाजें श्रेया घोषाल और सोना की। इस गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने और वहीं धुन बनाई है विशाल और शेखर ने।

फिल्म संगीत का अगला और आखिरी गीत लीजिए सुनिए, युवराज फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक और जावेद अली की। इस गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, वहीं सुर दिए हैं AR रहमान ने।

युवराज फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। इस समय सवेरे के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार।

नमस्कार, आदाब, खम्मा घणी। सूरज की तरह दमकते चमकते रहिए, और जो ये सुबह आपके लिए एक नई सौगात लेकर आई है, नए ख्वाब लेकर आई है, उसके इंतजार के साथ ही हमारा ये प्रोग्राम जो है नमस्कार कार्यक्रम, आप सभी का पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है।

जी श्रोताओं, विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वो सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक हमारे व्यवहार में भी दिखे। इसलिए सिर्फ विचारों को सुनना, पढ़ना और छोड़ देना नहीं होना होता है, बल्कि उनके साथ जीना भी हमें आना चाहिए। और इस बात के साथ आगाज हो चुका है आपकी फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का।

तो श्रोताओं, ट्रांसमीटर पर हैं नरेंद्र सिंह राठौर, प्रकाश पंवार। और कंट्रोल रूम से नियंत्रण कमान संभाल रहे हैं सुनील जयपाल।

0: और श्रोताओं टीम परिचय में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज अनाउंसर ऑन ड्यूटी हमारे साथ कौन है। जी हाँ, आज हमारे साथ अनाउंसर हैं निशिका बोराना और कविता सांखला। और श्रोताओं हमारे प्रोग्राम की प्रस्तुति और संयोजन है राजेश लामरोड का। और नमस्कार की टीम में हम आपके साथ हैं दो दोस्त। मैं हूं सीमा शर्मा और मेरे साथ
1: नेहा रांकावत।
0: तो श्रोताओं हमारी पूरी टीम का नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
4: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
6: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
7: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: नेहा, एक बात बताओ।
1: पूछो।
0: जो बच्चे होते हैं उन्हें सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: खिलौने हो गए, झूले हो गए, झूला झूलना उनको बहुत पसंद होता है, और ऐसे ही घूमते रहना पार्क में, वो भी उन्हें बहुत पसंद होता है।
0: पसंद होता है। और घूमते घूमते अगर मेले में चले जाएं तो मेले में उन्हें सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: मेले में घुसते ही एंट्रेंस पे ही उन्हें दिख जाते हैं गुब्बारे, तो गुब्बारे तो उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं।
0: बिल्कुल, हम देखते हैं ना कि मेले की एंट्रेंस पे ही बहुत सारे लोग जो है गुब्बारे फिरकियां लेकर खड़े होते हैं, और जहां पे रंगीन गुब्बारे दिख जाते हैं बच्चों का मन वहीं पे मचल जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बिल्कुल ऐसी ही एक छोटी सी बात तुमसे शेयर करती हूँ, हमारे श्रोताओं को भी बताते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां पर हर घर में रंग बिरंगे फूलों से सजावट होती थी। वहीं पे एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम था मोहन। बहुत खुश मिजाज था और बहुत हंसमुख बच्चा था। उसे भी जैसे दूसरे बच्चों को पसंद होते हैं, पसंद क्या थे?
1: गुब्बारे।
0: गुब्बारे। तो हर रविवार को मोहन जो था वो अपने पिताजी के साथ गांव के पास एक मेला लगता था, वहां जाता था। तो मेले में गुब्बारों का ढेर लगा रहता था, लाल पीले हर तरह के बहुत खूबसूरत गुब्बारे। उसे आसमान में उड़ते हुए देखना भी बहुत अच्छा लगता था और खरीद कर भी लाता था। और उसके पिताजी को क्योंकि पता था कि उसे गुब्बारे बहुत पसंद हैं, तो वो उसे गुब्बारा खरीदवा कर दे देते थे। तुम्हें पता है क्या होता है कि एक बार ये जो मोहन था है ना, मेले में गया, और जब मेले में गया तो इसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है। जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो उस बच्चे वहाँ पे बहुत सारे गुब्बारे लेकर बैठा है। और जो गुब्बारे हैं लेकिन बहुत ही फीके, थोड़े से खराब इस तरह के गुब्बारे थे। तो उसने बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से मोहन को देखा और कहा कि बेटा एक गुब्बारा खरीदोगे? तो मोहन ने कहा कि भाई खरीदना तो चाहता हूँ, गुब्बारे तो मेरे फेवरेट हैं, लेकिन आपके गुब्बारे बहुत गंदे हैं। आपके गुब्बारे ना बहुत टूटे फूटे से लग रहे हैं।
1: टूटे फूटे से।
0: हाँ, फटे हुए से लग रहे हैं, है ना? क्योंकि बच्चा था, उसे वो भाषा जिस तरह से समझ में आती थी उसने वैसे बोली। तो जो वो व्यक्ति था वो बोला, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, गुब्बारे मेरे गंदे भी हैं, फटे हुए भी हैं, लेकिन ये गुब्बारे मेरे बचपन से मैंने सहेज कर रखे हैं।
1: अरे वाह।
0: मैंने इन्हें बहुत सुरक्षित रखा है क्योंकि मैं गुब्बारों से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई इन गुब्बारों को ले और इनको फिर से सुंदर बना करके हवा में उड़ाए और इनको उड़ान भरने दे। तो मोहन ने जब उस व्यक्ति की तरफ देखा तो उसे कहीं ना कहीं ये लगा कि जो प्यार मेरे मन में गुब्बारों के लिए है वो इस व्यक्ति के अंदर भी था। तो उसने अपनी जेबों में हाथ

0: और जेबों में क्या होते हैं? सिक्के।
1: सिक्के खरीदते सिक्के।
0: तो उसकी जो बचत थी थोड़ी बहुत है ना, उसने वो सिक्के दोनों जेबों में हाथ डालकर सिक्के निकाले और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके सामने रख दिया कि मेरे पास तो ये है। तो बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा कि जो तुम्हारे पास है दे दो और ये सारे गुब्बारे ले जाओ। बच्चा जो था गुब्बारे लेकर आ गया और वहां पे आकर उसने देखा कि यार इनको बहुत सुंदर करा जा सकता है। और उसने अपनी जो टोली थी उस टोली में वो सारे गुब्बारे बांटे। सारे बच्चे गुब्बारे पाकर खुश हो गए और सबको बिठा करके उन गुब्बारों को और सुंदर बनाने की, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे करके वो गुब्बारे जो थे उनको बहुत खूबसूरत बना दिया। और जैसे ही बच्चे, जिन बच्चों के गुब्बारों पे कलर नहीं हो पाया लेकिन गुब्बारे की खुशी उन बच्चों को मिल गई, तो वो जो खुशी बच्चों के चेहरे पर मोहन ने देखी तो उसे समझ में आ गया कि बाहरी चमक दमक जो होती है ये काम की नहीं होती है, लेकिन जो खूबसूरती अंदर होती है वो सबसे खूबसूरत होती है। तो जो गुब्बारे उड़ाने की खुशी होती है वो तो अंदर से आती है ना।
1: हाँ, और तो मिल बांटकर उन्होंने जो काम किया उससे उन्हें सच्ची खुशी मिली।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तुमने सही कहा। हाँ। कि जो मिल बांटकर उन्होंने गुब्बारे आपस में लिए वो सिर्फ गुब्बारे नहीं होकर खुशियों की, कहते ना, सौगात हो गई उनके लिए। तो बिल्कुल सच्ची खुशी अगर आप भी पाना चाहते हैं तो बाहरी चमक दमक ना देखें बल्कि अंदर की खुशी को देखें।

0: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: दोस्तों बिल्कुल इसी गाने की मुखड़ा जो है जो हमें बता रहा था कि भाई इस दिल का मैं क्या करूं, और हमें हर पल ये लगता है कि इस दिल का मैं क्या करूंगा, कि ये किस तरह से मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ नई नई, ऐसा होता ना कोई ख्वाब दे देता है, कभी कुछ आपको धोखा सा दे देता है, कभी कभी कहीं फिसल जाता है, कभी किसी को पकड़े रखता है। तो ये दिल जो है वो इतना बेईमान
1: मनचला
0: सा
1: सा
0: मनचला
1: है,
0: सा क्यों होता
1: मनचला
0: है?
1: सा दिल, बेईमान है दिल, मनचला है, ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं कि कई गीतों में भी नेहा इस तरह की बात आती है। लेकिन कहते हैं ना कि जो रिश्ता है वो अंकुरित तो होता है प्रेम से,
0: दिल
1: जिंदा
0: से।
1: रहता है संवाद से,
0: हाँ हाँ
1: और महसूस होता है संवेदनाओं से।
0: बिल्कुल,
1: और एक खास बात, जिए जाते हैं दिल से।
0: क्या
1: तो
0: बात।
1: गाड़ी शुरू हुई दिल से और दिल तक
0: हाँ
1: पहुंच गई, तो बस बात यही है कि जहां दिल मनचला हो चले तो
0: हाँ
1: उसे थोड़ा सा थाम लो, जहां दिल थोड़ा बेचैन हो जाए वहां उसे रोक लो। और दिल की बात सुननी तो वाजिब होती है, वैसे आप अगर दिल की बात पहली बार में सुन लेते हैं तो कहते हैं वो हमेशा सही
0: सही
1: डिसीजन
0: होती
1: होता
0: है
1: है। और वो कहते हैं ना, बहुत फिल्मी अंदाज है वैसे तो, लेकिन फिर
0: क्या।
1: भी कहते हैं कि दिल होता लेफ्ट में है लेकिन होता राइट है।
0: अरे वाह,
1: तो बिल्कुल इन्हीं बातों के साथ दिल की बात जरूर सुने, लेकिन हाँ अगर आपका दिल ज्यादा आपको बेचैनी शो कर रहा है तो फिर थाम ले और अपनी सूझबूझ से आगे का काम
0: आगे
1: ले।
0: का काम करे बिल्कुल। और आप अभी जो हमारा दिल कर रहा है आपको एक और खूबसूरत सा गीत सुनाने का, तो बिल्कुल सुनिए।

0: बिल्कुल श्रोताओं, जो आप चाहेंगे वो आप बन ही जाएंगे और आप जो चाहेंगे वो आप करके दिखा भी देंगे, क्योंकि जो चाहा जहाँ चाह होती है वहीं राह भी हो जाती है। और आप अगर चलते रहेंगे तो फिर कोई भी जो सफ़र है वो आसान बन ही जाएगा। तो कहते हैं ना, थक कर मत बैठ मुसाफिर, अभी सफ़र बाकी। बुझी नहीं उम्मीदों की लौ, उसका असर बाकी है। जो आज कठिन दिखाई दे कल आसान हो जाएगा, और हर रात के बाद सुनहरा एक नया सवेरा आएगा।
1: क्या बात है नेहा, ये जो बात तुमने कही है बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। और जीवन में कई बार, जैसा तुमने कहा, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस खड़े कर देती हैं और हम कहते हैं ना, डगमगा जाते हैं। कई बार रास्ते कठिन लगते हैं, मंजिल दूर दिखाई देती है, लेकिन अगर मन में दृढ़ इच्छा है, आत्मविश्वास है, खुद पे कॉन्फिडेंस है, और सबसे बड़ी बात है आप में मेहनत करने का जुनून है, तो फिर हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। इसलिए सारी बातें जो कहती हैं वो ये कहती है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये जो चाहत है दिल में आप ले आइए और फिर देखिए
0: और राहत
1: कि
0: पाइए।
1: राहत पाइए, मुसीबत छुबंतर हो जाएगी।

0: श्रोताओं 9 बजने वाले हैं और यहां हम रुकेंगे न्यूज ब्रेक के लिए आपसे फिर मिलेंगे नमस्कार प्रोग्राम में 9:10 पर
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे

नमस्कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में। 21 देशों के कृषि मंत्री वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू होगा। और राज्य में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ा। श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज

0: से इंदौर में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। ये बैठक 13 जून तक चलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में किसानों की आमदनी, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। इससे पहले कल श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए हर साल प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया। इनमें 12 जिले के कुंजेड़ निवासी भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी भी शामिल हैं। ग्रुप कैप्टन अनिमेश को असाधारण वीरता, नेतृत्व और रणनीतिक कौशल के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए गए प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा के तीसरे चरण में 5,410 लोगों ने नशामुक्त राजस्थान का संकल्प लिया है। राजस्थान पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से ये प्रोजेक्ट चलाया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस कार्रवाई के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी भी जरूरी है। अभियान के दौरान स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 500 मीटर के दायरे को सख्ती से नशा मुक्त क्षेत्र बनाया गया। इसके अलावा नशीली गतिविधियों की गुप्त सूचना देने के लिए शिकायत पेटियां भी लगाई गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए जल्दी ही एकीकृत ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली लागू की जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कल जयपुर में आयोजित बैठक में इसके लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से निगमों में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और कामकाज में कम खर्चा आएगा। साथ ही मानव संसाधन, वित्त, लेखा और परिसंपत्तियों

0: के प्रबंधन जैसे काम एक ही प्लेटफॉर्म पर हो सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं की बिलिंग और शिकायतों का निवारण भी आसान हो जाएगा। बैठक में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में करीब 1,95,00,000 से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल रहा है। बिजली मित्र ऐप के जरिए लोग घर बैठे कनेक्शन और बिल भुगतान जैसी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश में 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योग दिवस पर शिक्षण संस्थानों, पुलिस थानों, जेलों, प्रमुख पर्यटन और विश्व विरासत स्थलों पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक विशेष योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में इन तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और जिला कलेक्टर को योग संगम पोर्टल पर अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा। इस वर्ष योग दिवस का विषय स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग रखा गया है। इस बीच प्रदेश भर में योगा डे काउंटडाउन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। कल हनुमानगढ़ के नर्सिंग महाविद्यालय में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इसमें आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक ने विद्यार्थियों को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व के बारे में बताया। भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ऑनलाइन योग सत्र आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने सभी विभागों को इस अभियान से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन में तकनीक का बढ़ता उपयोग जवाबदेही को मजबूत कर रहा है। मुख्य सचिव ने कल जयपुर में वित्त भवन स्थित कोष और लेखा निदेशालय के निरीक्षण के दौरान ये बात कही। उन्होंने साइबर ट्रेजरी और ई ट्रेजरी की कार्यप्रणाली का जायजा लेते हुए वित्तीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को SNA स्पर्श पोर्टल पर जल्द जोड़ने और जस्ट इन टाइम भुगतान प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा। और अब मौसम। राज्य में एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने लगा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे तेज गर्मी और उमस महसूस की जा रही है। 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा फलोदी, बीकानेर और जैसलमेर में भी पारा 44 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आगामी 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं लू की स्थिति बन सकती है, साथ ही धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। दूसरी ओर राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश का दौर कहीं कहीं जारी रहने के आसार हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने कल जगतपुरा के नंदपुरी अंडरपास क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अभियान के दौरान जेडीए के मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया गया। जेडीए के इस बड़े अभियान के दौरान सड़क सीमा में आ रहे 125 से अधिक अवैध निर्माणों और 5 धार्मिक ढांचों को हटा दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में। 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। और राज्य में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ा। श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: शुदों न्यूज के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में आपके साथ मैं हूं सीमा शर्मा और मेरे साथ
2: नेहा रांकावत।
1: तो बिल्कुल चलते हैं उस ओर जहां पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कर रही है आपका इंतजार।

पन्नों की तरफ आपको लेकर चलते हैं और एक घटना बताते हैं 1815 की। आज ही के दिन यूरोप के पुनर्गठन के लिए प्रसिद्ध कांग्रेस ऑफ वियना का अंतिम समझौता हस्ताक्षरित हुआ था।

0: श्रोताओं, 9 जून 1870 में महान अंग्रेजी उपन्यासकार चार्ल्स डिकन्स का निधन हुआ था, जिनकी रचनाएं आज भी विश्व साहित्य की धरोहर मानी जाती हैं।
1: और आज ही के दिन सन 1934 में प्रसिद्ध डिज्नी पात्र कैरेक्टर डोनाल्ड डक ने पहली बार फिल्म द वाइस लिटिल हेन में डेब्यू किया था।
0: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि भूमि बोल अदुल्यादेश थाईलैंड के राजा के रूप में अभिषिक्त हुए थे आज ही के दिन यानी कि 9 जून 1946 को।
1: और आज ही के दिन 1967 में सिक्स डे वॉर के दौरान इसराइल ने गोलान हाइट्स पर नियंत्रण प्राप्त किया था।

0: का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

शुदा 9 जून में ही दर्ज है एक और शख्सियत जिनका नाम है नंदिनी सतपथी। आप एक भारतीय लेखिका और राजनीतिज्ञ के रूप में जानी जाती हैं। जून 1972 से दिसंबर 1976 तक ओडिशा की मुख्यमंत्री रहीं। सतपथी का जन्म 9 जून 1931 को हुआ था श्रोताओं, और भारत के कटक के पीथापुर में पली बड़ी थी। कालिंदी चरण पाणिग्रही की सबसे बड़ी बेटी। और श्रोताओं, 4 अगस्त 2006 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था।

और श्रोताओं, आज जन्मदिन है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का। उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन सन 1949 को अमृतसर पंजाब में, और उन्होंने वर्ष 1972 में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में प्रवेश कर इतिहास रचा था और देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। और फिर किरण बेदी ने अपने जो लंबे प्रशासनिक जीवन में दिल्ली, गोवा, मिजोरम और चंडीगढ़ सहित विभिन्न स्थानों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई थी। वे विशेष रूप से दिल्ली के तिहाड़ जेल सुधारों के लिए जानी जाती हैं। जेल प्रशासन में सुधार, शिक्षा, नशा मुक्ति और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए उनके प्रयासों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहाया गया। और पुलिस सेवा के साथ साथ वे एक उत्कृष्ट टेनिस

भी रही हैं श्रोताओं। उन्होंने कई राष्ट्रीय और एशियाई टेनिस प्रतियोगिताओं में भी सफलता प्राप्त की थी और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1994 में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में सक्रिय योगदान दिया था और 2016 से 2021 तक वे पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी रही थी। साहस, अनुशासन और जनसेवा की मिसाल किरण बेदी ने भारतीय पुलिस सेवा में महिलाओं के लिए नए द्वार खोल दिए थे। तिहाड़ जेल सुधारों से लेकर सामाजिक उत्थान तक उनका जीवन समर्पण और नेतृत्व की प्रेरक गाथा है। जन्मदिन पर हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और अभिवादन करते हैं। जो लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं दोस्तों, वे परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करते बल्कि स्वयं जो है वो पहल करते हैं।

0: तेरा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: दिवस मना रहे हैं 9 जून को। इसकी शुरुआत साल 2007 में हुई थी। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ आम आदमी की जिंदगी में दस्तावेज यानी अभिलेख का महत्व बढ़ता गया था और हमारे आपके सहेजे दस्तावेज और अभिलेख कई बार पूरे समाज और

के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं श्रोताओं, और इन्हीं अभिलेखों के संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाता है। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम लेकर आए हैं एक फोन वार्ता जिसके आप सभी को इंतजार रहेगा। बस अभी आपको ले चलते हैं उस फोन वार्ता की तरफ।

0: श्रोताओ, हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस और इसके तहत आज फोन के माध्यम से हमसे जुड़े हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर। श्रोताओं, आपको बताऊं कि आप जो हैं संयोजक हैं भारतीय राष्ट्रीय कला विरासत न्यास इंटेक जोधपुर चैप्टर के और अतिरिक्त सह संयोजक हैं भारतीय राष्ट्रीय कला विरासत न्यास इंटेक राजस्थान चैप्टर राजस्थान के। विषय विशेषज्ञ सदस्य हैं भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग जोधपुर के और जिला पर्यटन विकास समिति, धरोहर संरक्षण समिति, ब्लू सिटी समिति, महायोगी गुरु गोरखनंद शोध पीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, इन सभी के आप सदस्य हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम नमस्कार में। नमस्कार।
1: आपका भी बहुत बहुत आभार और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का, जिन्हें मैं सादर प्रणाम करता हूँ और इस अभिलेख दिवस पर बधाई प्रेषित करता हूँ।
0: जी सर। सर, जैसे सबसे पहली जो बात दिल में आती है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि अभिलेख क्या होता है, लेकिन एक ऊपरी सतही जो जानकारी है वो ही लोगों को पता होती है। तो हमारे श्रोताओं को सबसे पहले हम यही उनकी तरफ से पूछना चाहेंगे कि अभिलेख होता क्या है।
1: अभिलेख एक प्रकार का डॉक्यूमेंट कह सकते हैं
0: जी।
1: अगर हम भारत के प्राचीन काल से अब तक के गौरवशाली इतिहास को अगर लिपिबद्ध करना हो तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर स्रोत है तो वो अभिलेख है। अभिलेख पत्थर पे लिखी उत्कीर्ण शिलाखंड भी हो सकता है, जिसे हम लेख कहते हैं। इसी तरह से कॉपर प्लेट्स भी हो सकते हैं। आगे चलकर जब कागज का आविष्कार हुआ तो कागज पे लिपिबद्ध करके लिखी जाने वाली वे सभी पांडुलिपियां भी अभिलेखों की श्रेणी में ही आती है। अभिलेख आधिकारिक रूप से राजकीय और शासकीय आज्ञाओं का और देश के और राष्ट्र की मातृभूमि के लिए वीर होने वाले वीरों की स्मृति में जो शिलालेख लगाए जाते हैं, ये सभी अभिलेखों की श्रेणी में आते हैं।
0: जी सर। तो सर, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? हम कैसे पता करें कि भारत में जो है अभिलेखों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: प्राचीन काल से ही हमारे देश में अभिलेखों के उल्लेख मिलते हैं, लेकिन भारत में सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख है वो सम्राट अशोक के हैं। सम्राट अशोक ने अपने सभी राज्य की आज्ञाएं और उपदेश और महत्वपूर्ण घटनाओं को बड़े बड़े शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाया और बहुत सारे पिलर्स उन्होंने देश के विभिन्न प्रांतों में स्थापित किए, जो आज भी उस गौरवशाली इतिहास को उस अक्षरों के माध्यम से हमें वो जानकारी प्रदान करते हैं।
0: जी सर। सर, जैसे अभिलेखों की श्रृंखला के बारे में भी हम लोग कुछ सुनते हैं कि अभिलेखों की श्रृंखला होती है, तो किस तरह की होती है, क्या इसमें बातें होती हैं? हमारे श्रोता इस बारे में भी जानने के इच्छुक हैं। आप हमें बताएं कि अभिलेखों की श्रृंखला क्या है।
1: मुख्य रूप से जो जब से भाषा का ज्ञान हुआ है, तब से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को या तत्कालीन समय के लोगों को जानकारी देने हेतु जब हम उन अक्षरों को किसी पर उकेरते हैं तो अभिलेख का स्वरूप ले लेते हैं। तो पहला जो हमारा अभिलेख का सबसे बड़ा सोर्स है वो है पत्थर। तो पत्थरों पर उत्कीर्ण जो लेख है वो महत्वपूर्ण जानकारियां हमें उस काल और उस समय की घटनाओं को बताती है। जब उन सभी घटनाओं का लेखा जोखा हम अभिलेखों के माध्यम से एकत्रित करते हैं तो श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमें गौरवशाली इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है और उस इतिहास को हम अपने दृष्टिकोण से लिख सकते हैं। तो अशोक के समय से लेकर वर्तमान तक हजारों करोड़ों ऐसे अभिलेख हमारे देश में मिले हैं, जिन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने या नेशनल आर्काइव्स और नेशनल म्यूजियम के संस्थानों के द्वारा संरक्षित किया गया। अंग्रेजी शासनकाल के दरमियान में रॉयल एसेटिक सोसाइटी जब बनाई गई थी बंगाल कलकत्ता में, तो उनके द्वारा भी बहुत सारे अभिलेखों को संग्रहित किया गया। तो अभिलेख कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रशस्तियां लिखी जाती थी अभिलेखों में, राजकीय आज्ञाएं लिखी जाती थी अभिलेखों में, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर या उसके वीर गति को प्राप्त करने पर उसकी स्मृति में जो देवली स्थापित की जाती है उसमें अभिलेख लिखा जाता है।

0: ऐसे आगे चलकर पर ग्रंथों की भी रचनाएं हुई। अगर हम राज प्रशस्ति देखते हैं, राजसमंद झील जब बनाई गई थी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के द्वारा, तो वहां पूरा का पूरा एक पांडुलिपि को जो है वो पत्थरों पर उत्कीर्ण कर दिया गया। तो
1: जी
0: ये सबसे बड़ी भारत की जो है वो पांडुलिपि कही जा सकती है जो पत्थरों पर उत्कीर्ण है।
1: जी सर
0: तो जब जैसे जैसे विकास होता गया पत्थरों के बाद, अगर हम दिल्ली के लोह स्तंभ को देखते हैं जो आयरन पिलर के नाम से विख्यात है, तो
1: जी
0: उस पर भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं अशोक के, समुद्रगुप्त से लेके और भी बाद के तोमर राजाओं के और चौहानों के। तो ये सारे जो शिलालेख हैं वो क्रमबद्ध तरीके से एक एक सोर्स के माध्यम से सुरक्षित रहे हैं। तो जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो कॉपर प्लेट्स आने लगी, तो कॉपर प्लेट्स ज्यादातर जो है वो भूमि दान जब दी जाती थी
1: जी
0: तब इसके ऊपर जो है लेख खुदा कर उस भूमि के बारे में जानकारी अंकित करके वो उस संबंधित व्यक्ति को दे दिया जाता था। तो
1: जी
0: जो लंबे समय तक हजारों वर्षों से हमारे यहाँ राजस्थान राज्य के लेखागार में कॉपर प्लेट्स का एक बहुत खूबसूरत संग्रहालय है, मतलब श्रृंखला है कॉपर प्लेट्स की। पिछले 1100 वर्ष में जितने भी कॉपर प्लेट्स राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बनाए
1: जी
0: गए थे, लिखे गए थे, वो सब वहां देखे जा सकते हैं।
1: अच्छा
0: जब विकास क्रम बढ़ा और भोजपत्र है, ताड़पत्र है, फिर आगे चलकर कागज का आविष्कार हुआ, तब ये सारी जो घटनाओं का जो लेखा जोखा होता है,
1: जी
0: किसी भी राज्य या कालखंड की घटना जब लिखी जाती है तो उसे अभिलेख की श्रेणी में रखा जाता है।
1: जी
0: और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभिलेखागार है ही, जो इन
1: जी
0: सभी भारतीय अभिलेखों को सुरक्षित रखता है, और राजस्थान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार इसका सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है।
1: जी सर, आपने हमें सोर्स के बारे में भी बताया और आपने हमें कुछ टाइप्स भी ये आपने बताया, जैसे पत्थर है, ताम्र है, और फिर जब कागज़ की कागज़ चलन में आया तो कागज़ पे उकेरने लगे इन चीज़ों को। तो इस तरीके से जो इसके टाइप्स हैं अभिलेख के, तो उसमें और हमारे श्रोताओं को आप क्या जानकारी में इजाफा करेंगे कि और किस तरीके से उनकी जानकारी बढ़ सकती है इस चीज़ को लेकर के।
0: वैसे तो सबसे ओल्डेस्ट जो हमारी सभ्यताओं का जो विकास क्रम देखते हैं तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो और अभी
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: बाद की जो सोनोली वगैरह की जो सभ्यताओं में जो अवशेष मिले, तो मिट्टी के जो पात्र हैं, तो मिट्टी की स्लेट्स मिली है हमारे पास में, और मिट्टी के बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिनके ऊपर अक्षर खुदे हुए हैं।
1: जी
0: तो हम मान सकते हैं कि हमारे देश के सबसे प्राचीनतम सोर्स के रूप में हम उन्हें देखते हैं। और आगे चलकर पत्थरों पर उत्कीर्ण, क्योंकि पत्थर जो है वो हवा और पानी के घर्षण से नष्ट होता जाता है,
1: नष्ट
0: तो उसके
1: होता है,
0: लिखे हुए लेख धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं।
1: क्षीण हो जाते हैं,
0: और
1: राइट।
0: फिर कॉपर प्लेट्स का जब विकास हुआ तो उसको इसका माध्यम बनाया गया।
1: जी
0: लेकिन भोजपत्र हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार की पांडुलिपियां और अभिलेखों को लिपिबद्ध किया गया।
1: जी सर
0: और फिर हमारे देश का जो समुद्री इलाका है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक ताड़ पत्र होते हैं, ताड़ का जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियों को कागज का स्वरूप दिया जाता है काट के उसे,
1: जी
0: और उसके
1: सर
0: ऊपर जो है वो नुकीली कीलों से जो नोकदार कलम होती थी उससे वो लिखे जाते थे। तो
1: जी
0: ये बहुतायात संख्या में हमारे देश में उपलब्ध है, लाखों करोड़ों की संख्या में।
1: हाँ जी
0: और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, लगा कि भाई इनको हम लॉन्ग टर्म के लिए कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो फिर 13वीं शताब्दी में जब कागज, वैसे तो इतिहासकार और विभिन्न स्रोत ये कहते हैं कि कागज भारत में ही 3री से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व विकसित हो चुका था, लेकिन फिर
1: जी
0: वो यहाँ से पलायन करते हुए कश्मीर से होकर वो बगदाद गया, बगदाद से उससे पहले चाइना गया, चाइना से बगदाद, और फिर वापस मुस्लिम एरा के समय में 13वीं शताब्दी में भारत आया। तो तब
1: जी
0: से बहुतायात में जो है वो ये अभिलेख हमारे देश में लिखे जाने लगे।
1: जी सर श्रोताओं, आपको बताएं हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर, और जो बातें इनके लिए मैंने आपको बताई उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि आपने जो है काफ़ी इनकी पुस्तकें जो हैं वो भी प्रकाशित हुई हैं, लगभग 13 के करीब आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, और श्रोताओं कम से कम 8 जो किताबें हैं उसमें सह संपादन भी डॉक्टर महेंद्र सिंह का रहा है। सर वापस आते हैं अभिलेख की तरफ, तो जैसा कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे को हमारी सारी सभ्यताओं के बारे में पता चलता है, आपने इतना कुछ बताया, अब इनके संरक्षण के लिए क्या किया जाता है सर? अभिलेखों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, तो इनके लिए क्या किया जाता है ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: वैसे तो हमारे देश में हमेशा से जो है वो इनको बहुत सम्मान दिया जाता है। अभिलेख, चूंकि अभिलेख के साथ बहुत सारी मूर्तियां उत्कीर्ण होती हैं,
1: जी
0: वो
1: सर
0: हमेशा पूजनीक रही हैं, तो इस वजह से ये सारे स्मारक और अभिलेख निरंतर समय के साथ संरक्षित होते हैं।

0: लेकिन 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य का विकास हुआ और विस्तार के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अंग्रेज विद्वान भी भारत में आए जिन्होंने भारत के इतिहास को लिपिबद्ध अपने दृष्टिकोण से करने का प्रयास किया। तो जॉर्ज प्रिंसेप्स हैं जो थे, स्मिथसन है, कनिंगम है, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों में भ्रमण करके इन अभिलेखों को खोजा। उन्होंने ही अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा और देखा जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भारत आदिकालीन समय से जो है वो एक समृद्ध सभ्यता का स्वरूप रहा है। तो फिर उन्होंने ही एक विभाग की स्थापना की। तो पहला जो है वो विभाग अंग्रेजी शासन काल में बना था और फिर रॉयल एसेटिक सोसाइटी जब लंदन बनी तो एपिग्राफी ऑफ इंडिका नाम से एक जर्नल पब्लिश होने लगा जो पिछले 150 साल तक भारत की समृद्ध इन अभिलेख श्रृंखलाओं को जो है वो निरंतर प्रकाशित करता रहा है। और हम राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान में पिछले 1500 वर्ष के अभिलेख निरंतर प्राप्त हो रहे हैं।
1: अच्छा।
0: तो चौथी पांचवी शताब्दी के शिलालेख भी उपलब्ध हैं, लेकिन बहुतायात संख्या में अगर आप देखें तो छठी सातवीं से लेके 18वीं 20वीं शताब्दी के मध्य के तो सैकड़ों अभिलेख उपलब्ध हैं। मारवाड़ में जो है वो सबसे प्राचीनतम अभिलेख ओशिया में देखे जा सकते हैं, कुचकला में देखे जा सकते हैं, घंटियाली में देखे जा सकते हैं, केराड़ू में देखे जा सकते हैं। ये प्रमुख स्थान है जहाँ तत्कालीन सभ्यताओं के अवशेष के रूप में यह अभिलेख विद्यमान है। बहुत बड़ी श्रृंखला है इन अभिलेखों की।
1: जी सर।
0: और मंडोर में जो हमारा संग्रहालय है वहाँ पर इन अभिलेखों को देखा जा सकता है। तोरण द्वार पे जो अंकित हमारा अभिलेख प्रतियारकालीन जो है वो मंडोर के, वो हमारे सरदार संग्रहालय में संरक्षित रखे हुए हैं।
1: जी सर।
0: तो ये बड़े महत्वपूर्ण अभिलेख रहे हैं जिन्हें समय समय पर सरकारों के द्वारा और राज्य के द्वारा संरक्षित किया जाता था।
1: जी सर।
0: स्वतंत्रता के बाद इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलता है क्योंकि हमारे देश में जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कुछ राज्यों के अंदर जो है वो स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के अभिलेखित श्रृंखलाओं का दस्तावेजीकरण करें और संरक्षित करें। तो उनके द्वारा ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी बहुत जगह पर डिक्लेयर किए गए, लेकिन इनकी संख्या सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ों में है।
1: अच्छा।
0: हर गांव में आपको 5 से 10 देवलियां मिल जाएगी, शिलालेख मिल जाएंगे। इनकी भी एक अलग कैटेगरी होती है। एक तो देवली होती है जो किसी स्मारक के रूप में स्थापित होती है, व्यक्ति की घोड़े पर अश्वार मूर्ति और उसके सामने सती को जो है वो दर्शाया जाता है और नीचे वो लेख खुदावा होता है जो अभिलेख कहलाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर गोवर्धन स्तंभ लगाने की बहुत प्राचीन परंपरा रही है। जितने भी मंदिर बनते हैं, जितने भी तालाब खुदवाए जाते हैं, जितनी भी बावड़ियां बनाई जाती है, प्रत्येक बावड़ी, प्रत्येक तालाब और प्रत्येक जो है वो मंदिर के आगे एक गोवर्धन स्तंभ लगाने की परंपरा रही है। गोवर्धन स्तंभ बहुत ही खूबसूरत एक पिलर होता है, 8-9 फीट का, जमीन के अंदर उसको 3-4 फीट डाला जाता है और उसपे वो पूरा लेख खुदावा होता है।
1: अच्छा।
0: और बहुत सारे प्रशस्तियां भी उसमें जो है वो खुदी हुई होती है। तो आप जोधपुर में जितने भी प्राचीन मंदिर है, हमारे बावड़ियां जितनी भी है, हर एक के बाहर ये आप गोवर्धन स्तंभ देख सकते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश, शिव भगवान और इंद्र की मूर्तियां हैं, कहीं पर गणेश भगवान की मूर्तियां हैं और फिर नीचे शिला लेख उत्कीर्ण होता है उसमें। और इसी तरह से आगे चलकर कई शासक जिन्होंने अपनी प्रशस्तियां या गौरवशाली घटनाओं का लेखा जोखा लिखा तो उन्हें हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। सूरसागर के जो महल है, हमारे प्राचीन महल है, उनके पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीर्ति स्तंभ स्थापित है जो महाराजा अजीत सिंह जी ने जब 1707 में 29 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में जोधपुर को प्राप्त किया वापस, औरंगजेब से छीना, वापस लिया, तब उस विक्ट्री के लिए उन्होंने जो है वो कीर्ति स्तंभ लगवाया था। तो उस कीर्ति स्तंभ में मारवाड़ की गौरवशाली उस स्वतंत्रता संग्राम को जो है वो दर्शाया गया कि किस तरह से उन्होंने मारवाड़ का मुक्ति संग्राम लड़ा था
1: जी।
0: और सभी शासकों की वंशावलियां हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे अभिलेख हमारी भाषाओं को संरक्षित करते हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: तो अगर आप हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल तक के अभिलेखों को देखते हैं तो हमारे यहाँ ब्राह्मी और अलग अलग जितनी प्रकार की लिपियां, शारदा लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, ये सब लिपियां हम उनको इन अभिलेखों के माध्यम से ही प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि पांडुलिपियां जो है वो इतनी अधिक पुरानी हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये अभिलेख हमें हमारी लिपि का ज्ञान देते हैं। ये अभिलेख हमें शब्दों के और अंकों का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं और किस तरह से पूरे देश में अलग अलग कालखंड में इनमें परिवर्तन हुआ है वो भी इससे जाना जा सकता, पहचाना जा सकता।
1: जी सर। सर, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई और हमारे श्रोता जो हैं इससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। एक बात और दिल में आ रही है कि हम देखते हैं कि

0: जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरह है और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस पर लिखी होती है, लोग उसे डिस्ट्रॉय करते हैं. मतलब कुछ भी उस पर मतलब कहते हैं ना कि जो पब्लिक प्लेस पे है, तो वहाँ पे इनका जो संरक्षण है उसके लिए आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: हम लोग इंटैक और अन्य संस्थाओं के माध्यम से लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये अभिलेख केवल एक जाति विशेष या एक वर्ग विशेष के नहीं है. ऐसा नहीं है कि केवल शासक वर्ग के ही अभिलेख उपलब्ध होते हैं. देवलियां और शिलाखंडों का यदि आप ढंग से देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो हमारे समाज के सभी वर्गों के पूर्वजों के ये शिलालेख हमको प्राप्त होते हैं. प्रत्येक गांव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के ये शिलालेख हमको देखने को मिलते हैं. अब समस्याएं ये है कि जब तक हमारा डायरेक्ट लगाव नहीं होता किसी भी चीज, तब तक हम उसे अपनी नहीं मानते. एक विचारधारा विकसित हो गई है हम लोगों के अंदर, जबकि वो हमारी नहीं है, तो लेकिन हमारे से पहले के किसी, हमसे पहले वाले लोगों की होगी, जो हमारे कहीं ना कहीं अपने हैं.
0: जुड़ाव तो है, बिल्कुल सही.
1: वो चाहे रिश्तेदार हो, गिनायत हो, कुछ भी हो सकता है, हमारे वो हमारे साथ ही रहे होंगे. तो ये जो भावना है, इस वजह से इन शिलालेखों को उपेक्षित कर दिया गया, छतरियों को उपेक्षित कर दिया गया, जिसमें ये बहुत सुंदर विरासत जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है.
0: जी.
1: तो सरकार से और हमारी बहुत सारे संगठनों के माध्यम से भी ये प्रयास रहा है. गवर्नमेंट भी इसमें अच्छा प्रयास करती है.
0: जी.
1: लेकिन इसको यदि पूर्ण रूप से संरक्षित करना है, जिससे हमारी लिपि बच सके, जिससे हमारे गौरवशाली इतिहास की श्रृंखलाएं बच सके, और जिससे ये मूर्ति शिल्प कला और पत्थरों पर जो आकृतियां बनाने की जो कला है, यदि हम आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं. आज हम आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन की बात करते हैं, आर्किटेक्चरल स्टडी की बात करते हैं, बहुत सारे नए नए कोर्सेज जो है वो विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उनके सोर्स यही है, इंस्क्रिप्शंस हैं. तो हमें लगता है कि आर्कियोलॉजी विभाग जो है वो इतने सारे अभिलेखों को संरक्षित नहीं कर सकता, इसलिए पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर और जिला इकाइयों के स्तर पर हमें एक सरकारी आदेश के माध्यम से इनको संरक्षित करने की पहल करनी चाहिए, जिसमें ये केवल स्थानीय क्षेत्र के लोग इसका जो है वो संरक्षण करें. ऐसे अधिकार पंचायत समितियों के पास हो तो जरूर जो है वो इन अभिलेखों का संरक्षण हो सकता है. जो अभिलेख बिखरे पड़े हैं तो पंचायत भवनों में उन्हें एक छोटे संग्रहालय के रूप में भी जो है वो संरक्षित किया जा सकता है. इससे स्थानीय बच्चे जो है वो उनका भ्रमण करके उनको बहुत कुछ अपने इतिहास का ज्ञान हो सकता है, पूर्वजों के बारे में वो जान सकते हैं. और चूंकि जो है वो हवा पानी और प्रकृति से इनको बहुत नुकसान होता है, तो ये जरूरी है कि समय समय पर इनको संरक्षित करने के प्रयास किए जाएं. और एक गजट नोटिफिकेशन यदि सरकार निकाल दे कि इन्हें पंचायत स्तर पर जो है वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाता है, स्थानीय मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हो सकते हैं, तो फिर हमारे लाखों करोड़ों जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख हैं, वो बचाए जा सकते हैं. हमने एक संगठन खड़ा किया था, सेव ओवर हेरिटेज फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन में अभी हमारे करीब 2000 से ज्यादा व्हाट्सएप पे जो है वो ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, पूरे राजस्थान से और राजस्थान के बाहर के. और हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इन अभिलेखों को पढ़ने में जो है वो एक्सपर्ट हो चुके हैं. इन अभिलेखों को लाइव पढ़ा जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक के माध्यम से दुनिया को ये जानकारी दी जाती है कि ये आपके पूर्वज हैं, ये आपके अभिलेख हैं, इनसे आपकी गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई है. और सबसे बड़ी चीज ये है कि हर गांव का अपना एक अभिलेख होता है जो उस गांव की स्थापना की जानकारी देता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो अगर आपको पता करना हो कि आपका गांव कितना पुराना
0: है,
1: अभिलेख ही ये कीर्ति स्तंभ है, वो स्तंभ आपकी जानकारी दे देगा कि ये तालाब खुदवाया और गांव बसाया.
0: जी जी.
1: और किसने करा, किसके द्वारा किया गया, ये
0: पूरी जानकारी उसमें मिल जाती है.
1: तो इसलिए यदि जिनके संरक्षण के आसपास क्षेत्र में है, अगर वही संस्थाएं इसका संरक्षण करती है, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है.
0: जी सर. जी. श्रोताओं, फोन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर, संयोजक भारतीय राष्ट्रीय कला विरासत न्यास इंटेक जोधपुर चैप्टर. और इतनी कहते ना कि बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी और एक अवेयरनेस जो है उन्होंने इस माध्यम से लोगों में दी है. और हम उम्मीद करते हैं कि सर ने जो बातें हमसे शेयर की हैं उनकी वैल्यू को हम समझेंगे और इसके संरक्षण में हमारी जो जिम्मेदारी है उसे ज़रूर निभाएंगे. डॉक्टर साहब, आप हमारे फ़ोन के माध्यम से हमारे स्टूडियो से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
1: आपका भी बहुत आभार, और मुझे अवसर देने के लिए, मेरी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए. और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आपके माध्यम से हमारी राष्ट्र की ये बहुमूल्य धरोहरें जरूर सुरक्षित होगी और संरक्षित की जाएगी.
0: जी सर, इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया.

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

श्रोताओं, आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन जो स्पेशल सेगमेंट होता है वो होता है आओ जाने खेल। और आओ जाने खेल में आज हम आपके लिए जो जानकारी लाए हैं वो है टेक बॉल्स।

तो श्रोताओं, आज हम खेलेंगे टैग बॉल्स, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है जो कहते हैं ना कि डिजिटल गेम्स में अपना रुझान रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। स्मार्टफोन और पीसी पर खेले जाने वाले लोकप्रिय 3D कैजुअल और बैलेंसिंग गेम्स। इन खेलों में एक गेंद को नियंत्रित करके बहुत सारे हर्डल्स को पार करना होता है। ये खेल जो है सरल नियंत्रण यानी कि वन फिंगर स्वाइप और शानदार ग्राफिक्स के लिए जाने जाते हैं। श्रोताओं, टेक बॉल्स इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें गेम प्ले, खिलाड़ी को एक लुढ़कती हुई गेंद को रास्ते पर आगे बढ़ाना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। जी हाँ, इसमें बड़ी बात यह है कि रास्ता सीधा नहीं होता। इस रास्ते में कई घुमाव होते हैं, ढलान होती है और होती हैं बहुत सारी बाधाएं जिन्हें पार करना होता है। और कंट्रोल इसे खेलना बहुत आसान है। स्क्रीन पर एक उंगली से आप स्वाइप करके गेंद को दाएं बाएं मोड़ सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है श्रोताओं, वो ये होता है कि हर लेवल पर रास्ते में कुछ कॉइन्स होते हैं या फिर कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं, तो उनको इकट्ठा करते हुए आपको अंत बिंदु यानी कि

फिनिश लाइन तक सुरक्षित पहुंचना होता है। कस्टमाइजेशन की अगर बात करें तो गेम में आगे बढ़ने और सिक्के कमाने पर आप अपनी गेंद का रूप यानी कि कलर डिज़ाइन बदल सकते हैं और ये गेम जो है मोबाइल ऐप पे या फिर कंप्यूटर पर आप खेल सकते हैं श्रोताओं, और अपनी डिवाइस पर आप ऐप स्टोर पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये कहेंगे कि ये जो गेम है इससे आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, फोकस को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से सिचुएशंस को कंट्रोल किया जा सकता है उसे बढ़ा सकते हैं।

0: श्रोताओं, आज 9 जून जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस बन जाता है क्योंकि भारतीय इतिहास के एक महान नायक, जननायक और आदिवासी समाज के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का शहीद दिवस है। इस दिन हम उनके अद्वितीय साहस, अदम्य भावना और अंग्रेजों के खिलाफ उनके कार्यों को याद करते हैं। श्रोताओं, मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने जो वीरता और क्रांति का परिचय दिया वो सदियों तक देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा।
1: साथ ही श्रोताओं, आज भारतीय योग जगत के प्रसिद्ध योगाचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचार्य की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। वे योग के जन जन तक पहुंचाने वाले अग्रणी व्यक्तियों में गिने जाते हैं। योग को केवल साधना का माध्यम नहीं माना उन्होंने, बल्कि उसे स्वस्थ जीवन और शारीरिक मानसिक संतुलन का विज्ञान भी बताया। और दूरदर्शन पर प्रसारित उनके लोकप्रिय कार्यक्रम योगाभ्यास ने लाखों लोगों को योग से परिचित कराया। उस समय जब योग घर घर तक नहीं पहुंचा था, तब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इसे सरल और व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत किया था। और योग पर कई पुस्तकें भी उन्होंने लिखी और अनेक योग संस्थानों की स्थापना भी की। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि अनुशासित और संतुलित जीवन की कला है।
0: तो श्रोताओं, ये था आज का नमस्कार। दीजिए अनुमति नमस्कार की पूरी टीम को। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय सवेरे के ठीक 10 बजे है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ओपन शो, बातें मुलाकातें गीत।
1: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
3: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
3: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
5: शालीनता है जिसकी शान।

0: 102.1 FM Sun City आपने अपने रेडियो सेट्स में ट्यून कर रखा है और हम लेकर हाजिर हो गए हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम, आज का मंगलवार स्पेशल प्रोग्राम ओपन शो। श्रोताओं, ओपन शो में आपके साथ मैं हूं सीमा शर्मा और मेरे साथ
1: नेहा रांकावत।
0: और श्रोताओं, आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं उनके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे।
1: जी हाँ, हमारे साथ है आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, हमारे स्टूडियो में मौजूद 2012 बैच की आईपीएस अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार बिश्नोई, डीआईजी राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, साथ ही आप सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी के वीसी पद को भी संभाल रहे हैं।

0: आपकी जो कहते हैं ना कर्तव्य निष्ठा है, दृढ़ संकल्प अपने कार्य के प्रति है, वो भी हम आपके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, और आज आपसे रूबरू होने का जो मौका मिला है उसकी खुशी हम बयां नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए हम हमारे श्रोताओं को भी उस खुशी में शामिल करते हैं। और हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो रेडियो के आज आप स्टूडियो में हैं, तो ये प्लेटफॉर्म जो है इससे आप कितने कहते ना रूबरू हैं, कितना इसके करीब हैं, हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे।
1: मैं जब बचपन में जलंधर पिताजी के साथ रहता था
0: जी,
1: तो हमारे घर के बैक साइड में ही रेडियो स्टेशन था।
0: अच्छा।
1: संडे के दिन क्या हुआ कि बारिश थी और जो बच्चों का प्रोग्राम था उसमें कोई बच्चे नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने कहा भी आसपास से जो बच्चे हैं उनको बुला लीजिए।
0: जी, जी, जी।
1: तो तब हमें पहली बार रेडियो स्टेशन देखने का मौका मिला और
0: सर,
1: वो बच्चों के कार्यक्रम में हम जाते थे और फिर नियमित जाने लग गए थे
0: जी।
1: तो एक तरह से काफी अच्छा लगता था। और हमारे कई रिलेटिव्स थे जो हमारे को उसमें जो है जब वो सुनते थे
0: जी सर,
1: तो दूर दराज से, तो उनको ये खुशी होती थी कि आज हमने उन बच्चों को सुना है। और बाद में भी सर्विस में आने के बाद वेरियस पॉडकास्ट और जहां जहां मैं रहा हूँ वहां पर FM से, चाहे मैं अजमेर SP रहा हूँ, कोटपुतली बैरोड SP रहा हूँ,
0: हाँ जी,
1: तो समय समय पर FM और आकाशवाणी से जो है जुड़ाव रहा है।
0: जी सर, तो यानी कि ये जुड़ाव जो है ये पुराना है और बचपन की यादों तक आपको ले गया है ये जुड़ाव। तो सर, बचपन की यादों पे जब हम पहुंच ही चुके हैं तो हमारे श्रोता कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे, जो सफर बचपन से शुरू हुआ और धीरे धीरे हर पड़ाव पर हम पहुंचेंगे।
1: पिताजी मेरे जो हैं आर्मी ऑफिसर थे और वहाँ से फिर BSF में रहे वो, और कमांडेंट की पोस्ट से रिटायर हुए
0: जी।
1: जालंधर स्कूल और टेकनपुर स्कूल के वो एक्स्ट्रा उनको जो असाइनमेंट दे के प्रिंसिपल भी रहे
0: जी।
1: तो उनके साथ रहकर अलग अलग जगह पर पढ़ाई की। मूलतः मैं हरियाणा हिसार का रहने वाला हूँ, वहाँ मेरा गाँव है, और गाँव के बाद फिर पढ़ाई जो है वो अलग अलग शहरों में हुई
0: जी सर।
1: ग्रेजुएशन मैंने DN कॉलेज हिसार से की और कैंपस लॉ सेंटर DU से मैंने जो है लॉ की ग्रेजुएशन की
0: जी सर।
1: उसके बाद मैं खुद सीमा सुरक्षा बल में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट चला गया
0: जी।
1: 4 साल 1 महीना वहाँ जॉब करने के बाद फिर मैंने स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर राजस्थान के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी की
0: जी सर।
1: और 96 में कमर्शियल टैक्सेशन और 97 में बतौर RPS मेरा सिलेक्शन हुआ
0: जी। क्या बात है
2: सर, ये बात जानना चाहेंगे हमारे श्रोता भी और हम भी कि आप इतने उच्च प्रशासनिक पद पर अभी हैं, और क्या ये बचपन से ही आप में अनुशासन और ये नेतृत्व के गुण आपके अंदर मौजूद थे?
1: जैसा कि मैंने पहले बताया, पिताजी मेरे आर्मी ऑफिसर थे।
2: हाँ।
1: और शुरू से एक मैंने बचपन में कविता पढ़ी थी, जय हाजी पीर, तो उसमें एक कविता थी, उसकी पंक्ति मैं आपको बता देता हूँ कि सैनिक भूषा की देख झलक, धमनी का रक्त उछलता था, गदगद कंठों के जय स्वर थे, जिस ओर जवान निकलता था। तो कहते हैं ना यूनिफॉर्म एंटाइसिस
0: बिल्कुल
1: आपको आकर्षित करती है। तो
0: जी,
1: यही वजह रही कि मैंने स्कूल टाइम में जूनियर विंग में NCC में पार्टिसिपेट किया, जहां भी मौका मिला वहां परेड कमांड की। तो एक शुरू से ही एक डिसिप्लिन और एक नियमित जिसको कहते हैं परेड और इस तरह की एक्टिविटीज मैं करता रहा।
0: और सर, उसमें आपको जो है बेस्ट कैडेट का भी अवार्ड मिला है, हमने सुना है।
1: नहीं, जब मैं बतौर RPS जब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे बैच का बेस्ट आउटडोर
0: जी,
1: उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री पधारे थे तो उस वक्त परेड भी मैंने कमांड की थी
0: जी सर,
1: और ओवरऑल जो बेस्ट स्वॉर्ड बोलते हैं
0: जी, जी,
1: वो भी मुझे प्रदान की गई थी
0: जी सर।
2: जी सर, कोई ऐसी प्रेरक घटना जो आपके साथ में कभी हुई होगी बचपन में और उस वजह से आपको इतना ये जो है हौसला मिला, आपका सपना जो है वो बुलंद हो गया कि हाँ इसी राह पर मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ
1: ऐसा
2: ना कुछ?
1: तो हाँ, नहीं है, लेकिन क्योंकि माय फादर वाज माय रोल मॉडल
0: जी,
1: तो उनको जब मैं देखता था और उनकी पर्सनैलिटी को मैं देखता था तो कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म सर्विस में जाने की मेरी एक उत्कंठा रही है
0: जी सर,
1: जिसकी वजह से मैंने आर्मी के भी CDS जो है दिए हैं, SSB देकर आया हूँ, और चूंकि मेरा पहला एग्जाम BSF का था
0: जी,
1: और इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो एक यूनिफॉर्म सर्विस थी
0: जी,
1: और नेशनल लेवल की एक और देखी हुई थी पिताजी की वजह से
0: जी। हाँ।
1: BSF का बैकग्राउंड था तो स्वाभाविक तौर पर मेरा सिलेक्शन
0: से जी सर, बचपन से जो एनवायरमेंट आपको मिला और उसी से आपने वो ड्रीम जो है अपनी आंखों में पाल दिया।
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: सर अब वापस से उस गली की तरफ चलते हैं जहां आपने कहा कि आपके घर के पीछे ही जो था ऑल इंडिया रेडियो का एक सेंटर वहां पे था आकाशवाणी केंद्र।

0: तो सबसे पहले सर हम करते हैं आपका स्वागत हमारे प्रोग्राम ओपन शो में.
1: धन्यवाद.
0: देवेंद्र सर, एक चीज जो है दिल में आ रही है, बहुत सारी बातें हैं आपसे जुड़ी हुई जो हम चैनल्स पे भी देखते हैं, और आपका जो कार्य

0: चुनमुन प्रोग्राम जो या बच्चों का जो भी प्रोग्राम था जिसमें आपने पार्ट लिया, सर वहां से गीतों की भी कभी ना कभी जरूर आपके कानों में आवाज आती रही होगी, तो क्या कुछ गीत ऐसे भी है जो आपके दिल के करीब हैं? क्योंकि देखिए हम बहुत अनुशासित माहौल में पले बड़े, हमने अपने ड्रीम को पूरा किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, वो हमारे दिल में जरूर रहता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे कोई गीत अगर आपके जहन में हो तो वो भी हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: बचपन में एक मुझे याद आता है कि कन्यादान फिल्म थी
0: जी जी,
1: और उसका एक गाना लिखे जो खत तुझे, हाँ मुझे आज भी अपील करता है।
0: अपील करता है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है सर, और जब भी सुनेंगे वो हमेशा उतना ही मेलोडियस रहता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बिल्कुल आपको ले चलते हैं उन्हीं यादों के सफर में और पहुंचते हैं उसी गीत के पास और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
2: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। श्रोताओं, 102.1 एफएम सन सिटी पर प्रोग्राम चल रहा है ओपन शो, और हमारे आज के जो इस बातें मुलाकातें गीत के मेहमान हैं, मेहमान हमारे स्टार आज के श्री देवेंद्र कुमार विश्नोई, जो कि डीआईजी हैं राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से और वीसी पद को संभाल रहे हैं सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी में। और श्रोताओं, आपको बता दें कि अभी जो हमने गीत सुना था ब्रेक से पहले, लिखे जो खत तुझे, वो आपका जो हमारे मेहमान हैं उनका बहुत ही पसंदीदा गीत रहा है शुरुआती दौर में। तो ये जो एक बात हमारे जहन में आई है कि क्या ये गीत उनका इस तरह से उन्हें पसंद आया कि उन्होंने खुद भी ये खत लिखे होंगे कभी?
5: बिल्कुल जरूर
3: जी,
5: क्योंकि हमारे टाइम में व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था। हमारे टाइम में केवल इनलैंड लेटर्स और आपके एनवेलप्स ही हुआ करते थे। और चूंकि जब मैं बीएसएफ में था तो मेरी जब सगाई हो गई 91 में, तो मेरी जो धर्मपत्नी थी वो जोधपुर रहती थी, तो उन दिनों एकमात्र माध्यम पत्र ही हुआ करते थे
3: जी सर।
5: तो पत्र भी जो है फिर वो कई पन्नों के हुआ करते थे तो आज भी उनको संजो के रखा हुआ है, सहेज कर रखा हुआ है।
3: क्या बात है।
5: और एक पूरा छोटा बक्सा जो है वो भरा पड़ा है
3: सर, कभी जरूर देखना चाहेंगे उन पत्रों, क्योंकि ये तो बात समझ में आ रही थी ये सॉन्ग आपके बहुत करीब है। कहीं ना कहीं आप उनके वर्ड्स को जो है गुनगुना भी रहे थे गीत के दौरान, तो ये जो दिल के करीब गीत था इसकी कहानी भी हमें समझ में आ गई है।
5: हाँ जी।
3: तो चलिए सर, आपने जो ये एक सीक्रेट हम सबको रिवील किया है और जो मुस्कान चेहरे पे है उसके साथ बढ़ते हैं इस सफर पे आगे। और जैसा कि नेहा जो थी उनको ये क्वेरी थी कि जैसे आपकी जो बचपन में वापस हम चल रहे हैं सर, और आपके घर का माहौल, क्योंकि आपके फादर साहब जो थे प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर हुए थे और बहुत डिसिप्लिन्ड एक माहौल घर में रहा था, और कहीं ना कहीं स्कूल जो होता है वो एक पर्सनालिटी को मल्टी डायमेंशंस पर तैयार करता है। तो सर, जो आपकी स्कूलिंग रही थी तो उसमें ऐसी क्या को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में भी आप पार्टिसिपेट करते थे? कौन कौन से ऐसे एरियाज थे जिसमें आपने अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट करके रखा था?
5: प्रिंसिपल थे तो स्कूल में जितनी भी हर सैटरडे को एक्टिविटीज हुआ करती थी
3: जी,
5: और मतलब आप जितने नाम लेंगे सारी एक्टिविटी की हुई है
3: क्या
5: आप डिबेट कह सकते हैं, एक्सटेम्पोर कह सकते हैं, सोलो सिंगिंग कह सकते हैं, एनुअल फंक्शन पे जो है ड्रामास में पार्टिसिपेट कह सकते हैं
3: जी,
5: तो ये सब एक्टिविटीज, क्विज कंपटीशन है, तो वेरियस एक्टिविटीज होती थी और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हुआ है
3: जी।
5: मेरे एक साथी यहाँ पर क्लास फेलो यहीं डॉक्टर हैं आपके, डॉक्टर सुनील कोठारी, पीडियाट्रिक्स के, तो वो बीकानेर से, हम दोनों स्कूल में थे। हमारे स्कूल में एक हमने लगातार दो नाटक एक साथ किए दोनों साल। हुल्लड़ मुरादाबादी का एक हिंदी का नाटक था जिसमें मुझे मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से पहले थानेदार का रोल दिया गया लेकिन बीच में क्या हुआ कि जो सेठ साहब थे उनकी जो है वो कहीं जो रोल कर रहे थे वो नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा ये बागड़ी राजस्थानी में कौन बोलेगा, तो वो मैं बोला, तो मेरे को हमारे जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा थानेदारी छोड़ तू सेठ बन जा तो मेरे को उन्होंने उसमें जो है वो सेठ बनाकर मेरे को उसमें रोल दिया मुरादाबादी का। और अगले साल भी जो उसका सेकंड पार्ट किया तो उसमें अगेन मुझे सेट कर रोल।
3: क्या बात है सर, मतलब वो इतना दिल को छू गया था, सब लोगों ने इतना ओरिजिनल रूप देख लिया था सेट का, तो जो सेकंड पार्ट था उसमें भी आपको वो रोल ऑफर हो गया।
5: बिल्कुल जी
3: सर, ये तो जैसे इन हाउस एक्टिविटीज हैं।

0: कुछ आउटडोर एक्टिविटीज में भी हॉर्स राइडिंग वगैरह आप उसके
1: हाँ,
0: भी
1: पिताजी
0: शौकीन रहे
1: बीएसएफ में थे
0: जी?
1: टेकनपुर में, तो इन दिनों अभी जैसे समर एक्टिविटीज़ होती हैं वैसी
0: जी सर,
1: हमारी भी
0: जी
1: एक्टिविटीज़
0: सर,
1: हुआ करती
0: अच्छा
1: थी।
0: अच्छा अच्छा
1: तो उनका ये था भी बच्चे कुछ ना कुछ सीखें,
0: जरूर
1: क्योंकि बीएसएफ की जो हॉर्स विंग है बहुत बड़ी टेकनपुर में
0: जी
1: थी,
0: सर,
1: तो बचपन के तौर पे हम छुट्टियों में हॉर्स राइडिंग सीखने जाया करते थे। और मुझे जो वहाँ के इंचार्ज थे उन्होंने जूनियर्स के लिए पार्टिसिपेट के लिए तैयार करवाया था नेशनल लेवल में
0: अच्छा
1: शो
0: अच्छा
1: जंपिंग में,
0: जी
1: और अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन किसी वजह से कारणवश मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया।
0: जी
1: लेकिन जब मैं बीएसएफ ज्वाइन किया तो बीएसएफ में मेरे बैच का मैं बेस्ट हॉर्स राइडर भी रहा हूँ,
0: क्या
1: इवन
0: बात है,
1: आरपीएस भी एज बेस्ट हॉर्स राइडर रहा हूँ मैं।
0: वेरी
1: और जहाँ
0: नाइस
1: भी मौका मिला है
0: जी सर
1: ड्यूटी के दौरान भी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर रही हो, तो
0: जी
1: जहाँ अगर घोड़ा मिल गया चढ़ने के लिए तो फिर एक राउंड तो लगा ही
0: एक राउंड
1: लेंगे।
0: तो लगा ही लेते हैं, क्या बात
2: तो
0: है
2: सर
0: सर।
2: पढ़ाई के साथ साथ आपने ये सारी एक्टिविटीज़ को भी लगातार जारी रखा, तो ये तालमेल, ये संतुलन जो बना के रखा, वो आपको क्या लगता है कि हमारे जो श्रोता भी सुन रहे होंगे कि क्या बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहने देना चाहिए या फिर सिर्फ पढ़ाई में झकझोर के रख देना चाहिए? क्योंकि जिस पोस्ट पर आप पहुंचे हैं सर, वहां तक पहुंचने के लिए लगता है
0: बिल्कुल
2: कि पढ़ाई तो बहुत की होगी, तो कैसे हमारा वो
0: बैलेंस,
2: बैलेंस
1: पढ़ाई
2: बनाए
1: तो
2: रखता है?
1: देखिए उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस।
0: जी सर,
1: और मेरे पिताजी जो है कोटेशन कहा करते थे, द हाइट्स रीच्ड एंड कैप्ट बाय ग्रेट मैन वर नॉट अटेन इन सडन फ्लाइट्स,
0: राइट
1: वाइल देयर कंपेनियंस वर स्लीपिंग दे वर टॉयलिंग अप इन द मिडनाइट।
0: जी, बिल्कुल
1: तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, बच्चे में पर्सन उसकी प्रतिभा क्या है
0: जी सर,
1: उसको भी हमें देखना चाहिए, और जो प्रतिभा है उसको यदि हम निखारते हैं तो आज के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक बच्चों की भावनाओं को समझ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो जो है उसको
0: डिसीशंस
1: एक्टिविटी
0: लेते
1: करवाते
0: हैं,
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: तो हो सकता है कई बार बच्चे की कोई अच्छी रुचि हो और उसकी वो हॉबी ही अल्टीमेटली उसका प्रोफेशन बन जाए।
0: जी सर,
1: तो ये साथ साथ जहाँ मौका मिले वहाँ सुविधाएं हो या मौका हो तो वहाँ ये करवा लेनी
2: तो
1: चाहिए।
2: कभी इस तरह का भाव आपके जहन में नहीं आया कि मैं ये एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बना दूं या फिर हॉर्स राइडिंग में हमारा जो हमारा करियर है उसको चुन लूं?
1: वो भी आया, लेकिन जब आगे बीएसएफ में रहते हुए मेरे पास ऑप्शन थी मैं वहाँ अपनी ट्रांसफ़र करवा लेता,
2: जी
1: लेकिन चूंकि सिविल लाइफ में कंपटीशन की भावना मेरे मन में आ गई थी और ये था कि अभी भी कुछ समय है मैं कुछ कर सकता हूँ,
0: जी
1: तो एक कड़वा डिसीजन मैंने लिया और बीएसएफ से इस्तीफा दे के और वापस पुनः नए स्तर पर तैयारी की, थोड़ी सी रिस्क ली।
2: जी
1: और चूंकि अपने आप को एस्टेब्लिश करना था
2: जी
1: तो उसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी
0: खोना
1: पड़ता
2: पड़ता
1: है,
0: है जी,
1: तो मेरी तरफ से ये एक प्रयास रहा था।
0: क्या बात है।
2: बिल्कुल श्रोताओं, तो हमने ये जाना कि जो समझौते हमें कई बार करने पड़ते हैं, कुछ कड़वे डिसीजन जो हमें लेने पड़ जाते हैं कई बार लाइफ में, क्योंकि हमें अच्छा मुकाम, एक जो हमने
0: हासिल
2: सोच
0: करना
2: रखा
0: है,
2: होता है, वो हासिल करना होता है।
0: बिल्कुल। और वो डिसीजन उस वक्त थोड़े से बेटर लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म के लिए वो डिसीजंस बहुत सही हो जाते हैं, और ये हम एक एक एग्जाम्पल अपने सामने अभी देख ही रहे हैं। तो श्रोताओं, हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बातें हैं ये बिल्कुल आप अपने ऊपर अगर अभी तक अप्लाई नहीं की हैं तो करनी शुरू कर दीजिए। सर ने दो बात अभी अभी मैं बताई कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, है ना? अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपको मिले तो उसके लिए शॉर्टकट नहीं, और कहते हैं ना कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपने अपनी आंखों में कुछ सपने संजोए हैं तो।
2: बिल्कुल।
0: सर बढ़ते हैं आपकी जो लाइफ है उसके अगले पड़ाव पर, और क्योंकि पढ़ाई लिखाई हो गई उसके बाद में आपने कहा बीएसएफ, आपने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था और आपकी सगाई हुई भी थी, तो जो ये सगाई थी शादी भी यहाँ हुई थी या नेक्स्ट ज्वाइनिंग के बाद हुई थी ये
1: इन
0: जो?
1: बिटवीन हुई
0: हाँ
1: थी
0: जी, हाँ जी
1: क्योंकि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था।
0: जी सर
1: 93 में ही मेरी शादी हुई, लेकिन उससे पहले मैं इस्तीफा दे चुका था।
0: जी
1: मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, अदरवाइज एक सर्विस वाले को देख के लड़की दी और उसके बाद वो बेरोजगार हो जाए तो एक बड़ा टफ पॉइंट
0: टफ
1: है, टफ
0: पॉइंट
1: डिसीजन
0: है,
1: है,
0: राइट। हाँ
1: लेकिन उन्हें भी विश्वास था मेरी
0: जी
1: काबिलियत,
0: सर, जी
1: सपोर्ट भी उनका सबका रहा है, पेरेंट्स का मेरे सपोर्ट रहा है, इवन मेरे वाइफ क्योंकि प्रोफेसर आज हैं फिलोसफी में,
0: जी
1: उनका फिलोसफी सब्जेक्ट था, मेरी कंपटीशन में फिलोसफी सब्जेक्ट रहा है, तो उनका यह था भी एक बार आप बेसिक्स कोचिंग लेके, जयपुर में चांदमल जी कोचिंग दिया करते थे
0: जी
1: फिलोसफी की, यदि वो आप एक बार कोचिंग ले लेंगे तो मोटे तौर

0: फिलोसफी आपकी क्या है वो क्लियर हो जाएगी, और फर्दर स्टडीज़ मैं आपको साथ रह के करवा दूंगी, जो कि उन्होंने करवाई।
1: जी सर
0: दो पेपर मेरे लॉ के थे, तो
1: जी
0: एक तरह से कंप्लीट पैकेज मेरे पास था तैयारी का,
1: जी
0: तो ये मान सकता हूँ कि सपोर्ट उनका रहा। और उनकी जॉब 92 में लग गई थी
1: जी सर
0: एज प्रोफेसर,
1: ओके
0: लेक्चरर लगी थी, तो इसलिए मैंने एक मजबूती मुझे मिल गई थी कि आधार मेरे पास है अब
1: है
0: छोड़ने का।
1: बिल्कुल जी सर। तो जब आपने वहाँ से इस्तीफा दिया, फिर आपकी शादी हुई और फिर आपने कंपटीशन को प्रिपेयर किया, बहुत मेहनत करी, आपने बताया अपने सब्जेक्ट्स बताए, और फिर आपने ये जो मुकाम पाया, तो ये जो पहली पोस्टिंग थी आपकी, ये कहाँ पे मिली थी? और सर उस पहली जो पोस्टिंग है, पहली जो ज्वाइनिंग आपकी इसके बाद रही, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: आरपीएस ट्रेनिंग करने के बाद मेरी बेसिक ट्रेनिंग सिरोही ज़िले में हुई,
1: जी
0: और कंफर्मेशन होने के बाद मुझे जो पहली पोस्टिंग मिली वो सीकर में एक नया सर्कल क्रिएट हुआ था
1: ओके
0: ग्रामीण के नाम से, वहाँ रही। लेकिन वहाँ 4 महीने ही रहा, उसके
1: जी सर
0: बाद पुनः मेरी ट्रांसफ़र जो है बीकानेर ही कर दी गई, जहाँ मेरी धर्मपत्नी कॉलेज में, डूंगर कॉलेज में प्रोफेसर
1: ओके
0: थी।
1: जी सर
0: कपल पोस्टिंग देखते हुए तो मैक्सिमम पोस्टिंग फिर मेरी बीकानेर और बीकानेर के आसपास ज़्यादा
1: आसपास ही
0: रही।
1: रहे। तो सर जब आप वापस जीवन संगिनी के पास आप आ गए, और कहते हैं कि बहुत मेहनत के बाद एक मुकाम हासिल करके जब सब कुछ सेटल हो गया लाइफ में, तो फिर कौन सा गीत था जो आप ज्यादा गुनगुनाया करते थे?
0: गीत गाता हूँ मैं।
1: गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। तो सर वैसे आपने कहा कि आप सोलो सिंगिंग भी आपने स्कूल में की है, तो अगर ये गीत की दो पंक्तियाँ आप गुनगुनाते हुए बताएंगे, तो हमारे श्रोताओं को भी काफ़ी मज़ा आएगा, और आपकी जो चॉइस है उसे हम भी सुनेंगे और हमारे श्रोता भी सुन पाएंगे।
0: ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं,

0: कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं, सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं,
1: क्या बात
2: गीत
1: है, क्या
2: गाता
1: बात
2: हूँ
1: है।
2: मैं। वाह क्या बात है।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: श्रोताओं, बिल्कुल आपको भी अब इंतजार नहीं हो रहा होगा, आप भी जानना चाह रहे होंगे कि और आगे क्या है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और देवेंद्र सर से हम पूछते हैं आगे का। हमारा जो दिल में क्वेश्चन आया है कि अब परिवार जो है वो स्टेबल हो गया था, शादी हो गई, तो सर परिवार में और कौन कौन है आपके?
5: परिवार में आज की तारीख में मेरी धर्मपत्नी जी, दो प्रोफेसर हैं
4: जी,
5: एक बेटा है, एक बहू है
4: जी,
5: मैरिड है बेटा
4: जी,
5: एक पोता है।
4: अच्छा।
5: और डॉटर मेरी छोटी बेटी है।
4: आपकी बेटी है। तो सर जब, क्योंकि देखिए जो आपकी पोस्ट है, जितनी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं, उनसे हम समझ सकते हैं कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप परिवार के साथ होते हैं तो जो क्वालिटी टाइम होता है परिवार के साथ बिताना, तो उसको आप कैसे अपने परिवार के साथ बिताते हैं? मतलब क्या ऐसी चीजें होती हैं जो होता है ना कई बार की दिल में रहती हैं और जब परिवार मिलता है तब हम उनसे उनके साथ करना कोशिश करते हैं, वो हमारे श्रोता जानना चाहते हैं।
5: जब मैं ट्रेनिंग में था तो मेरे दीद एन एसपी थे, उन्होंने मुझे एक बात कही थी
4: जी सर,
5: देवेन डोंट नेग्लेक्ट द जॉब एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली एंड डोंट नेग्लेक्ट वाइस वर्सा आल्सो, योर फैमिली एट द कॉस्ट ऑफ योर जॉब। तो एक बेहतर तालमेल सफलता के लिए जरूरी है
4: जी,
5: दोनों ही चीजें जरूरी हैं आपकी जिंदगी में, आपकी जॉब भी जरूरी है, आपकी फैमिली भी जरूरी है। और यही वजह रही है कि जहां भी रहा हूं मैंने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ पूरा टाइम इंजॉय किया है, कभी आउटिंग पे, कभी पिकनिक पे
4: जी सर,
5: कभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में टूर्स एंड ट्रेवल्स भी किए हैं।
4: हाँ जी।
5: और लोकल तो जैसे कभी मौका मिला है तो मॉल चले गए, मूवी देख ली, खाना खाए,
4: हाँ।
5: कोई ना कोई एक्टिविटीज उनके साथ रही है।
6: तो सर आपको घूमने का शौक भी रहा होगा जरूर, परिवार के साथ में जो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, और घूमने की अगर बात आई है तो कहाँ कहाँ आपने एक्सप्लोर कर लिया है, और क्या आप वहाँ जाकर भी कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हैं बच्चों के साथ?
5: हाँ बिल्कुल किए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप पे जो है वहाँ जाकर, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड पे जाके वहाँ पर स्नॉर्कलिंग की हुई है, स्कूबा डाइविंग की हुई है। और जैसे दुबई गए थे तो वहाँ पर जो उनके फरारी वर्ल्ड है उसमें एक्टिविटीज की हुई हैं। मलेशिया में जेंटिंग गए थे, वहाँ पर जो है उनके वो अलग अलग झूले वगैरह होते हैं, वो सारे उनके बच्चों के साथ
4: सब कुछ
5: पूल में और हर जगह एक्टिविटी। चाहे श्रीलंका गए तो वहाँ पर भी समुद्र के अंदर एक्टिविटीज, तो जहाँ मौका मिला वहाँ बच्चों के साथ उनके जैसे ही रह के उनके साथ।
6: बिल्कुल। तो एक पिता के रूप में आपने बच्चों के साथ में जब ऐसा एडवेंचरस एक्टिविटीज की थी, और अब आप जब दादा बन गए हैं तब आप क्या उनके साथ भी, अपने पोते के साथ में भी
5: उसके साथ ज्यादा करूंगा?
4: ज्यादा करूंगा। वो कहते हैं ना कि मूल से सूद जो है वो ज्यादा प्यारा होता है, प्यार ज्यादा प्यारा होता है, तो वो प्यार वहाँ ज्यादा हो ही जाता है। सर सर यहाँ पे एक बात नेहा ने क्लिक किया कि ट्रेवलिंग जो था आपका शौक उसने पकड़ा, वही एक शब्द आपने बोला था मूवीज, तो क्या मूवीज का भी शौक आप रखते हैं?
5: हाँ, बचपन से ही रहा है मुझे मूवीज का शौक
4: जी।
5: और जैसे टेकनपुर फादर की पोस्टिंग रही तो वहां पर जो बीएसएफ का थिएटर हुआ करता
4: जी।
5: था, ओपन एयर थिएटर हुआ करता था।
4: हाँ जी, हाँ जी।
5: उसमें वेडनेसडे को इंग्लिश मूवीज आया करती थी और सैटरडे संडे को हिंदी मूवीज चला करती थी, तो फादर की एक कंडीशन रहा करती थी कि ओके मेरे साथ चलो, लेकिन वापसी में यू विल टेल द होल स्टोरी टू मी इन इंग्लिश। तो वो एक उनको ब्रीफ हल्का सा आउटलाइन दिया करता था। बचपन में भी था, जैसे हमारे, मैं जलंधर रहता था तो उन दिनों रेडियो स्टेशन अपना क्या टेलीविजन जो है वो बहुत कम हुआ करते थे
4: जी।
5: लेकिन अमृतसर कैच किया करता था जलंधर।
4: अच्छा।
5: और थोड़ा बहुत लाहौर भी कैच करता था। तो वहां पर एक इंग्लिश में एक सीरियल आया करता था, अमेरिकन सीरियल था, सिक्स मिलियन डॉलर मैन।
4: अच्छा।
5: याद है मुझे आज भी, वेडनेसडे के दिन आया करता था।
4: क्या बात है।
5: तो मैं वो रेगुलरली वो जाके देखा करता था, मुझे थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड की मूवीज और सीरियल देखने का शौक रहा था।
6: क्या तो माध्यम की बात जब हमने अभी आपने की कि आप अंग्रेजी में भी

0: वो उनको ब्रीफ करके बता दिया करते थे। तो आपके लिए कभी ये एक चुनौती भरा नहीं रहा होगा, या शुरुआती दौर में आपको लगा कि हाँ ये जो हमें अंग्रेजी का जो अभी हाल ही के बच्चों में भी रहता है कि हम मल्टीपल जो है ना लैंग्वेजेस सीखने का जो खौफ रहता है एक।
1: नहीं, ऐसा नहीं रहा।
0: हाँ
1: इस मामले में हमारी इंग्लिश जो है फादर ने बहुत बेहतर तरीके
0: बिल्कुल
1: से सुधारी,
0: अभी
2: जी
1: और उन्होंने जो बचपन में हमसे टेंसेज से सुना करते थे, टेंस से वो कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस,
0: जी
1: ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
0: सर
1: सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सब फॉलो हो जाता है उससे।
0: अच्छा
1: तो यही रही है कि मेरी कंपटीशन में हमेशा इंग्लिश ने मुझे बहुत एडवांटेज दिया है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी रहा हूँ,
0: हाँ जी
1: क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स आपकी कंपलसरी जो है इंग्लिश मीडियम के हुआ करते
0: हुआ
1: थे।
0: करते
1: साइंस बैकग्राउंड के
0: जी।
1: सब्जेक्ट्स सारे इंग्लिश में थे, लॉ इंग्लिश में था, तो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे पे की हैं।
2: कहीं ना कहीं सर हम देखें कि वो जो पेरेंटिंग हुआ करती थी हर चीज़ में कोई ना कोई सीख हमें दिया जा देकर जाती थी। जैसे फादर साहब ने आपको कहा कि चलो मूवी देखने चलो, लेकिन लौटते टाइम तुम पूरी स्टोरी मुझे इंग्लिश में सुनाओगे। तो उनका पर्पस जो था वो यही था कि बच्चा देखकर खुश हो रहा है और बाद में मुझे समझाएगा, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है उसकी इम्प्रूव होती जाएगी। तो ये
1: उसके लिए
2: जो
1: उन्होंने एक दो प्रयास और भी किए थे कि
2: जी
1: वो कहते थे कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी
2: राइट
1: चाहिए।
2: सर
1: तो छुट्टियों में जब हम आते थे, गांव आते थे, तो
2: हाँ
1: हमारे
2: जी
1: पास केवल दो ही काम हुआ करते थे कि
2: ले
1: एक तो आप नॉवेल्स जितने भी स्कूल की लाइब्रेरी में वो ले लीजिए, तो
2: लीजिए
1: मैंने हार्डी सीरीज़ बहुत पढ़ी हुई है,
2: ओके
1: और उसके बाद एक पेज हिंदी का और एक पेज इंग्लिश का आप नियमित लिखेंगे।
2: लिख
1: तो वो कहते थे कि हैंडराइटिंग आदमी का छापे जैसी होनी चाहिए। कोशिश की, मेरी
2: हाँ
1: तो नहीं हुई, लेकिन मेरी सिस्टर्स की बिल्कुल छापे जैसी हैंडराइटिंग हुआ करती थी।
2: अच्छा जी सर
0: पिताजी अनुशासन को बरकरार रखकर आपको जो है फन एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कर लेते थे और आपने उसका आनंद भी उठाया इस तरीके से।
2: पेरेंटिंग इसी को कहते हैं
0: जी
2: नेहा। और जो ये एक अच्छी पेरेंटिंग जब मिल जाती है तो हम देख सकते हैं उदाहरण हमारे सामने है कि काबिलियत और एक अच्छा अनुशासन वाला माहौल पूरा एनवायरनमेंट है ना ये इंसान को सफलता की सीढ़ी चढ़ाए जाता है। तो सर हमारे जो यूथ हैं अगर वो इस तरफ रुझान करते हैं तो जिस तरीके से आपने तैयारी की थी कुछ टिप्स हमारे यूथ्स को आप दें ताकि वो भी मोटिवेट हों और कुछ इस तरफ सोचना जो उन्होंने शुरू किया है उसे एक दृढ़ निश्चय पे ले लें।
1: एक ये कविता कह सकते हैं या कुछ
2: जी
1: पंक्ति कह सकता हूँ
2: जी
1: कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है,
2: जी जी जी
1: पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से
2: हौसलों
1: उड़ान
2: में
1: होती
2: उड़ान
1: है।
2: होती है राइट
1: और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि व्हेन आई कैन एवरीबॉडी कैन,
2: क्या बात है
1: क्योंकि मैंने अपनी मंजिल हर तरह से प्रयास करके प्राप्त की है।
2: जी
1: और आप ये मानिए कि मैंने एक दर्जन से ऊपर पीएससी लेवल के इंटरव्यू दिए हैं, तो हर जगह इंटरव्यू तक तो पहुंचा हूँ।
2: जी
1: तो यही है कि सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात होती है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने
2: पहुंचना बहुत
1: की,
2: बड़ी
1: तो
2: बात
1: वो यस आई कैन, यदि आपके मन में है दृढ़ निश्चय है, तो आदमी यदि ठान ले तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस रियावत जाते सिल के
2: सिल पर
1: परत
2: परत
1: निसान।
2: निशान बिल्कुल सर। तो श्रोताओं आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ओपन शो और ये जो मोटिवेशनल बातें हैं आप देखिए कि एक बचपन से लेकर अभी तक का जो सफ़र है उसमें कितनी जगह पर किस तरीके से मोटिवेशंस मिले और किस तरीके से लाइफ के हर पड़ाव को सक्सेसफुली पार कर कर आज हमारे साथ हैं आईपीएस देवेंद्र कुमार विश्नोई जी। और इनके बारे में जो आप सुन रहे हैं आप देखिए मैं आपको कहती हूँ आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए इनकी शख्सियत को इमेजिन करिए और इनकी जो मल्टी डायमेंशंस पे इन्होंने बात की है उसे इमेजिन करिए। आप जो फिगर आउट करेंगे बिल्कुल मैच करेगा देवेंद्र सर से। तो श्रोताओं बिल्कुल जो सर का अगला पसंद का गीत है वो हम सर से पूछ लेते हैं क्योंकि अभी तक के सफर में इतना हम समझ गए हैं कि गीतों के शौकीन आप हैं।
1: बिल्कुल जी, मेरी पसंद का अगला गाना है पल पल दिल के पास।
2: क्या बात है। तो जो होम मिनिस्टर साहिबा हैं मैडम के लिए पूरी
1: जी
2: तरह
1: उनके लिए
2: डेडिकेटेड आपके सॉन्ग्स हैं तो सर ये गीत भी उनको डेडिकेट करते हैं और
1: बिल्कुल
2: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: 102.1 FM सन सिटी पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम बातें मुलाकातें गीत से सजा प्रोग्राम ओपन शो. और हमारे आज के मेहमान जो हमारे साथ में स्टूडियो में विराजे हुए हैं IPS अधिकारी श्री देवेंद्र कुमार विश्नोई. उनसे हम खूब सारी बातें कर रहे हैं और जान रहे हैं उनके जीवन के बारे में भी और अगली बातें और भी हम से जानेंगे.
1: जी बिल्कुल नेहा. और सर से अब हम बात करते हैं उस तरफ जहाँ पर उनकी जॉब प्रोफाइल से जुड़ी हुई कुछ बातें हम बात कर रहे हैं कि जैसे रूटीन ड्यूटी करते हुए भी सर पब्लिक से आप कैसे जुड़ते हैं, क्योंकि आप मल्टी डायमेंशंस पे हैं और आउट ऑफ द बॉक्स जा करके, जैसे हम कहते हैं कि आपकी जॉब के नवाचार.
2: हाँ जी
1: जी. तो इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी आपने किए और पब्लिक से आप जुड़े.
2: बीकानेर में जब मैं डिप्टी SP CO सिटी था तो एक फंक्शन में मुझे बुलाया गया. कूडो नाम की संस्था थी तो उनके साथ रहकर मेरा विचार विमर्श हुआ, क्योंकि मैंने BSF में कमांडो कोर्स किया हुआ है और कमांडो कोर्स में एक चैप्टर होता है अनआर्म्ड कॉम्बैट. तो चूंकि आज का एकांकी युग है और पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, छोटा ब्रदर था तो भी सिस्टर्स के साथ आया, सिक्योरिटी के तौर पर मैं जाता था. आज के युग में अकेले बहन भाई हैं या दो बहनें ही हैं तो उनके साथ कोई जाने वाला नहीं है, पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मन में आई कि बच्चों को, बच्चियों को क्यों नहीं ट्रेंड किया जाए.
1: जी.

0: नाम कमेट में, तो एक महिला सुरक्षा चक्र के नाम से सन 2000 में मैंने एक पुलिस प्रशासन के सहयोग से संस्था के साथ शुरू किया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी मुहिम पे चला। और आज मुझे खुशी है कि जूडो कराटे में कूडो जो की संस्था है, 200 से ऊपर बच्चे बच्चियां जो हैं ब्लैक बेल्ट हैं।
1: क्या बात है।
0: और चूंकि अब उसको खेल को मान्यता प्राप्त हो चुकी है, तो SFI गेम्स के द्वारा तो अब बच्चों को आगे जॉब लगने के भी स्कोप है, तो एक नवाचार तो मैंने ये किया
1: जी सर।
0: दूसरा, ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में शुरू से ही मेरे मन में रही है, ट्रेनिंग से ही मैंने जो है ट्रैफिक के मामले में सख्ती रखी है
1: जी।
0: और जहां भी रहा हूं वहां पर ट्रैफिक के मामले में जो वायलेशंस हैं उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की है। अभी कोटपुतली बैरोड SP रहते हुए NH 48 पर जो है अवैध कट्स बंद करवाए, और एक जिसे हम कहते हैं लेन ड्राइव सिस्टम
1: जी सर,
0: जिसे राज्य सरकार ने भी अपने सर्कुलर में यही कह के कि NH 48 के जो रोल मॉडल है उसको पूरे राजस्थान में लागू किया जाए।
1: अच्छा।
0: तो मैं कहीं ना कहीं पब्लिक की और मेरे स्टाफ की उसमें जीत मानता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत से उसको लेन सिस्टम को, और वो हमारे जरूरी भी है क्योंकि एक्सीडेंट्स जितना हम डिसिप्लिन में सड़क पे जो डिसिप्लिन है वो बहुत जरूरी है, और उसमें मैं ये भी कहता हूँ कि एक्सीडेंट या हेलमेट लगाने के लिए मैं आपको क्यों टोकूं?
1: सही बात।
0: आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके खुद के शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति। तो यदि आप सचेत हैं, जागरूक हैं, तो आप ऐसी लापरवाहियां नहीं करेंगे जो आपको भी नुकसान दे और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं स्टेट को भी नुकसान देती हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: इसी तरह जो एक नवाचार मैंने शुरू किया नशा के विरुद्ध, क्योंकि गंगानगर में मेरी पोस्टिंग रायचनगर, 3 साल एडिशनल SP रहा हूँ, वहाँ की जो संस्था थी नशा मुक्ति की उनके साथ काफ़ी मैंने अवेयरनेस ड्राइव स्कूल्स एंड कॉलेजेस में की
1: जी।
0: तो नशे में क्योंकि दो चीज़ें नशे को परिभाषित करती हैं, एक तो उसकी जो है जिसको कहते हैं एडिक्शन,
1: राइट सर,
0: और एक एडिशन, आपका एडिक्शन लत लग जाना, और एडिक्शन मींस आप उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं एक नशे की डेफिनेशन में आ चुका है
1: जी,
0: क्योंकि इसमें भी ये दो चीज़ें हैं, एडिक्शन और एडिशन। आप एक रील की जगह रात भर रीलें देखते
1: स्क्रॉल करते जाइए,
0: स्क्रॉल करते जाइए। तो इस मामले में भी मैंने अवेयरनेस ड्राइव की, और वहाँ अपना रामायण का जो किस्सा है
1: जी,
0: जो सोने के हिरन वाला है, जिसमें लक्ष्मण रेखा जो लक्ष्मण जी ने सीता मैया की चारों तरफ खींची थी, तो मैंने कहा वो लक्ष्मण रेखा क्या है, वो ये सोशल मीडिया के लिए भी बहुत जरूरी है कि प्रत्येक बच्ची को, प्रत्येक महिला को समझना होगा कि ये सोशल दायरा जो है वो एक लक्ष्मण रेखा के तहत ही आपको उसमें रहना होगा, एक अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी, यदि आपने वो बाउंड्री क्रॉस की तो फिर आपके साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो ये अवेयरनेस ड्राइव भी मैंने अजमेर में 30-35 स्कूल कॉलेजेस कवर किए लड़कियों के, जहाँ भी रहा हूँ वहाँ पर ट्रैफिक अवेयरनेस, नशा मुक्ति और सोशल मीडिया के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको मैंने जो है बखूबी प्रयास किया है कि मैं डाउन द लाइन बच्चों तक उसको पहुंचा सकूं। और मुझे जो फीडबैक मिला कि काफ़ी बच्चियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए। एक बच्ची बाहर जा रही थी,
1: अच्छा,
0: तो उसकी मदर मेरे पास लेके आई थी, किसी नोन थी, तो उन्होंने तो उसको मैंने बताया समझाया 15 मिनट, तो बाद में जब वो उनकी माताजी मिली तो उन्होंने कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: मेरी बच्ची ने घर जाते ही सबसे पहला काम किया कि उसने अकाउंट सारे डीएक्टिवेट किए, उसने कहा मम्मा आप चिंता मत करना, मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर अब आप मुझे दुबई भेज सकते हो
1: जी।
0: तो ये कॉन्फिडेंस जो बच्चों में एक समझ, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है, जरूरत है तो उसको उसके फॉलआउट्स और उसके जो नुकसान होने वाले हैं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम भी उसी से जुड़ा हुआ है
1: जी। बिल्कुल।
0: तो इन चीजों की अवेयरनेस ही हमारे को जो है बचा सकती है।
1: बिल्कुल सही आपने कहा सर कि इन चीज़ों की अवेयरनेस ही हमें बचा सकती है। सर एक आपका वीडियो था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे झुंझुनू का,
0: हाँ, झुंझुनू का है,
1: वो काफ़ी वायरल हुआ था, और उसमें भी मतलब आपका एक बहुत अच्छा मैसेज जो था वो लोगों तक आया और काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को,
0: उसमें एक पेरेंटिंग के पार्ट को मैंने प्रदर्शित किया था
1: जी,
0: कि मेरा चूंकि इकलौता बेटा था और उसको चूंकि एक इंसिडेंट कहीं हुआ था, उसको मैंने देख कर मुझे एक सीख मिली थी
1: जी।
0: तो मैंने बेटे को भी यही कहा था कि 12th तक, जब तक तुम कॉलेज नहीं पकड़ लो तो मोबाइल और मोटरसाइकिल, ये दो चीज़ें मुझसे मत मांगना। तो ये काफ़ी पेरेंट्स ने इस चीज़ को सराहा और अपने बच्चों को भी उन्होंने इस चीज़ को, मेरे पास सैकड़ों फीडबैक आए कि साहब हमने भी हमारे बच्चे को यही बताया कि देखो ये पुलिस के ऑफिसर होके भी अपने बच्चे को जो है
1: नहीं
0: दे रहे
1: जी।
0: तो चूँकि उस बच्चे की जो उम्र है वो इन चीज़ों के जो नुकसान है उनको नहीं समझ सकती
1: जी सर।
0: तो ये भटकाव कहीं ना कहीं बच्चे की एक जो इसको हम कहते हैं रीच, वो बढ़ा देती है,
1: बढ़ा देती है,
0: तो उससे उसको फायदा

0: और कई बार नुकसान ज्यादा हो सकता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: और क्योंकि इस अनुभव को जो इस उम्र तक पहुंच करके अनुभव जो मिला है वो बच्चों को इस तरह से दे करके हम उनकी लाइफ को थोड़ा सा सेफर साइड पे गाइड कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं
0: जी,
1: जी। सर जो हमारे यंगस्टर्स है, हमारे यूथ है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से जिसे वो अपने जीवन में ढालें और आगे बढ़ें?
0: सबसे जो जरूरी चीज मैंने पहले ही बताई कि पॉजिटिविटी,
1: जी
0: निराशा कभी नहीं आने देनी
1: राइट
0: चाहिए।
1: सर।
0: एक वर्ड है, दिस टू शैल पास। कितना टफ से टफ समय आए तो भी आपके मन में ये होना चाहिए कि ये तो एक टेम्परेरी फेज है,
1: फेज है।
0: निकल जाएगा। और लाइफ इज अ स्ट्रगल, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा।
1: जी
0: एंड सक्सेस इज अ लैडर, नॉट एस्केलेटर।
1: राइट राइट
0: आपको सक्सेस में एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। लिफ्ट नहीं है कि आपने बटन दबाई और रातों रात आप अमीर हो गए या शॉर्टकट से आप अमीर हो गए।
1: बहुत सही बात है
0: हमारे गुरुजी ने भी कहा है अपने
1: जी
0: शब्दों में,
1: सर।
0: कहते हैं हक हलाल पिछाड़ियों नहीं, कि मतलब आपको अपने हक की और राइट, आपकी राइटियसनेस होनी चाहिए और आपकी हलाल मीन्स मेहनत की होनी
1: मेहनत
0: चाहिए।
1: करनी।
0: तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये बच्चों को पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी को जीना है। और एक जो गीता का श्लोक है,
1: जी सर
0: डू योर ड्यूटी, रिजल्ट इज नॉट दाई कंसर्न,
1: राइट।
0: कि आपका जो मेन आपका कर्म प्रधान हम हैं, तो हमें कर्म करने में हमारा अधिकार है। फल की इच्छा के बिना यदि आप कर्म करते हैं तो आपको अल्टीमेटली, मैंने भी असफलताएं देखी हैं,
1: जी सर।
0: बहुत देखी हैं, तो लेकिन हर सफलता असफलता के बाद पिताजी ने एक ही चीज़ कही थी कि भी कंपटीशन में अगर आप रह गए हो, कोई बात नहीं, आप सेल्फ इवेल्युएशन करें। यदि आपको लगता है कि आप और इसमें सुधार की गुंजाइश है, तो टेबल कुर्सी लेके दोबारा बैठ जाओ।
1: क्या बात
0: यदि
1: है।
0: आपको लगता है कि यस, आई हैव रीच्ड माई ऑप्टिमम फाइनल, अब मेरे इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, देन गो फॉर अनदर। आप फिर उसको चेंज कर लीजिए, फिर नए सिलसिले कहीं आप देखिए, और हो सकता है कि कहीं आपकी बेहतरी के लिए कोई और लिखा हो।
1: कुछ और लिखा। पिताजी ने भी ऐसे प्रेशराइज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पुश किया है आपको
0: हाँ,
1: कि
0: मोटिवेट किया।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और क्योंकि आर्मी में 4 बार देने के बाद उन्होंने यही कहा कि बेटा, इट इज़ नॉट योर लॉस, इट इज इंडियन आर्मीज लॉस। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन बहुत
1: सही बात
0: बड़ा
1: है
0: पेरेंट्स की तरफ से रहता है।
1: जो बहुत ज़रूरी होता है सर,
0: हाँ
1: क्योंकि
0: जी,
1: अगर नेगेटिविटी दे दी तो बच्चा नेगेटिविटी पे ही आ जाता है, और
0: बिल्कुल,
1: वहाँ अगर संभाल लिया तो वो एक मोड़ जो होता है वो उसकी ज़िंदगी का रुख बदल देता
0: आपका
1: है,
0: रवैया जिंदगी के प्रति ही बहुत कुछ मायने रखता
1: मायने
0: है।
1: रखता है। बहुत सही। तो सर जिंदगी के प्रति जो रवैया है उससे जुड़ता कोई गीत, जब कभी आप ऐसे फेज में आए हों और आपने उस फेज को, उस फेज से निकलने के लिए, क्योंकि आप गीतों के भी शौकीन हैं और दिल के करीब आपके गीत रहते
0: जी,
1: हैं, तो ऐसी फेज के लिए कोई ऐसा गीत जो आपने कभी गाया हो,
0: एक
1: गुनगुनाया
0: पॉजिटिविटी
1: हो?
0: के साथ है, जब आप भी
1: जी
0: आगे सावन का मौसम आने वाला है तो
1: हाँ,
0: रिमझिम गिरे सावन।
1: रिमझिम गिरे सावन, क्या बात है। तो बिल्कुल आपकी पसंद का ये गीत उन सभी के लिए जो एक कहीं पे भी अगर नेगेटिव होते हैं तो उसे पॉजिटिविटी में ले सकते हैं।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: जी श्रोतो, आप सुन रहे प्रोग्राम ओपन शो और हमारे साथ एक बेहद खास और प्रेरणादायक शख्सियत मौजूद। हमारे साथ श्री देवेंद्र कुमार बिश्नोई आईपीएस, जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आरपीटीसी जोधपुर के उप महानिरीक्षक और सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जो है उसके प्रो वाइस चांसलर और डीन एकेडमिक्स हैं। श्रोताओं, इनका सफर सीमा सुरक्षा बल से शुरू होकर वकालत के गलियारों से गुजरते हुए भारतीय पुलिस सेवा के इस शीर्ष मुकाम तक पहुंचा। तो सर, बहुत सारी बातें अभी भी दिल में हैं और हमारे श्रोताओं के भी दिल में होंगी, लेकिन समय की सीमा जो है वो हमें कहती है कि हमें यहाँ थोड़ा विराम लेना पड़ेगा और फिर से आपसे इस स्टूडियो में कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी और जो दिल में और प्रश्न रह गए उनकी बरसात उस वक्त हम जरूर करेंगे।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे श्रोताओं से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ओपन शो, बातें मुलाकातें गीत।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन का रेडियो।

श्रोताओं कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक रेडियो बसता है जिसका कोई ना तो एंटीना होता है ना ही कोई फ्रिक्वेंसी, फिर भी उसकी आवाज़ सीधे दिल तक पहुंच जाती है। कभी वो हमें हंसा देती है, कभी किसी की याद में मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है, तो कभी पुराने दिनों की खिड़की खोल देता है, और कभी कभार तो भविष्य के सपनों में रंग भी भर देता है। जी हाँ, ऐसा है हमारा मन का रेडियो। और इसी प्रोग्राम को लेकर हाजिर हो चुकी हूँ मैं कविता सांकला, स्वीकार कीजिए नमस्कार। मन का रेडियो एक ऐसा सफर जहाँ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और यादें मेहमान बनकर आती हैं, और खुशियाँ बिना दस्तक दिए दिल में उतर जाती है। तो चलिए अगले एक घंटे तक दुनिया की सारी आवाज़ों को थोड़ा सा विराम देते हैं और सुनते हैं अपने मन की आवाज़।

वाह, लता मंगेशकर की आवाज में कितना एहसासों भरा गीत अभी आपने सुना श्रोताओं। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, कभी कभी हम इंसान को नहीं किसी एहसास को ढूंढ रहे होते हैं, कभी ऐसी मुस्कान को जो बरसों पहले हमारे चेहरे पर रहती थी, किसी ऐसी बेफिक्री को जो बचपन में हमारी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। और यहीं से शुरू हुआ है हमारे मन की रेडियो का पहला स्टेशन। आज जरा आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए वो दिन जब जेब में पैसे कम थे लेकिन खुशियां बहुत थी, फोटोज कम खींचे जाते थे लेकिन यादें ज्यादा बनती थी, घड़ी में समय कम देखा जाता था लेकिन लोगों के साथ समय ज्यादा बिताया जाता था। जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें कभी खरीदी नहीं जाती, बस उन्हें जिया जाता है। कहा कहते हैं ना, कुछ लम्हे वक्त से चुरा लेने चाहिए, कुछ सपने फिर से सजा लेने चाहिए। जिंदगी रोज एक नई किताब लिखती है, कभी कभी पुराने पन्ने भी पढ़ लेने चाहिए।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: श्रोताओं, अगर दुनिया का सबसे सुंदर आभूषण जो कोई है तो वो है मुस्कान। जी हाँ, और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इसे पहनने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आपके चेहरे की मुस्कान किसी और के चेहरे पर भी मुस्कान ले आए तो समझ जाइए आपका दिन सफल हो गया है। तो क्यों ना आज अपने मन से एक छोटा सा वादा कीजिए कि आज किसी एक व्यक्ति के मुस्कुराने की वजह जरूर बनेंगे। जी हाँ श्रोताओं, मुस्कान वो खुशबू है जो खुद के साथ साथ दूसरों को भी महका देती है, और खुशियाँ वो बारिश है जो बांटने से और बढ़ जाती है।

0: सौम्यता है इसकी पहचान।
1: ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली।
0: FM सन सिटी, सन सिटी, सन सिटी।

श्रोताओं, अगर हम आगे बढ़े अब हमारे मन के रेडियो के स्टेशन की तरफ, तो अगला स्टेशन मुझे नजर आ रहा है हमारी यादों का जंक्शन। जी हाँ, जहाँ पर हर प्लेटफॉर्म पर कोई न कोई याद खड़ी मिल जाती है। कहीं बचपन हाथ हिलाता है तो कहीं दोस्तों की टोली जो है वो हंसती हुई दिखाई दे जाती है, तो कहीं माँ की आवाज़ कानों में गूंज जाती है। यादें श्रोताओं पुरानी ज़रूर हो जाती है, लेकिन उनका जो रंग है वो कभी फीका नहीं पड़ता। कुछ यादें धूप जैसी होती है,

0: नामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: श्रोताओं, फूलों की जो खुशबू है वो कुछ देर तक ही रहती है, लेकिन रिश्तों की खुशबू, ये खुशबू ऐसी खुशबू है जो पूरी उम्र हमारे साथ चलती है। जी हाँ, रिश्ते बड़े बड़े शब्दों से नहीं बना करते हैं, रिश्ते बनते हैं छोटी छोटी बातों से। एक फोन करने से, एक हालचाल पूछ लेने से, या फिर एक छोटी सी मुस्कुराहट से, और कभी कभार तो सिर्फ साथ बैठ जाने से वो रिश्ते खिल उठते हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये जो रिश्ते हैं वो धागों से नहीं, एहसासों से बंधे होते हैं। जो दिल से निभाए जाए वो ही उम्र भर हमारे साथ चलते हैं।

0: सुख एक तरफ हर माँ बड़न रसुख एक तरफ
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर
2: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए

श्रोताओं, उम्र चाहे कोई भी हो, सपने देखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन सपने खत्म हो जाते ना, उस दिन ये मन का रेडियो भी बंद होने लग जाएगा। जी हाँ, जहाँ सपने होते हैं वहीं उम्मीदें जन्म लेती है। जी हाँ श्रोताओं, सपनों की उड़ान को थमने मत देना, उम्मीदों के दिए बुझने मत देना, मंजिलें खुद रास्ता पूछेंगी एक दिन, बस अपने हौसलों को झुकने मत देना।

श्रोताओं, प्यार प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, प्यार माँ की ममता में है, प्यार दोस्ती की सच्चाई में है, प्यार रिश्तों की गर्माहट में है और उस मुस्कान में है जो किसी का दिन बना दे। जी हाँ श्रोताओं, मोहब्बत नाम है एहसासों की कहानी का, मोहब्बत रंग है खुशियों की रवानी का, मोहब्बत सिर्फ कोई लफ्ज़ नहीं है, ये नाम है दिल से दिल तक जाने वाली निशानी का।

तो श्रोताओं, आज के मन की रेडियो की यात्रा का समय अब पूरा होने को चला है। तो आज हमने यादों से मुलाकात की, मुस्कुराहटों को गले लगाया, रिश्तों की खुशबू महसूस की और सपनों को फिर से आवाज़ दी। तो जाते जाते एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी, खुशियाँ तलाशने मत निकलो, उन्हें महसूस करना शुरू करो, क्योंकि खुशियाँ अक्सर वहीं होती है जहाँ हम उन्हें देखने की जहमत नहीं उठाते। तो दीजिए कविता सांकला को इजाजत मन की रेडियो कार्यक्रम

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन का रेडियो। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटिव चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 12 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन

0: के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरूद्व संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे दो आंखें बारह हाथ फिल्म से यह गीत, जिसे साथियों ने गाया भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आज दिनांक है 9 जून और आज ही के दिन यानी 9 जून 2012 को सोनावड़े विलेज यानी सोनावड़े गांव में सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में जन्म लिया था वसंत देसाई ने, यानी आज उनका जन्म दिवस है। तो चलिए उनके ही गीतों के साथ यानी वसंत देसाई के गीतों के साथ हम उन्हें याद करते हैं।

0: हम सुन रहे थे दो बहनें फिल्म से प्रदीप की आवाज में. प्रदीप के ही बोलों को वसंत देसाई ने जिसे संगीतबद्ध किया है. आइए सुनते हैं ये संदेश.
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3.
2: वो क्या है ना कि

0: आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: है। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए लेते हैं यादों की महफिल में एक छोटा सा विराम, उसके बाद पुनः हाजिर होते हैं हम आपके बीच में बहुत सुंदर से नगमों को लेकर, जिसे सजाया है हमने संगीतकार वसंत देसाई की यादों के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में गुड्डी फिल्म का यह गीत। वाणी जयराम की आवाज में गुलजार की बोल है और संगीतकार वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं वसंत देसाई को। गूंज उठी शहनाई इस फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी ने गाया है, भरत ब्यास के बोल हैं और वसंत देसाई का है संगीत। आइए सुनते हैं।

हम सुन रहे थे गीत तूफान और दिया फिल्म से मन्ना डे की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म प्यार की प्यास से लता मंगेशकर तलत महबूब पर की आवाज में भरत व्यास के बोल हैं और वसंत देसाई का है संगीत।

हम सुन रहे थे अमर ज्योति फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में भरत व्यास के बोल और वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म से। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। अनंत श्याम ने इसे लिखा है और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया है।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है फिल्म यादें से, लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और वसंत देसाई का संगीत।

हम सुन रहे थे आशीर्वाद फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में गुलजार के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में जहां हम याद कर रहे हैं वसंत देसाई को उनके सुंदर गीतों के लिए। गूंज उठी शहनाई फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज है, भरत व्यास के हैं बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

और इसी के साथ समाप्त होता है आज का यह कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें याद कर रहे थे हम संगीतकार वसंत देसाई को। आज उनका जन्मदिवस है और उनको याद करते हुए हमने उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए गीतों को सुना। आज्ञा दीजिए,

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस प्रस्तुत होगा थोड़ी ही देर के बाद।

चलिए स्वागत है आप सभी का विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में और स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। अब ये सुरीला सफर शुरू हो रहा है और आज की जो इबारत है वो हम आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि कुछ मित्र हैं जो सोशल मीडिया पर हमें नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए इबारत हम जरूर पढ़ेंगे। इबारत थोड़ी बड़ी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी पहेलियां हैं तो हम प्रत्येक गीत के पहले आपको ये पहेली सुनाते जाएंगे। हम कुछ पहेलियां दे रहे हैं उसके साथ आज के शब्दों को ढूंढना है और बताना है और पहेली प्रत्येक गीत के पहले आपके बीच में रखी जाएगी। और अभी अब हम जो चल रहे हैं इस इबारत के साथ में, हमने एक और बात आपसे कही है कि अगर आपके पास में कुछ पहेलियां हैं जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें, हो सकता है उससे जुड़ा हुआ कोई गीत हम आपको सुनवा दें कार्यक्रम के होने होने तक। तो चलिए चलते हैं, आज के कुछ संदेश हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे भेजे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर को शब्द संगीत पहेली का रूप दिया गया है। हम श्रोताओं को दिमागी कसरत और कुछ नवीन प्रयोग अच्छा लगा और सराहनीय भी, धन्यवाद कुछ नई सोच के लिए। और उन्होंने सारे उत्तर दिए हैं एक के बाद एक। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा कि कार्यक्रमों में विविधता ही विविध भारती की पहचान है, पहेलियों का सुंदर प्रयोग कुछ अलग हटकर करने की प्रामाणिकता है, समरसता अक्सर मनोरंजन बाधित होती है, अतः यह विविधता स्वागत योग्य है। और इसके साथ ही उन्होंने भी हर पहेली का उत्तर दिया है। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक और संदेश जहां हमारे मित्र लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज पहेलियां पूछते हैं। कभी कक्षा के खाली समय में दो चार लोग यह खेल खेला करते थे या शादी किसी शादी

के फंक्शन में रिश्तेदारों का जमघट होता था तो लोग मनोरंजन के लिए पहेलियां बुझाने का काम करते थे और सही जवाब पर ठहाके लगाते थे। हमारे एक श्रोता ने तो बड़ी गंभीर बात लिखी है। वो लिखते हैं, पहेलियों की विषय वस्तु में वैदिक, पौराणिक, प्राकृतिक और लोक जीवन के प्रसंग प्रचुर मात्रा में देखने सुनने को मिलते हैं। पहेलियां ज्ञानवर्धक और स्मरण शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से कही और सीखी जाती हैं। पहेलियां प्रायः व्यंजना शैली में रची जाती हैं। इनकी भाषा में विशिष्ट भंगिमा होती है, रचना में बाकपन होता है। इस कारण इसका अर्थ लगाने में दिमागी कसरत तो होती ही है, भाषा भी निखरती है और विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा और हाजिर जवाबी भी बढ़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कुछ तो कह रहे हैं कि वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं इन पहेलियों के साथ में, तो वह भी बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि पहेलियां दिमाग की कसरत नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं, धैर्य और दृष्टिकोण का एक खूबसूरत दर्पण है। वे सिखाती हैं कि जीवन की उलझन में गहरा अर्थ छिपा है। यह जीवन के उस फलसफे को दर्शाती हैं जहां हर सवाल का जवाब हमारे अपने भीतर मौजूद होता है और शब्दों और छवियों का यह खेल हमें अपनों के साथ जोड़ता है, संवाद बढ़ाता है और कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चाहे वह जीवन की जटिलता हो या शब्दों का कोई मनमोहक खेल, हर पहेली हमें बेहतर और समझदार बनाती है। तो चलिए हम चल रहे हैं उन्हीं पहेलियों की तरफ। हमारे श्रोता ने एक और बात लिखी है कि ये पहेली वाला विषय नहीं है, इन्होंने अपने किसी दूसरे पहेली विषय से जोड़कर लिखा है। तब हम जब वह गीत हम सुनाएंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु अब हम चलते हैं इस पहले गीत की तरफ। और ये पहला गीत जो है वो बड़ा सुंदर सा है। आपको पहचानना है कि इसके ये जो गायक कलाकार हैं वो कौन है, और अगर आपके मन में कोई पहेली है तो उस पहेली को हम तक पहुंचाना है और उस पहेली का उत्तर भी पहुंचाइएगा। हम हमारे श्रोताओं जितने समझदार नहीं हैं, तो हम चाहते हैं आप उत्तर सहित पहुंचाएं और हम अगला गीत आपको पहुंचा दें, सौंप दें।

हम सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत जो हमने लिया था फिल्म पहेली से. रविंद्र जैन ने इसे लिखा और रविंद्र जैन ने ही इसे संगीतबद्ध किया. अब हमने आपसे पूछा था कि इसके जो गायक कलाकार हैं उनका नाम आप हमें सुझा दें, बता दें. तो आपने हमें उन गायक कलाकारों के नाम बताने के साथ साथ बड़ी सुंदर तरीके से बता दिया इस पूरे गीत के बारे में. हमारे श्रोता लिखते हैं सुरेश भाटकर हेमलता और चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में 1977 के दशक के कुछ सबसे खूबसूरत और यादगार गानों का आनंद लें. ये गाने केवल मधुर हैं और सहेली हो पहेली पूछो जैसे गानों के दौर सुंदर दौर है. और इन्होंने इसी फिल्म के इस फिल्म के नाम के बारे में भी जिक्र किया है कि ये फिल्म है पहेली. और इसके साथ ही हमारे कई सारे और श्रोताओं ने भी ये उत्तर दिया है, उसके लिए भी हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं. और इस सुंदर आगाज के साथ में अब हम आज की पहली पहेली की तरफ बढ़ते हैं. और आज की पहली पहेली है जो जन्म से भी पहले पहचान लेती है, जो जन्म से पहले भी पहचान लेती है और मृत्यु के बाद भी स्मृति बनकर साथ चलती है. जिसे खोकर लोग बड़े तो हो जाते हैं पर कभी सचमुच बड़े नहीं हो पाते हैं. और इसका उत्तर हमारे श्रोताओं ने सही दिया और उत्तर दिया माँ. बिल्कुल सही बात है, माँ ही है ना जो हमारे जन्म के पहले, यानी हर कोई हमारे जन्म के बाद हमें प्रेम करता है, लेकिन माँ होती है जो हमारे गर्भ में आने के बाद ही वह हमें प्रेम करने लग जाती है और उसी प्रेम के लिए हम उसे याद करते हैं. हमारे श्रोता ने लिखा है कि सभी सांस्कृतिक प्रश्नों पर गीतों पर चर्चा का समन्वय रहेगा. जन्म लेने से पहले माँ का साथ रहता है किंतु जब वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत अकेलापन महसूस होता है. बिल्कुल सही कहा. हमारे श्रोता लिखते हैं कि वो माँ है, अपने बच्चों को के बारे में कितना कुछ सोचती है, कितना करती है. उस आंगन में नन्ही सी चिड़िया की तरह उदकते हम कब बड़े हो जाते पता नहीं चलता. हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहो, लाख पैसा कमा लो, पर अपना घर अपनी माँ हमेशा दिल में रहती है. बिल्कुल सही कहा आपने भी. और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, पर मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ. ये बड़ा सुंदर सा बड़ा प्यारा सा गीत है. बस बता दीजिए माँ के लिए इतना प्यारा लिखने वाले गीतकार कौन है, इस गीत को लिखने वाले गीतकार कौन है, ये नाम बस बता दीजिए. और अगर आपके मन में कोई पहेली आ रही है तो वो हमसे जरूर साझा कीजिएगा.

श्रोताओं, दिन के 1:15 होने को है। लीजिए, प्रस्तुत है आधी आबादी नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: नारीवाड़ी का सुनने वाली सभी सखियों, बहनों और माताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: बिल्कुल, आज का नारी वाटिका कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी आशा अडवाणी और मेरे साथ हैं,
0: मैं हूँ आपकी रेडियो सखी खुशबू। सखियों, आज की इस वाटिका में हम जो है, वैसे तो हर दिन जिंदगी के खूबसूरत रंगों और सपनों की बातें करते हैं, लेकिन आज का जो दिन है, 9 जून का दिन है, वो बहुत ही खास है। और आज हमारे इस आंगन में बेहद ही खास ये कार्यक्रम होने वाला है।
1: तो खुशबू चलिए आज के दिन को खास बनाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सखियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम नारी वाटिका में। और कहते हैं नारी वाटिका यानी एक ऐसा उपवन जहां हर फूल की अपनी महक है, अपनी कहानी है, क्यों आशा जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आज हम ऐसे फूल की बात करेंगे जिसकी खुशबू, जिसकी महक आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है। एक ऐसी शख्सियत जिससे हम आज भी प्रेरणा पाते हैं, जिन्होंने भारतीय समाज की रूढ़िवादी जंजीरों को तोड़कर सफलता का एक नया इतिहास रचा। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे जहन में अनुशासन आ जाता है, साहस आ जाता है और एक ईमानदारी की तस्वीर उभर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, महिला सशक्तिकरण की जीवंत मिसाल डॉक्टर किरण बेदी जी की।
0: जी हाँ सखियो, और आज है इनका जन्मदिन। जब भी हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की और जब ये शब्द हम सुनते हैं तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक आंदोलन बन जाता है। और इस आंदोलन का चेहरा बनी किरण बेदी, जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा एक ऐसे दौर में जब

0: बेटियों को घर की चार दीवारी में रहने की सलाह दी जाती थी। ये वो समय था जो बहुत ही बेटियों के लिए, मैम अगर बात करें हम लोग, तो एक ऐसा समय था ना कि उस समय पे कोई भी बाहर नहीं निकलने की इजाज़त देता था और बहुत रेस्ट्रिक्शंस भी रहते थे। उस समय किरण बेदी जी ने खाकी वर्दी पहनकर अपराधियों के छक्के छुड़ा दिए।
1: और खुशबू, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, इतनी बड़ी पोस्ट को संभालना अपने आप में एक मिसाल है। और उनके जीवन की बात करें तो वह कठोर भी थी और संवेदनशील भी थी। उन्होंने ये साबित किया कि एक महिला का दिल जितना संवेदनशील हो सकता है ना, उसका इरादा उतना ही वज्र जैसा मजबूत भी हो सकता है।
0: यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया उन्होंने। सखियों बात करें उनकी, तो उन्होंने सुधारवादी सोच के साथ में अपना काम किया। उनका ये मानना था कि तिहाड़ जेल के कैदियों के जीवन में सिर्फ बदलाव लाना ही नहीं बल्कि उन्हें सुधारना भी है। जी हाँ, पुलिस का काम सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि उस इंसान की आत्मा को भी शुद्ध करना है, और किस तरीके से किसी इंसान को सुधारना है ये पूरी ताकत उनकी जो है उसमें लग जाती थी।
1: और ये सब इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी मुश्किलें भी आती है, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका जवाब, जैसा कि आपने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है, तो वो मशाल बनकर जली ताकि अंधेरा हार जाए, वो बड़ी कदम कदम पर ताकि हर नारी में निखार आए, न झुकी वो मुश्किलों के आगे न थामा उनका कारवां, वो किरण है उस सुबह की जिससे रोशन हुआ सारा जहां।
0: क्या बात है आशा जी, और बहुत ही अच्छी लाइंस आपने कही, एकदम दृढ़। ये जो है हमें संकल्प लेना सिखाती है कि किस तरीके से किरण बेदी जी ने अपना जीवन संवारा है, और साथ ही उनका जीवन हमें ये भी सिखाता है कि सशक्त होना कोई अधिकार मांगना नहीं है बल्कि अपनी स्वयं की काबिलियत को पहचानना है। उन्होंने देश की करोड़ों बेटियों को यह भरोसा दिया है कि अगर आपके इरादे मजबूत है तो आसमान की कोई भी ऊंचाई आपके लिए दूर नहीं है।
1: और देखो, वो सिर्फ पुलिस अधिकारी नहीं है, वे हर उस लड़की की हिम्मत है, हर उस लड़की का सपना है जो कुछ बड़ा करना चाहती है ना, वो सपना देखती है। तो आज हम सब मिलकर डॉक्टर किरण बेदी जी के इस जज्बे को सलाम करते हैं और अपने समाज की हर बेटी को आगे बढ़ने का, पढ़ने का, उड़ने का और सपना देखने का पूरा हौसला देते हैं।

0: खुशबू देखो सपने देखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारे मन के भाव होते हैं हम उनको कोई ना कोई रूप देते हैं, यानी हम अपने सपने को आकार दे रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं और हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं।
1: जी हाँ, और देखिए आशा जी, जब हम सपने देखते हैं ना तो हम उन सपनों के भावों को ना कई बार पन्नों पर भी उकेल देते हैं किसी रंग के रूप में, किसी कला के रूप में।
0: और चाहे हम कविता लिखते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं, या मिट्टी को कोई आकार देते हैं, या किचन में कोई काम करते हैं, या हाथ में हमारे सुई धागा हो, या कढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ और भी आप किचन में बना रही हैं, तो इन सब का फायदा ये है कि हमारा मन एकाग्र हो जाता है और जो भी हम अपना सपना जो हम बुन रहे हैं उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप सपने देखेंगे तभी तो आप कुछ कर पाएंगे, और अगर आप बिल्कुल नीरस हो जाएंगे, कोई सपना ही नहीं देखेंगे, तो आपका जो जीवन है ना वो भी ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल जीने की इच्छा ही नहीं होगी। व्यक्ति को लगेगा कि नहीं, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हमारी अंदर के भावों को खत्म कर देती है।
0: और अगर आप कोई ऐसा सपना देख रहे हैं जो आप पूरा करना चाहती हैं, तो कई सारे ऐसे सपने होते हैं जिनके लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिनके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है ना, और उस प्लानिंग के हिसाब से अगर आप उस सपने को टाइम देते हैं तो एक समय बाद वो रिजल्ट आता ही आता है।
1: जी, और जैसा आपने बताया प्लानिंग और संघर्ष, इनके अलावा जरूरत होती है किसी सपने को पूरा करने के लिए एकाग्रता और मेहनत की। ये दो चीजें ऐसी है ना जिन्हें अगर आप अपना एफर्ट 100% अगर देते हैं ना तो आपका कोई भी सपना कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। और साथ ही जरूरत होती है सखियों धैर्य की भी, क्योंकि धैर्य अगर होगा एकाग्रता और मेहनत के साथ तो आप अपने सपने को अच्छे से देख पाएंगी और उसका रिजल्ट भी अच्छे से ले पाएंगी।
0: जब भी कोई हम काम करते हैं, कुछ ऊंचा सोचते हैं, बड़ा सोचने की कोशिश करते हैं, तो कई सारे आसपास के लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं, अच्छा आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते हो। तो वास्तव में उनकी इस बात को पॉजिटिविटी में लेना है, सकारात्मक रूप में लेना है, ताकि वही जो चीज़ उनकी वो बात कही गई वो हमारे लिए एक मतलब वो बन जाए, वो आगे बढ़ाने का वो जज्बा बन जाए।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, कई लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको वहीं पे स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल भी सखियों हार नहीं मानना है, अगर आपने सपना देखा है तो उस सपने को जीना है और आगे बढ़ना है।
0: और साथ साथ एक बात कहना चाहूंगी खुशबू, कि हम अपना सपना पूरा कर रहे हैं तो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने जीवन के लिए। तो आप भी अगर सपने देख रही हैं तो उनको पूरा करने में पूरी कोशिश लगा दीजिए, तो आपका भविष्य भी सुंदर होगा, आपका सपना भी पूरा होगा।
1: जी

0: सखी स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम नारी वाटिका में। और कहते हैं ना कि किसी ने सच ही कहा है कि तस्वीरें बोलती है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी तस्वीरें सिर्फ बोलती नहीं बल्कि कैनवास पर नाचती है, गाती है और इतिहास लिख जाती है।
1: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही फकीर की, एक ऐसे ही मसीहा की जिसे दुनिया भारत का पिकासो कहती है। वो ताउम्र बेयर फुटेड चला, यानी बिना चप्पलों के चला, लेकिन कला की दुनिया में जिसके कद की बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया, और नाम था मकबूल फिदा हुसैन, यानी एमएफ हुसैन।
0: जी हाँ सखियों, बात करी हुसैन साहब की तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उनके ख्वाबों ने पूरी दुनिया को अपना कैनवास बना लिया। जी हाँ, आज हम इसलिए उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है, और कहा जाता है कि शुरुआती दौर में सिनेमा के होर्डिंग्स पेंट करने वाले इस इंसान ने जब ब्रश थामा तो भारतीय आधुनिक कला का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए कहीं ना कहीं बदल गया।
1: और एमएफ हुसैन की बात करें तो उनकी कला में बहुत सारी खूबियां थी, बहुत सारी विशेषताएं थी उनकी कला में। कला जो थी उनकी पेंटिंग्स की, सबसे बड़ी उनकी खूबी ये थी कि उनकी बोल्ड लाइंस, जबरदस्त रेखाएं, वे जब पेंटिंग करते थे तो जब भी कैनवास पर कभी रेखाएं बनाते थे तो एक बार में इतनी साफ इनकी लकीरें होती थी कि देखने वाला देखता ही रह जाता था।
0: बिल्कुल आशा जी सही कहा, और बिना रुके वो पेंट करते थे, वो ब्रेक नहीं लेते थे। उनकी खासियत थी कि जब भी वो किसी पेंटिंग को बनाने बैठते थे ना तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेते थे जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाती।
1: ये बहुत बड़ी बात है,
0: बहुत बड़ी बात है।

0: और बात करी रंगों की अनूठी मेल की, तो ये उन जैसा मेल कोई नहीं बना सकता। अक्सर जो उनका था पेंटिंग में, वो चटक रंगों जैसे कि गहरा लाल, पीला और काली रंग का इस्तेमाल करती थी, जो कि सीधे इंसान की भावनाओं पर असर करती थी।
1: एक और विशेषता थी उनकी इस कला में कि उन्होंने भारतीय लोक कला और हमारे प्राचीन कबीलाई आर्ट को मॉडर्न आर्ट के साथ मिला दिया था।
0: क्या बात है। और बात करें इनकी और पेंटिंग्स के बारे में, तो हुसैन साहब की कई सारी पेंटिंग्स में इंसानों के चेहरे साफ नहीं होते थे। जी हाँ सखी, आपने ज़रूर गौर फरमाया होगा, या तो वो धुंधले होते थे या साफ नहीं होते थे। और उनका ये मानना था आशा जी कि चेहरे से ज़्यादा इंसान की बॉडी लैंग्वेज और उसके आसपास का माहौल उसकी कहानी को बयां करता है।
1: और खुशबू, उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है।
0: जी,
1: द लैम्प एंड द स्पाइडर, इस पेंटिंग में उन्हें जो 1950 के दशक में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय इस पेंटिंग ने दिलाई थी पहचान, उनको मिली थी।
0: जी, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो उनकी पेंटिंग है उसका नाम है ज़मीन। जी हाँ, बहुत खास ही रही थी। और इसमें भारत की गांवों, किसानों और हमारी धरती को समर्पित एक बहुत बड़ी और शानदार पेंटिंग उन्होंने बनाई थी।
1: तो इनकी पेंटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे, और भी सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

0: सखियों, इस प्यारे सी गीत से पहले ही हम बात कर रहे थे कला क्षेत्र से जुड़े एक खास शख्सियत के बारे में जिनका नाम है M.F. हुसैन, और साथ ही बात कर रहे थे भारतीयता और आधुनिकता की उस संगम के बारे में जिन्होंने इसे बहुत अच्छी से उभारा पेंटिंग्स के रूप में, और कुछ खास पेंटिंग्स के बारे में भी हम बात कर रहे थे। आशा जी, तो बताइए अगली उनकी खास पेंटिंग कौन सी है?
1: अगली उनकी पेंटिंग है मदर टेरेसा के सेवा भाव से हुसैन साहब इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनकी सफेद और नीली बॉर्डर वाली साड़ी को केंद्र में रखकर कई कालजयी पेंटिंग्स बनाई थी।
0: जी, बात करें बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प। जी हाँ, इस पेंटिंग में इन्होंने भारतीय महिलाओं की स्थिति और उनकी अंतर विरोधों को भी दर्शाया था।
1: और रामायण और महाभारत की बात करें तो रामायण और महाभारत सीरीज, लगभग 150 से ज्यादा पेंटिंग्स की ये सीरीज उनके जीवन का एक बहुत बड़ा काम थी जो काफी सराहा गया था।
0: जी,
1: और बहुत सारे किस्से हैं उनके जीवन के बारे में जो सचमुच उनको एक फकीर कलाकार बनाते हैं।
0: जी,
1: तो जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि हुसैन साहब बिना चप्पल के, बिना जूतों के चला करते थे, तो चाहे वे दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हों, या किसी 5-स्टार होटल में जा रहे हों, या कहीं आउट ऑफ इंडिया में किसी महारानी से मिलने, इसके पीछे खुशबू एक भावुक किस्सा है।
0: जी,
1: उनके एक बेहद करीबी दोस्त थे मशहूर कवि फेंटन। जब उनका निधन हुआ तो हुसैन साहब को इतना गहरा सदमा लगा कि उन्होंने उनके सम्मान में, दुख में अपने जूते त्याग दिए, और उसके बाद वो ता उम्र बिना चप्पल जूतों के रहे।
0: क्या बात है, बहुत ही खास ये बात आपने बताई आशा जी आज। और अगली जो उनका एक किस्सा है वो बॉलीवुड से जुड़ा है कि माधुरी दीक्षित की वो बहुत बड़ी फैन थी। उनकी जो फिल्म थी हम आपके हैं कौन, इस फिल्म को उन्होंने थिएटर में 60 से भी ज़्यादा बार देखा था, और उन्होंने माधुरी जी को अपनी म्यूज प्रेरणा माना और उस पर गज गामिनी नाम की एक पूरी फिल्म बना डाली।
1: और एक बार हुआ यूं था कि मुंबई के एक मशहूर कैफे में हुसैन साहब ने चाय पी थी, है ना, और स्नैक्स खाए थे, और जब बिल देने की बारी आई तो उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो शुरुआती दौर उनका रहा होगा कला का। तो अब उन्होंने क्या किया कि वहीं टेबल पर रखे टिश्यू पेपर से, टिश्यू नैपकिन से तुरंत एक सुंदर सा स्केच बनाया और मैनेजर को दे दिया, और वो स्केच उस बिल की कीमत से हजारों गुना कीमती था।
0: क्या बात है, तो यानी मतलब कि पैसों की अहमियत अगर हम देखें ना आज के दौर में तो बहुत है, लेकिन उस समय की बात करें तो उस मैनेजर के तो ना भाग्य ही खुल गए कि इतनी बड़ी पेंटिंग की, पेंटर की पेंटिंग उसे मिली।
1: खुशबू, आज भी कई बड़े होटलों में उनके हाथ के बने वो

0: स्केच फ्रेम करके रखे गए हैं। तो ऐसे थे मकबूल फिदा हुसैन, बेपरवाह, बेबाक और कला के लिए पूरी तरह समर्पित।
1: जी, और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: खुशबू, जब भी हम फ्री टाइम में किताबें उठा के बैठते हैं, पढ़ते हैं, पन्ने पलटते हैं, तो हमको लगता है कि गुजरा हुआ जमाना आज भी जिंदा है
1: जी।
0: इतिहास गवाह है हमारी हर कहानी का, और इन्हीं कहानियों को सहेजते हैं हमारे अभिलेख। तो मैं अपनी सखियों को बता दूं कि आज है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस। तो आज हम बात करेंगे समय के उस मुसाफिर की जो सदियों का सफर तय करके आज हमारे सामने खड़ा है।
1: बिल्कुल सही कहा आशा जी। और कहते हैं ना कि इंसान मर जाता है, सभ्यताएं मर जाती है, बड़ी बड़ी साम्राज्य तक ढह जाते हैं, लेकिन जो पीछे छूट जाता है वो है अभिलेख। और आखिर ये अभिलेख क्या है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं।
0: तो खुशबू, ये सिर्फ कागज के पीले पड़े पन्ने नहीं है, ये किसी राजा का फरमान नहीं है, ये महज धूल से सनी पुरानी फाइलें नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों की धड़कनें हैं, ये हमारे इतिहास की आत्मा है। और अगर आज हमें पता है कि सम्राट अशोक ने शांति का संदेश दिया था, या अगर आज हम जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति क्या थी, चाणक्य की रणनीति क्या थी, तो ये सब अभिलेखों के कारण ही है।
1: और ये भी हम जानते हैं कि हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने किन किन कठिनाइयों से गुजरकर इस देश को आजाद करवाया, तो एकमात्र इनका श्रेय जाता है अभिलेखों को, जो कि इतिहास की वो आत्मा है जो कभी मरती नहीं है।
0: और बात सिर्फ खुशबू बीते हुए कल का नहीं है, बीते हुए कल की बात नहीं है, इस विषय का एक और पहलू भी है, वो बहुत खूबसूरत है। जो ये अभिलेख है वो भविष्य का आईना भी है, और वो इस तरह से कि इतिहास हमें सिर्फ यह नहीं बताता कि हम क्या थे, बल्कि ये हमें आईना दिखाकर हमें सचेत करता है कि भविष्य में हमें कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी है।
1: जी बिल्कुल, ये बात आपने सही कही आशा जी। पुरानी संधियां, पुराने कानून और पुराने दस्तावेज ही आज हमारे आधुनिक समाज की नींव है। यदि हम अभिलेखों को उठाकर देखें तो हम आने वाली कई गलतियों को भी सुधार सकते हैं। और आज तो डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो डिजिटल डेटा जो है वो भी हम रिकॉर्ड्स करके सहेज के रखते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इतिहास बनेगा।
0: और देखो ना, ये भी कहा है कि लकीरें गवाह है कि कारवां गुजरा था, पन्ने बताते हैं कि इतिहास सुनहरा था, सहेज कर रखिए इन यादों के दस्तावेजों को, इन्हीं के दन पर

0: सखियों बात करें तो आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारी सुबह स्मार्टफोन की स्क्रीन स्क्रॉल से शुरू होती है और जब जिंदगी का हर पहलू डिजिटल हो चुका है तो हमारा इतिहास भला कैसे पीछे रहता। जी हां, आधुनिक दौर में डिजिटल अभिलेखागार का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है।
1: और टेक्नोलॉजी ने तो इस तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। पेपर से लेकर क्लाउड तक का यह सफर बिल्कुल अद्भुत है। यानी आज जो डिजिटल अभिलेख है उसका मतलब है कि हमारा सैकड़ों साल पुराना इतिहास, हमारे राष्ट्रीय दस्तावेज, राजा महाराजाओं के फरमान और जो आज़ादी की लड़ाई की तस्वीरें हैं वे अब लोहे की अलमारियों में बंद नहीं है, वे बल्कि आज इंटरनेट के क्लाउड सर्वर पर पूरी तरह से सुरक्षित और आज़ाद है।
0: और आज दिल्ली की राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखी किसी दुर्लभ किताब को पढ़ने के लिए आपको वहाँ जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।

0: चाहे कन्याकुमारी में हो, चाहे कश्मीर में हो, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में, सिर्फ एक क्लिक आपको करना है और जो भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज आपकी स्क्रीन पर मुस्कुराता हुआ हाजिर हो जाएगा जिसे आपको पढ़ना है, और बस आप उसे पढ़ सकते हैं। यानी कि अब हमारा इतिहास सभी की पहुंच में है।
1: और साथ साथ में मैं अपनी श्रोता बहनों को ये बता देना चाहती हूँ कि अभिलेख हमारे राष्ट्रीय गौरव भी हैं। ये कागज के पीले पड़े पन्ने नहीं हैं या ताम्र पत्र और पत्थरों पर उकेरे गए शब्द नहीं हैं। ये हमारे राष्ट्र की अस्मिता है, सम्मान के सबसे बड़े सबूत हैं।
0: जी, और आशा जी सोचिए, अगर हमारे पास ये दस्तावेज नहीं होते ना, तो हम दुनिया को कैसे बताते कि 5000 साल पहले हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित थी। अगर हमारे पास वो अभिलेख नहीं होते तो राजा चौल की नौसैनिक साम्राज्य को या छत्रपति शिवाजी महाराज के सुशासन को हम कैसे साबित करते, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम इन सबसे कैसे रूबरू करवाते।
1: हम आने वाली पीढ़ी को ये कैसे बताते कि भारत कभी सोन चिरैया था, जगत गुरु था और बिल्कुल बनने भी वाला है। तो जब हम बात करें अभिलेखों की, तो स्वतंत्रता संग्राम के जीवित गवाह बात सिर्फ प्राचीन काल की नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अभिलेख जो है, महात्मा गांधी की लिखी वो मूल चिट्ठियां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वो ऐतिहासिक भाषण, शहीद भगत सिंह की जेल की डायरी और भारत की आजादी का वो घोषणा पत्र, जब हम इन्हें देखते हैं ना खुशबू, तो खुशी के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही दस्तावेज हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आजादी हमें खैरात में नहीं मिली, इसके पीछे लाखों लाखों बलिदानों की दास्तान है।
0: जी, और बिल्कुल आज हम ये प्रण लेते हैं कि ये अभिलेख जो है वो हमारी राष्ट्रीय स्वाभिमान की पहरी है जो हमें कभी झुकने नहीं देती।

0: तो जिस तरह से खुशबू हम बात कर रहे थे डिजिटलाइजेशन की, तो हर चीज़ आजकल स्मार्टफोन जैसे कि हम कह रहे कि हमारे हाथ में होता है, एआई से अब हम जुड़ चुके हैं, तो सारे काम हमारे बहुत आसान हो चुके हैं। और आजकल तो देखो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं सीख सकते हैं, जो नई नई होती है वो सीख सकते हैं। आज तो गाँवों की महिलाएँ भी जो है यूट्यूब देख कर बहुत कुछ सीख रही है।
1: जी
0: वो महिलाएँ जो अनपढ़ हैं, जिनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो सिर्फ सुनकर एआई को यूज करके और वो अपना नया नया नया बिजनेस भी खोल रही हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और सखियों, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ, हमारी रोजमर्रा के कामों की बात करें, गृह उद्योगों की बात करें, बच्चों की पढ़ाई की बात करें, या हमें कुछ नई डिश बनानी है ना आशा जी, सब जगह एआई जो है वो हमारी यूजफुल है। अच्छा, काफी बार ये होता है कि भाई एआई जो है, ये एक नाम सुन के हमें लगता है कि भाई एआई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा या हम इसे कैसे यूज करें। हाँ, काफी सारे लोगों को ये डिफिकल्टी होती है, लेकिन एआई जो है उसे आपको यूज करने की जरूरत नहीं। अगर आप खुद एक बार यूज कर लेते हैं ना, तो एआई आपको खुद ही ढूंढ लेता है।
0: वो हमारी खुद मदद
1: हाँ,
0: करता है।
1: अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई रेसिपी ढूंढ रहे हैं या किसी टॉपिक के बारे में हम सर्च कर रहे हैं, तो अगले ही पल में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये एआई टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटिकली आपको उस विषय के बारे में खोज कर और आप तक पहुंचा देता है उसके
0: यानी
1: बारे में जानकारी।
0: ऑटोमेटिकली एक ऐसा एल्गोरिदम बन जाता है, वही वही चीजें वापस आती रहती है जो आप सीखना चाहते हैं, जो
1: जी
0: आप देखना चाहते हैं।
1: हाँ,
0: तो यानी एआई हमारा सबसे बड़ा आज के जमाने में मददगार बन चुका है।
1: और बच्चों का होमवर्क हो या आपको कोई पोस्टर डिजाइन करना हो, किसी तरीके का इंटरव्यू लेना हो, तो इन सभी चीजों में बहुत सारी एआई एप्स एप्लीकेशंस है जिनका यूज करके और हम इन सभी कामों को आसानी से कर सकते हैं।

0: सखियों, आज के इस नारी वाटिका कार्यक्रम में हमने बात करी नारी शक्ति और कला से जुड़ी कुछ खास शख्सियतों के बारे में, साथ ही आपको रूबरू करवाया विश्व अभिलेख दिवस से भी। और इन्हीं सब बातों के साथ में अब हमारे कार्यक्रम का जो समय है वो खत्म होने को चला है। चलते चलते आपको हमारी टीम से रूबरू करवा दी। आपको बता दें HPT पर आज हमारे साथ बने थे विक्रम सिंह भाटी और PK सेन, साथ ही FM ट्रांसमीटर पर हमारा साथ दिया CL सोनी ने, कंट्रोल रूम से हमारे साथ थे फारूक अहमद शेख और कंसोल से आप तक प्यारे प्यारे गीतों को पहुंचाया उगम सिंह राजपुरोहित ने।
1: और साथ में खुशबू अपनी सखियों को भाई ये भी बता दूं कि आज के कार्यक्रम की परिकल्पना और प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की, संयोजन था मनीष सोलंकी का, और साथ में आपके साथ ही दो प्यारी प्यारी सखियां, मैं आपकी रेडियो से की आशा आडवाणी और मेरे साथ थी
0: और मैं थी खुशबू।
1: तो दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए,
0: नमस्कार।

0: आधी आबादी नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी।
2: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे, राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माही में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
3: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना

0: पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: ब्लेमिंग नेबर्स फॉर इट्स ओन फेलियर्स इज एन ओल्ड पाकिस्तानी हैबिट।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से

0: जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है, और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। यह फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया, बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया।

0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमा।

0: again.
1: हम सुन रहे थे बड़ा आदमी फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ. आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन. कार्यक्रम है सदाबहार नगमे. आइए सुनते हैं दाग फिल्म से यह गीत. लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है, शंकर जयकिशन का है संगीत.

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम सुन रहे हैं।

0: हम हिंदुस्तानी फिल्म से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोलों से सजे हुए उषा खन्ना के संगीत के साथ संगीतबद्ध इस गीत को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। मॉडर्न गन मॉडर्न गर्ल इस फिल्म का यह गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में गुलशन बावरा के बोल और रवि के संगीत के साथ आइए सुनते हैं।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है घराना फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और रवि का है संगीत।

हम सुन रहे थे भाभी की चूड़ियां, फिल्म का यह गीत आशा भोसले, मुकेश की आवाज में महेंद्र, नरेंद्र शर्मा के बोल और सुधीर फड़के ने इसे संगीतबद्ध किया। इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि निकले एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ

0: लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहेब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: सखा है सभी सभी को, सभी श्रोताओं को और चंचल जी आपको नमस्कार।
2: आरती नमस्कार। हमारे सभी सुनने वाले बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम का। और बहुत सारे श्रोता हैं जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं, लेकिन कुछ श्रोता हैं जो नहीं जुड़े हैं
1: जी।
2: तो आज किन विषयों पर हम बात करेंगे ये बता देते हैं। तो गर्मियों का समय है और पानी का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग अनायास ही
1: बिल्कुल
2: बहुत सारा पानी खर्च कर देते हैं, तो किस तरह से इस पानी की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, इन सब बातों पर हम
1: बिल्कुल
2: चर्चा।
1: और मौसम कोई भी हो, पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और पानी के बारे में आप हमें भी बताइए, आप किस तरीके से पानी की बचत करते हैं आप खुद, और लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं इस चीज के लिए। और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत जीनिया पर्सी मास्टर जी की, जो की है संस्थापक है जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस की। और साथ ही हम हल्की फुल्की बातों में करेंगे बहाना ऐसा कौन सा है जो अक्सर काम कर जाता है।
2: बिल्कुल, ये बात तो बड़ी कहते हैं ना कि एक रोचक भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए या सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास में तैयार होता है।
1: और बहुत सारे लोग बहाने तो बनाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं कि नहीं, ये झूठ बोल रहे, बहाना बना रहे। लेकिन आप कैसे, कौन सा बहाना बनाते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जाता है,
2: और कौन सा ऐसा बहाना है जो अक्सर काम आता है आपके, आपको सुरक्षित रखने के लिए?
1: बिल्कुल,
2: बहाने क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। और मुहावरे की आज हम एक बात करते हैं, तो आज हमने जो मुहावरा चुना है वो है आम के आम
1: गुठलियों के दाम। यानी वैसे भी आम का मौसम है ना, आम खाए जा रहे हैं।
2: हाँ, तो दोहरा जो फायदा है उसकी बात होगी, लेकिन भाई अब आम के आम गुठलियों के दाम तो जानकारी होगी, मनोरंजन होगा और गीत भी होंगे।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, मैं ये कहूंगी अपने जो भी श्रोता है, सखियां हैं, जो भी सखा है, कि आप उसमें आम के आम जो गुठलियों के दाम मुहावरा है ना, खाली इसका अर्थ ही मत लिख के भेजिए, क्योंकि अर्थ तो चलिए हमने समझा, आप थोड़ा सा उसके बारे में और रोचक बना के भेजिए उसको।
2: बिल्कुल, सुनने से ही पता लगता है कि दोहरे फायदे की बात हो रही है, तो उसका अर्थ तो सभी जानते हैं, लेकिन आपके जीवन में दोहरा फायदा किस तरह हुआ, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम,
1: और आपने किसी को ऐसा दोहरा फायदा पहुंचाया हो तो वो भी बताइए।
2: तो भाई कार्यक्रम में कैसे होते हैं आम के आम गुठलियों के दाम,
1: गीत सुनने से
2: जी।

0: अब हमें संदेश मिलते हैं हमारे सुनने वालों के.
1: और अभी हम जो सेगमेंट सबसे पहले लेने वाले हैं वो है हमारा सखी विशेष. यानी अपने सखी विशेष के बारे में कुछ बातें बता
0: हम बात करेंगे ज़ीनिया पर्सी मास्टर के बारे में.
1: जी, तो ज़ीनिया पर्सी मास्टर भारत की एक जानी मानी महिला उद्यमी हैं जो बिजनेस और फाइनेंशियल रणनीतिकार हैं. और ज़ीनिया एक व्यवसायिक परिवार से आती हैं. उनके परिवार का लॉजिस्टिक्स और बिजनेस क्षेत्र में लंबे समय से संबंध रहा है.
0: ज़ीनिया पर्सी ने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गिलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट में पढ़ाई की. इसके अलावा उन्होंने लंदन में फिट्ज़ी विलियम इंस्टीट्यूट से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया हुआ है.
1: और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई और अन्य स्थानों पर होटल इंडस्ट्री में काम किया. उन्होंने प्री ओपनिंग टीमों में भी काम किया जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यवहारिक अनुभव मिला. और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की.
0: और इससे पहले ज़ीनिया इवेंट्स का इसे पहले ज़ीनिया इवेंट्स कहा जाता था. बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी ज़ीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया. और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है.
1: जी, उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है. उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉर्पोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएं प्रदान करती है.
0: और उनका काम वी इनवाइट यू, यू ओन इवेंट इस विचारधारा पर आधारित है. यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद ले और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल लेगी. हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं.
1: जी, वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं. और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी. और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया. ज़ीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं और पर्यावरण तथा CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें गतिविधियों में वो भागीदारी करती रही हैं.
0: ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में. और आप सुनते हैं ये गीत.

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली, और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में।
1: बिल्कुल, पानी, और देखो पानी का जो कहते ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
0: पानी का कोई रंग नहीं है फिर भी हर एक की जरूरत है। कहते हैं कि जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए।
1: और जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी हमने प्रगति करी, वो सब कहां, सिर्फ नदियों के किनारे बसी
0: जी।
1: जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए जरूरी क्या चीज है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये सोचिए, ये हमें जागरूकता का विषय भी है कि अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही बात है, जल है तो ही कल है। जिस तरह हवा बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही पानी जरूरी है। और बहुत सारी नदियों में पानी का जल स्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। कई बार हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं, जिन जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन्हीं को हम गंदा कर देते हैं। वहां पर जो कल कारखाने हैं उनसे पानी गंदा हो जाता है, या फिर हम जो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं, हम बहुत सारी जगहों पर जब घूमने जाते हैं, झील नदी समंदर के किनारों पर हमें जाकर बैठना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर हम बहुत सारी गंदगी छोड़कर आते हैं। लेकिन बात अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पानी जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है उसे हम किस तरह से यूं बेकार की चीज समझकर वेस्ट करते रहते हैं, और इसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना
1: बिल्कुल
0: पड़ेगा।
1: और लोग भुगत भी रहे हैं। सोचिए एक जगह हमें अभी यहाँ पे अगर सहूलियत से पानी मिल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं और मतलब दो दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहां पे अगर अगर उनको पानी एक घड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं उस चीज को।
0: इसीलिए देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है फानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक जरूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा गम है। इन्होंने जो बातें लिखी है ना उसे इस तरह तुकबंदी में जोड़कर बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल के बिना जल बिन जरूरी उपयोग बिना जरूरी उपयोग के से वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल बिन

0: मछली जैसे तड़पती है वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा।
1: बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है, सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो, जल बचेगा तो ही जग में मानवता का श्रृंगार है।
0: बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि जल ही जीवन है ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है।
1: जी
0: पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए भी, अगर हमें घर को अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी जरूरी है, और पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी जरूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है,
0: जी
1: ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोचिए कि अगर हम यहाँ पे अगर उस जल को ही खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज को वो करें तो उनको समझाइए, सिखाइए,
0: जी
1: अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।
0: इसी पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें, कपड़े बर्तनों को धोया पानी कप पेड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें, मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी। और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी जरूर से रखें, पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके, और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते
1: बहुत
0: हैं।
1: जरूरी है। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आंखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदायी होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है, और जहां फिर प्रेम का अंकुर पनपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है।
0: सही बात है, बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रहता है,
1: बिल्कुल
0: इसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें पानी नहीं बरसता। इसी पानी से हमें बाकी के 8 महीने निकालने हैं, इसीलिए बचत बहुत जरूरी है। लेकिन इस समय कार्यक्रम में गीत सुनना भी जरूरी है।
1: जी।

0: तो अब हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का महत्व तो बहुत ज्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है ये हमारे आने वाले लोगों को पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें, अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पे जैसे करके टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के मतलब जो उन्होंने लिखी है इस तरीके की चीजों का आप पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं, घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद जो पृथ्वी का 70% पानी है वो जो 70% पानी है मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो वही वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए, उसको ऐसे ही नहीं कि आपने इसे छोड़ दिया करके आपको बाहर भी ऐसा दिखाई दे रहा है, तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश।
0: बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है जब वो कपड़े होती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं या बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है, जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल चालू है, यहाँ
1: चल रहा है,
0: उधर काम चल रहा है उनका, तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं आपको अपना रेजर नहीं धोना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल को। इसी तरह से महिला पुरुष बच्चे ये सबकी जिम्मेदारी है।
1: छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी थोड़ा सा पानी पिए, दो घूंट पानी पिए और पानी बाकी फेंक दिया,
0: आधा ग्लास पानी पीते हैं और आधा
1: पीने लायक पानी होता है, कितना कीमती पानी है उसको हम फेंक देते हैं यूं ही।
0: कई बार जब हम किसी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में उत्सव में जाते हैं, तो आजकल पानी की बोतल देने का सबसे ज्यादा चलन है, तो वहां भी आधी बोतल पी के आधी बोतल को हम फेंक देते हैं, तो ऐसा ना करें। आप बची हुई आधी बोतल पानी को अपने पास ही रखिए ताकि दोबारा जरूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है, तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं है उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरिफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहाँ होती है, तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल। अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का पानी आपका बच रहा है या आपने सब्जियां धोई तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अलग से आपको वहां पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते हैं।
0: इसी तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में रहते हैं तो उसके पाइप से जो पानी रिस कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर

0: सकते हैं।
1: तो इस तरह की आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगे ना तो बहुत सारा पानी बचेगा और बहुत जरूरी अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा
0: क्या बात
1: तो
0: है?
1: इसलिए हम उस युद्ध को रोक सकते हैं होने से।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उसके लिए हमें, क्योंकि अब देखिए खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है, अगर हमें साफ पानी चाहिए तो जरूरी है पानी की बचत करनी।
0: तो बातें और भी बहुत सारी करनी है, लेकिन इस समय घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि लेते हैं छोटा सा अंतराल।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक कॉर्न्स एवं हवन सामग्री।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं हूं आरती श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में, तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल, और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाने नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना, तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। अब तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, जो वर्षा का जो जल होता है उसको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिस तरह से वो बना के बताया गया, जिसे हमारे श्रोताओं ने भी बताया। इस तरीके से आप पानी की बचत जरूर करिए।
0: और जैसे कहते हैं कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कई बार उसकी कदर नहीं होती। जिस तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहां से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब वर्षा का जल हमें कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां जल संकट अति का बहुत ही ज्यादा है। वहां चाय की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत होती है, ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं कि चाय या अन्य चीजें वहां सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन पानी वहां पर बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग लेते हैं।
1: और जब से मैं बताऊं कि मैंने तो ये चीज खबर सुनी तो सच में अजीब सा ही लगा। अब जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एकदम से सचेत हो जाती हूँ, बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ एक दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है या पानी दो दिन नहीं आने वाला, तब लगता है अरे अब कैसे होगा, अब का ऐसे काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए इसी तरह से समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या करेंगे।
0: एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी को बहुत जल्द से अगर घट गया तो बहुत ज्यादा अगर होने लगी तो कितना हम परेशान होंगे। उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और आप सुन लेते हैं गीत।

0: भाई क्या हुआ जब एक किसान ने आम तो बेचे ही, आम बेचकर पैसे कमाए, लेकिन जो गुठलियां बच गई वो एक नर्सरी को बेच दी ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो यानी कि जो मूल चीज है उसे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उसे भी आपको मुनाफा मिला, दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा। इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम।
1: गुठलियों के दाम इसने ले लिए और खाली उसी ने नहीं लिए, पेड़ लगाने से सबको फायदा हुआ, तो बहुत अच्छी चीज है ये।
0: तो ये तो समझ कहावत है, लेकिन बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई।
1: बिल्कुल, तो हमारे एक श्रोता है जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है, जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि आम तो इन दिनों हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम, एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि इसमें इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत कई तरीकों से कहा जाता है।
0: एक पंथ दो काज, आम के आम गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है इन बातों
1: बिल्कुल
0: का।
1: और व्यवहारिक जीवन में इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी। तो सच में एकदम सही बैठा कि उन्होंने आम खाया और गुठलियों से उसके छिलकों से अचार भी बना लिया।
0: और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है। दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोकप्रिय भी है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाषा की सुंदरता वृद्धि में मुहावरों और कहावतों का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ ही है उपभोक्ता के पूरे पैसे वसूल। वार्तालाप या कहानी लेख में विषय संग वस्तु का कोई संबंध नहीं रहते हुए भी वस्तु अपनी उपयोगिता, गुण और महत्वपूर्णता की उपस्थिति दर्ज करा ही देती है।
0: और हमारे श्रोता तैयार हो जाए भाई अपने बहाने बनाने के लिए, जिन्हें वो अक्सर काम में लेते हैं, लेकिन तब तक एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं. अब कुछ बहाने मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ या 5 मिनट पहुंच रही हूँ, या अगर फोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, भाई मेरा तो फोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी. कहीं अगर समय पे ना पहुंचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया. और अगर समय पे ना पहुंचे या फोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हुई मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत जरूरी काम आ गया, फोन की बैटरी खत्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं. तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली.
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है. अगर बहाने में वफाएं हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है.
0: क्या बात,
1: सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सके. ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहां करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं. क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए.
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई, अब क्या कहें. और

0: शिक्षक बहाना एक्सक्यूज, किसी काम करने के लिए बचने के लिए, अपनी गलतियां छिपाने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए ये एक कारण होता है। यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है।
1: बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए बहाना है।
0: बिल्कुल, बहानों का इस्तेमाल लोग स्थिति से बचने के लिए, टाल मटोल करने के लिए या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं। जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबीयत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया, वगैरह वगैरह।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं, इस विषय पर एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी ना कभी, बहुत लोग अक्सर करते ही है, और वो भी सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है। कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं। और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं है।
1: बिल्कुल, अक्सर होता है ऐसा। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का, हमारे जो श्रीमती जी है वो एक नंबर है। कुछ काम कहो तो बहाना बनाती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि, और वो स्वयं वो काम कर लेता हूँ, और फिर वो कहती है मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने, नोक झोंक, प्यार और स्नेह है तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती है, भाई आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी। वैसे अच्छी चीज है ये, इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम करने का हाथ बटा देते हैं।
0: हमारे श्रोता ने लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है। मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा। और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया, और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था।
1: हाँ, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो आपने बहाना बनाया था।
0: जी,
1: एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मजेदार घटना हुई। मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था। सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई। शाम को जब उसका फोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज थी, तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा अरे यार मुझे याद था, बस दिमाग से निकल गया। सच कहूं तो अरे हां मैं तो भूल ही गई थी, या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, ऐसे बहाने जो में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं। मैं करती हूँ अक्सर, हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं।
0: तो चलो अब एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती तुमने कभी कोई बहाना बनाया है? बताओ मुझे।
1: बनाए तो बहुत सारे बहाने, मैं अक्सर बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि हाँ यही वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई।
0: हाँ, ये जो है ना फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था। आजकल क्योंकि जब कहते हैं फोन करना भूल गए तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है, या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था,
1: बिल्कुल
0: ये भी बहाना बहुत होता है। तो अब बहानों की बात चली है तो बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं। इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं। बस बहाने की ही बात है, मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं, और यही बता रहे
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और एक हमारी श्रोता है जो लिखती हैं कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए, उनकी देवर की लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ। इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई। ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, लेकिन अब उनको पता चल गया होगा, उन्होंने सुना होगा प्रोग्राम।
0: अगर वो रेडियो सुनते हैं उन्हें रेडियो पर बात पता लग गई होगी
1: कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए। तो
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहां पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे। जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज लानी पड़ती है, तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी।
1: बहुत बढ़िया बात है। और देख, हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे जो एक सखी उन्होंने लिखकर भेजा है, कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे, उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी। बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी, और फिर बरसात में भी भीगती थी। जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाते थे। यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए गुठलियां भी खाएं।
0: अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है, और गुठलियों में बड़ा अच्छा सा स्वाद होता है, लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीतों में भी तो सुन ले गाना।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी सखियों से बातचीत करते करते, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा, इसलिए ये था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था,

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जाना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहां पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहां पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफर है चेन्नई से वहां, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
1: अच्छा, अच्छा। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से?
2: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वाली साहब का ट्रांसफर हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज जो थी वहां से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। अच्छा। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं खत्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी तो मैं रह गई थी, मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूंगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहां तेलुगू या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं नहीं इजाजत दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से जमींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज इजाजत दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म

0: जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहां से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद है उस डांस के जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
0: पूरे तो याद नहीं है। हीरुआ का सागरो रन्नो चिन्नन्ना आगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी?
0: उसका नाम था रोजुलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज, विच लिटरली चेंज माई लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आपका गाना आता है और खत्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलकर देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया, दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे, उन्होंने कहा पॉसिबल है क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
1: क्या कहने।
0: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए। तो वहां इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहां थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा बाहर। तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग। अच्छा अच्छा। तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है वो बहुत कामयाब हुआ और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुस्लिम लड़की होगी। बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो उर्दू बोल सकती है। तो उन्होंने कहा जरूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरफ मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता। तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके जरिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहां मुलाकात हुई। तो कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप। कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुंचे तो इस चीज को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से
1: तो उसके बाद में आपको सीआईडी मिली।
0: सीआईडी पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो सीआईडी और प्यासा की बातें करें उसके पहले हम वहीदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ
1: you know? उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन?
0: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पे वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा।
1: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाने चाहिए।
0: हाँ, एक्सप्रेशन लाने थे और उसमें तो मैं कहूंगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज एनहांस हुई थी मन और बढ़िया दिखती थी।
1: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज के फूल का, ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
0: हाँ
1: है और इसकी मेलोडी जो है आज तक
0: हाँ
1: बहुत दिल को छू लेने वाली है।
0: बिल्कुल,
1: क्यों नहीं ये गाना सुना जाए?
0: बिल्कुल क्यों नहीं।

0: वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ। तो आप ही कह रहे हैं,
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी।

0: जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी, तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं।
1: तो आपने कह दिया?
0: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा। बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हेवी है, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं, क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा, एनीवे देखते हैं। तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत दुख तो हुआ, और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली।
1: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
0: नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद चौदहवीं के चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म। फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहेब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया, अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
1: अच्छा विदा जी, हाँ। साहेब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
0: अभी देखिए, अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे, तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना। तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी, और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में। क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया, जैसे चंद सीन्स थे जहां गुरदत्त जी नहीं थे, तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे। मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए।
1: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया, वो आप करना चाहती थी?
0: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया, बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं। तो गुरदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल। तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? तो बोले नहीं, ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती, जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं, बोले वो नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप देके स्टिल फोटोग्राफ्स लिए। लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे, वो हमने सब ने स्टिल्स देखी। मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं, गुरदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। सो
1: इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
0: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ, उसके बाद गुरदत्त जी ने कहा आप नहीं करेंगे, तो बात खत्म हो गई। तो जब अबरार साहब डायरेक्ट करने लगे, तो वो एक दिन घर पे आके लगे, देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ, इसके लिए नहीं कर रहे। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं, जबा का रोल है, वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी। तो गुरदत्त, उन्होंने जाके गुरदत्त जी को बताया, तो उनको ताजुआ, भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं, चौदहवीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है, टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जबा का रोल डिफरेंट है, डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अबरार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया।
1: तो इसका जिक्र चला है, क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो।
0: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी, मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे

0: अभी इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौदहवीं का चांद का, एक बड़ी वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे, तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरुदत्त जी मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर, तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ, हाँ इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरुदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे सीआईडी बनाई, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी जबान है ही नहीं, अगर सादिक बाबू करेंगे तो वो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा, यू नो, और खासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन जरूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरुदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं आप बैठिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये

0: वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
1: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
0: नहीं, मैं तो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय ली जाए। अगर कोई गलत ऐसे लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं। एक चीज होती है फिल्मों में, उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: देव साहब के साथ में कैसी जुड़ी थी आप?
0: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो सीआईडी में थे तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बट ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट और बहुत अच्छा था उनके साथ।
1: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
0: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर, लोग के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव, मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे। देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है। वही मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा है, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए। नहीं, एक तो फॉग है। मैंने कहा हाँ फॉग तो है, मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है? तो बोले मैं चश्मा लगा था। तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया? तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया। तो मैंने कहा अब क्या होगा? तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेड्रेसर को पीछे बैठने दो, और तुम मुझे बताते रहना राइट में लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह, मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता। मैंने कहा तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है, और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा। अच्छा, आहिस्ता चलाइए, और कोई और रास्ता ही नहीं था। ओ, इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो एक घंटा देर पहुंचे, तो वहां यूनिट वाले परेशान, और विजय आनंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे, वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा, विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए। तो दैट वॉज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
1: उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप?
0: खोया खोया चांद।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: वहीदा जी, गुरली साहब का भी जिक्र आया और इसके पहले हमने बात की गाइड की, और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्माए। वैसे गुरली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
1: आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था। उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया तो वो एकदम परफेक्ट था। तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की और ज्यादा चौड़ी भी नहीं थी, और बीच में एक गैप था। तो वो कहने लगे आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रही कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, मगर खुश हैं। तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बापरे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर, खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना। मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं। वैसे जी उसमें आपने रोजी का एक कैरेक्टर किया था, और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रूसी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने। वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है। तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पे फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी।
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था, क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने CID का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था। फिर मैं कहती हूँ वैम्प का रोल नहीं था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है। वो कैरेक्टर वैसा नहीं, तो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी। रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है, और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है, वॉट एवर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है, और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है, ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम, ऑब्वियसली। तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा? तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया? जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं सीता को तो हर वक्त सीता के राम के साथ ही होना चाहिए, तो ये आर्ग्यूमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, चुप हो गए। फिर भी मेरे ख्याल से गलत ही, आपकी गाइड जो है वो चलेगी नहीं और आपको बहुत मतलब क्रिटिसिज्म मिलेगा। मैंने कहा आई डोंट केयर, मुझे करना है, मुझे रोल बहुत अच्छा लगा।
0: और दोनों ही फिल्मों ने इतिहास रचा।
1: Exactly.
0: आपको गाइड के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला,
1: बिल्कुल सही है,
0: कमल के लिए भी मिला। कभी आपको

0: लगा कि ये दो फिल्मों को अगर हम छोड़ दें, किसी फिल्म में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड नहीं मिला कभी, अखरा कि नहीं इसके लिए भी मिलना चाहिए था मुझे?
1: मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था, वो भी कंप्लीट कस्म का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है उसको किडनैप किया जाता है, फिर उससे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीजों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर। सो देयर द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन थे, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ, इट्स ओके।
0: डाकू की समस्या पर वो फिल्म थी।
1: हाँ।
0: सुनील दत्त साहब के साथ में।
1: हाँ जी।
0: और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए फौजियों के साथ में, बीच में जाकर के खूब काम किया। उनके साथ में, उनके ट्रूप के साथ में जाते हैं ना?
1: तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का, तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ, और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहां भी जाते जवान थे वहां, बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था, यू नो। और काफी प्रोग्राम वगैरह हमने किए, फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहां भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए।
0: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है, उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
1: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था।

0: एक और आपकी बड़ी ऑफबीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा उर्फ और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से, जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए, जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं उसमें उनको गूंगा बना दिया गया और इसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मजा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं।

0: बने थे और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी साथ हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं और सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो होंगे ही। और जब पैकअप हो जाता था कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो भागते हैं तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहे तो बैठे गप्पे मार रहे हैं। मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग नहीं बेचारे का, तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैं कह नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है, अगर इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसके बाद उनकी आवाज इतनी अच्छी है, जब टॉकिंग डायलॉग आई मीन रोल मिल जाएगा मेरे ख्याल से ही डू वेरी वेल। तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
1: मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वेदा जी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है और उनकी माँ का किरदार भी अदा किया। कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात होती थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया पूरा, उन्होंने साबित भी कर दिखाया, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ?
0: मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव जो भी कहिए, उनके बच्चे जया सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है। और वो इतने ज्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है उनका।
1: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
0: हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कवर थे। एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन मतलब अमिताभ की वालदा सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटेक की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहां आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहां बैठी आप सेट पे, आप जरा बाहर ताजी हवा खाइए। फिर कह लगे तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो? मैंने कहा क्यों, तुम कसके मारने? तो मैंने कहा देखिए अगर मैं एक कसके मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक फिर 6 तमाचे पड़ेंगे उसको। तो हंसने लगी, बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा डायरेक्टर को, देखिए अगर तमाचा पड़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया कुछ भी हो तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारूं, पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कसके नहीं मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कसके।
1: यहाँ हम रेशमा और शेरा जिसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है, ये कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का।
0: रेशमा कैसा, वो एक मीठी सी चुबन, एक हाँ बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है।
2: एक मीठी सी चुबन, एक ठंडी सी अगन,

0: वेदा जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देके ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, यू नो, जस्टिफिकेशन था. और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है. और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज हम अपने लिए करना चाहते हैं. तो रोजी का पैशन था डांस करना, वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एनकरेजमेंट राजू से मिलता है. फिर एक पॉइंट आता है जहां सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है, कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं, अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ. राजू कहते हैं, नहीं अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है. ये कहती है, नहीं मुझे बच्चे चाहिए. अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या. उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना. वो कहते हैं, कहां से जिम्मेदारी लें शादी बच्चों की. सो हर एक मौके पे, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है. अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती, वो बन जाती है, फिर कहती है, नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड. फिर उस वक्त राजू कहते हैं, नहीं अभी कहां सेटल होंगे. तो ये चीज जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था. सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन. नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड.
0: देव साहब के साथ में, और जो आपके अनुभव, क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और. आपकी मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा है उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास. उससे एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं. कैसे थे वो?
1: जैसे मैंने कहा, वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके. तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए, तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे, मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा. मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कर लेंगे.
0: इतना हक
1: हाँ हक जता रहे थे जैसे. तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती.

0: जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से. तो ही इज वेरी नाइस एज अ प्रोड्यूसर,
1: और एक एनर्जी से भरे हुए
0: बेहिसाब. मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ क्योंकि वो कभी थके, कभी मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे. वो उतने, जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया, ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़, फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताजी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए. फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे, मैं कहते देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू आर फुल ऑफ एनर्जी, सो यू आई will call you ever ready battery.
1: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, बेशक वो सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका जज्बा अभी भी वैसे ही है और फिल्में बनाए जा रहे हैं. तो अभी उससे कभी फोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
0: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं. मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है. सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे, उनकी फैमिली से, वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया. हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जीनोद में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम.
2: दोस्तों, वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें. आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया, लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं. इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी. भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम. हम आपको बता दें, वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की. इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने.

ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवा वाणी।

हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जगह पे ट्यून इन किया है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी, जहाँ मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर डॉली। और

0: जी हाँ मेरे साथ हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, इस आवाज का नाम राहुल। और आज बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने और स्पेशल प्रोग्राम है। मंगलवार का दिन है, दूसरा मंगलवार है, तो आज आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यूथ अंताक्षरी जो है वो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है कुछ ही देर में, आप हमसे जुड़ सकते हैं और बहुत सारी बातें होंगी। कुछ नए सवाल, कुछ अतरंगी, कुछ मज़ेदार से क्वेश्चन होंगे और कुछ होंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आपका नॉलेज कितना क्या कुछ है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और भी लाभदायक आज का ये जो क्विज का प्रोग्राम बिल्कुल बेशक हो सकता है। तो कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना है हमारे साथ ऑनली ऑन 102.1 FM पर। इस आवाज़ का नाम राहुल है और आज बहुत सारी बातें, बहुत सारी मस्ती और पहला गाना आपकी नज़रिए पेश कर देते हैं साहब।

0: मेरे साथ हैं।
1: आपकी रेडियो हम सफर डॉली।
0: देखिए जी अंताक्षी, क्विज का प्रोग्राम जो कि अब शुरू हो चुका है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर जुड़ सकते हैं जो कि है 02915253300, 02915253300 पर।

0: वेलकम बैक। जो आपका यूथ क्विज प्रोग्राम फिलहाल आज की शाम चल रहा है और प्रोग्राम युवाणी, अगर आप हमसे आज की शाम जुड़ना चाहते हैं तो कहाँ जुड़ सकते हैं डॉली, बता दो जरा।
1: हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के लिए नंबर है ये वाले 02915253300 या फिर 02915254300।
0: फिलहाल अगर आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा और जब कभी भी बाइक पर सवार हो तो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। बढ़ते आएगा, सुनते हैं आज की शाम का अगला म्यूजिकल ट्रैक।

0: अरे अरे यार, और हमारे साथ जो है वो आज की शाम के पहले कॉलर हमारे पास आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं फोन पर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार, गुड इवनिंग
0: वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
1: राहुल भैया को, डोली मैम को और कंसोल पर विराजमान मुस्कान जी मैम को, दिनेश होडा का प्यार भर नमस्कार।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, आज की शाम आपका ये पहला सवाल, किस हॉकी टीम ने मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीता था?
1: ऑप्शन दीजिए सर।
0: भारत, पाकिस्तान, जापान या फिर बांग्लादेश?
1: 2026 की बात कर रहे हो?
0: जी, 2026 मेंस अंडर 18 एशिया कप।
1: ये ऑप्शन राइट है, भारत।
0: सही सवाल है पक्का?
1: नहीं, वापस एक बार रिपीट कर दीजिए आंसर।
0: किस हॉकी टीम ने मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीता?
1: ऑप्शन भारत, पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश। आपने क्या ये चार ऑप्शन फिर से?
0: जी,
1: मेरे हिसाब से सर जापान हो सकता है।
0: आपका ये जो जवाब है वो गलत है, इसका सही जवाब है भारत। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी अगर कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं 02915253300, 02915253300 पर।

0: वेलकम बैक जी आपका इस मजेदार से खाने की बीच। हमारे साथ अगले कॉलर भी अब जुड़ चुके हैं। चलिए जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: रणवीर,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं रणवीर आप?
1: राजस्थान।
0: जोधपुर, राजस्थान। क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? अच्छा, 11वीं में। कौन सी स्ट्रीम से, क्या सब्जेक्ट लिया आपने 10th के बाद? साइंस बायोलॉजी। अरे वाह, क्या बात है। क्या मतलब, क्या टारगेट से, क्या बनना चाहते हैं आगे, क्या गोल्स है, क्या प्लान बना रखे हैं अभी से?
1: डॉक्टर।
0: डॉक्टर बनना है? अरे वाह, फैमिली में कोई डॉक्टर है या इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है ये?
1: बहुत सारे। हाँ, मेरे
0: बहुत सारे डॉक्टर हैं। अच्छा, वह कौन है डॉक्टर आपकी फैमिली में?
1: चाचा, बड़े पापा।
0: अच्छा, चलिए जी, बहुत बढ़िया। यूथ यूथ क्विज प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम आपके लिए पहला सवाल ये रहा।
2: विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शंस है रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन, फीमर पसली यानी कि रिब, भुजा की हड्डी यानी कि आम बोन।
1: फीमर।
2: क्या आप श्योर हैं?
1: यस।
2: बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।
0: रणवीर, आज की शाम आपके लिए अगला सवाल ये रहा। ओके, आपका सवाल है कि प्रतिवर्ष यानी हर साल दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। आपके पास ऑप्शंस हैं 5 जून, 6 जून, 7 जून या फिर 8 जून को मनाया जाता है।
1: यस।
0: क्या आप अपने जवाब के लिए श्योर हैं? पक्का?
1: पक्का।
0: चलिए जी, बहुत बहुत क्या शानदार, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है।
2: तो चलिए, दो जवाब जो हैं आपके सही हो चुके हैं, तो आपके लिए तीसरा सवाल और पेश है। विच इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ? पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं सीरियस, पोल स्टार, सूर्य या अल्फा स्टार।
1: अल्फा।
2: क्या आप श्योर हैं?
1: यस।
2: आपका ये वाला जवाब गलत है। इसका सही जवाब है सन यानी कि सूर्य, जो कि हमारे पृथ्वी के सबसे निकट तारा माना जाता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूथ क्विज प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ते रहिएगा यूथ के। फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे आज की शाम। अगर और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं नंबर्स पर जो कि हैं
2: 02 91 25 53 300 या फिर 02 91 25 54 300।

सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वेलकम बैक जी आपका एक बार फिर से यूथ क्विज प्रोग्राम। फिलहाल आज की शाम चल रहा है ओनली 102.1 एफएम पर और रईस आवाज का नाम आज आपके साथ है राहुल और मेरे साथ
4: आपकी रेडियो हम सफर डॉली
3: और हमारे साथ जो है अगले कॉलर भी फिलहाल जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
5: जी सर रघुवीर।
3: रघुवीर कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
5: बाड़मेर बायतू
3: से। क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए जरा।
5: सर पहले तो पढ़ाई कर रहे थे लेकिन अभी फिलहाल छुट्टियां हैं तो खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं।
3: अच्छा, पढ़ाई किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे आप?
5: जी सर 12वीं पास किया अभी।
3: अच्छा अभी 12वीं पास किया है, क्या आगे के क्या गोल्स हैं, क्या फाइनल कर मतलब क्या सोचा है, क्या करना है आगे जाके?
5: जी सर आगे तो मेडिकल फील्ड में ही थे तो फार्मेसी कर रहे हैं।
3: अच्छा फार्मेसी कर रहे हैं आप। अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। यूथ क्विज प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम आपके लिए पहला सवाल यह है, हाल ही में कौन महिला जो है वो पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? जस्टिस सुनिधि प्रताप सिन्हा, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, जस्टिस अवनी सिंह गोस्वामी, लास्ट ऑप्शन जस्टिस विशाखा सिंह चौधरी।
5: जी सर विशाखा सिंह चौधरी।
3: क्या आप अपने जवाब के लिए श्योर हैं?
5: जी सर।
3: ये जो जवाब है वो गलत है, इसका सही जवाब जो है वो जस्टिस मीनाक्षी मदन राय है जो कि हाल ही में महिला है जो पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भी कार्यक्रम हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे मजेदार से गाने और अगर हमारे साथ और भी कॉलर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं
4: 02915353300, 02915353300 पर।

0: बस तुमसे मिलने की देर थी और हमारे अगले कॉलर से हमें मिलने की देर थी, वो भी मुकम्मल हो चुकी है। हमारे अगले कॉलर फिलहाल हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? ओके जी, हमारे साथ उनका कनेक्शन फिलहाल नहीं बन पा रहा है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। कहाँ पे?
1: इन नंबर्स पर वो
0: ओके
1: नंबर्स है 02915253300, 02915253300 पर।
0: जी हाँ बिल्कुल, इन नंबर्स पर हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। यूथ क्विज प्रोग्राम फिलहाल आज की शाम चल रहा है, जो कि हर महीने के दूसरे और चौथे मंगलवार को आप एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, और आपके लिए बेहद ही काम की जानकारियां, काम के जो क्वेश्चंस, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो स्पेशली आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आप इस प्रोग्राम को सुनते, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए, और फिलहाल के लिए इन्जॉय कीजिए मज़ेदार सा गाना।

0: वेलकम बैक टू युवानी दोस्तों. क्या प्यारा सा सॉन्ग था ना राहुल. इतने प्यारे इसके लिरिक्स हैं कि दिल को छू जाते हैं. और वैसे ही हमारे दिल को छू जाने वाले हमारे श्रोता, हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार.
1: जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
2: कैलाश सारण.
1: कैलाश सारण, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: जालौर से.
1: जालौर से, क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए जरा.
2: मैं अभी फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ. अच्छा. वेटरनरी डिप्लोमा चल रहा है मेरा.
1: क्या बात है, वेटरनरी डिप्लोमा चल रहा है, फर्स्ट ईयर अभी आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में. तो पहले से डिसाइडेड था इसी फील्ड में जाना है या फिर बाद में आगे डिसाइड हुआ?
2: नहीं, पहले कोई डिसाइड नहीं था. पहले मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया था, फिर मेरे को लगा कि ये सही रहेगा.
1: अच्छा. तो इस भर्ती में मतलब कहाँ किस पोस्ट पे आदमी जाता है, कौन कौन से एग्जाम दे सकता है, उसके बारे में भी कुछ बताइए.
2: हाँ, इसमें LSA में लग सकते हैं.
1: अच्छा, लाइव स्टॉक असिस्टेंट. अरे वाह, तो यही बन सकते हैं इस डिप्लोमा के बाद भी, फिर और भी कोई भर्तियां आती है?
2: और भी आती है सर, जैसे अपन प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं.
1: अच्छा. चलिए बढ़िया, यूथ को इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज की शाम आपके लिए पहला सवाल ये है, किस भारतीय मूल के छात्र ने अमेरिका में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026, एक प्रतियोगिता का नाम है, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 में ये प्रतियोगिता उन्होंने जीती है. कौन है वो? भारत मूल के हैं छात्र, आपके पास ऑप्शन है. पहला ऑप्शन श्रेय पारिक, अजय निगम, शंकर चतुर्वेदी या फिर सुनील जाटव.
2: चार नंबर ऑप्शन.
1: क्या आप अपने जवाब के लिए श्योर हैं? सुनील जाटव आप बता रहे हैं?
2: यस.
1: ओके, ये आपका जो जवाब है वो गलत है. इस सवाल का सही जवाब है श्रेय पारिक, जो कि इन्होंने भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में आयोजित होने वाली इस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. और भी कार्यक्रम हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़ते रहिएगा. फिलहाल अगर और भी कॉलर हमारे साथ अगर जुड़ना चाहता है आज की शाम यूथ क्विज प्रोग्राम में तो जुड़ सकता है.
0: वो जुड़ सकते हैं हमारे नंबर्स पर, और नंबर है 02915235300, 02915235300 पर.

0: क्या बात है, क्या बात है। बेहतरीन सा म्यूजिकल ट्रैक आपने एंजॉय किया आज की शाम प्रोग्राम युवानी में। यूथ क्विज प्रोग्राम चल रहा है और आप एंजॉय कर रहे हैं यूथ क्विज प्रोग्राम कहाँ पर, ओनली ऑन 102.1 एफएम पर। इस आवाज का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं
1: डॉली। तो राहुल, और भी कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं, लगता है एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हाँ नमस्कार जी।
1: नमस्कार, आपका नाम?
2: मैं दीक्षित।

0: बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका युवाणी के यूथ क्विज प्रोग्राम में। अभी फिलहाल हमारा क्विज प्रोग्राम चल रहा है और
2: आज की शाम आपके लिए पहला सवाल ये रहा। आपको बताना है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 31 मई, 1 जून, 2 जून या फिर 3 जून को।
0: 3 जून को।
2: क्या आप अपने जवाब के लिए श्योर हैं?
0: जी
2: चलिए जी, आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है।
1: वहीं आपके लिए दूसरा सवाल ये रहा।

0: ये रहा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी श्याम लाल मीणा का 61 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? आपके ऑप्शंस है जिम्नास्टिक्स, तीरंदाजी, बास्केटबॉल या क्रिकेट।
1: तीरंदाजी होगा, कंफर्म नहीं है लेकिन तीरंदाजी है, इतना याद नहीं।
0: तो आपका, आप श्योर हैं इस बारे में कि तीरंदाजी ही आपका जवाब है?
1: श्योर तो नहीं है लेकिन क्या करें, ऑप्शन तो देना पड़ेगा ना, कोई नहीं।
0: तो आपका ये जो जवाब है तीरंदाजी, वो बिल्कुल सही है।
2: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, यूथ को इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। और भी कॉलर हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं 02915353 या फिर 02915354300 पर। और हमारे साथ अगले कॉलर, जी हाँ बिल्कुल, लगातार अगले कॉलर भी अब जुड़ चुके हैं, क्या बात है। चलिए जी, इंट्रोडक्शन करने के सिलसिले में सबसे पहले आपका नाम?
3: नाम अरविंद चौधरी।
2: अरविंद चौधरी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: हम सारोड़ी गांव जोधपुर से।
2: क्या बात है, क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप?
3: नाइन्थ में
2: पढ़ रहे हो, अरे वाह, यूथ क्विज प्रोग्राम को सुन रहे हो, आपने पार्टिसिपेट किया, क्या बात है। मतलब क्या सोचा है, क्या प्लान है, क्या बनना है आगे जाकर?
3: आर्ट्स लेनी और पुलिस बनना है।
2: आर्ट्स लेनी और पुलिस बनना है, अभी से ही मतलब क्लियर है पूरा।
3: हाँ।
2: तो पुलिस में क्या मतलब, आईपीएस बनना है या सब इंस्पेक्टर बनना है, क्या बनना है?
3: थाना अधिकारी,
2: सब इंस्पेक्टर बनना है।
3: आ,
2: अरे वाह, आपकी फैमिली में कोई और है जो पुलिस में सर्विस करते हैं? किससे इंस्पिरेशन मिली आपको?
3: हाँ, मेरे पापा है, मेरे दो चाचा हैं।
2: अच्छा, वो दोनों पुलिस में ही सर्विस करते हैं?
3: हाँ, तीनों।
2: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और आप भी ये चाहते हैं कि मैं भी इसी सेवा में जाऊँगा ना?
3: हाँ
2: बिल्कुल, आपका ये सोचना है अभी से, जो दृढ़ संकल्प है जरूर कामयाब होगा। यूथ क्विज प्रोग्राम में आप आज बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताना है आज की शाम आपके लिए ये रहा पहला सवाल। आपको बताना है प्रतिवर्ष दुनिया भर में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 1 जून, 2 जून, 4 जून या फिर 5 जून को।
3: 5 जून को।
2: पक्का श्योर है अपने जवाब के लिए?
3: हाँ।
2: क्या बात है, आपका जवाब बिल्कुल सही है।
0: बिल्कुल, क्या बात है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं ये दूसरा सवाल। हाल ही में कौन पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है? आपके ऑप्शंस है सुमन राजपूत, सुनीता चावला, प्रियांशी सिन्हा, नीलम मीणा।
3: नीलम मीणा।
0: क्या आप श्योर हैं?
3: हाँ।
0: बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।
2: ओके, क्रिकेट देखते हैं आप?
3: क्रिकेट कभी कभी देखता हूँ।
2: कभी कभी देखते हो?
3: हाँ।
2: अच्छा, चलिए जी, आपको बताना है कि इस बार जो आईपीएल हुआ है 2026 का, क्रिकेट टीम ने, कौन सी ऐसी टीम है जिसने जो 2026 का ये आईपीएल का खिताब जीता है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या फिर सनराइजर्स हैदराबाद।
3: सनराइजर्स हैदराबाद
2: ने जीता है?
3: पूरा श्योर नहीं है।
2: अच्छा, आप, मेरे को लगता है क्रिकेट कम देखते हैं, पढ़ाई पे पूरा जोर लगाते हैं ना?
3: क्रिकेट इतना नहीं देखते, फोन देते नहीं है।
2: अरे वाह, क्या बात है, मतलब घर वाले भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि आपको पुलिस बना के छोड़ेंगे वो अब तो। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो आपको बता देता हूँ, इस सवाल का सही जवाब आईपीएल 2026 का जो खिताब है ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता, और 2025 वाला भी इन्होंने ही जीता था। ठीक है, डन। चलिए जी, बढ़ेंगे आगे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं यूथ को इस प्रोग्राम में तो जुड़ सकते हैं 02915353300 पर और 02915354300 पर। फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने और अगला गाना आपकी नजर ये पेश है साहब।

0: में। और हमारे जो श्रोताओं का कॉलर और जो यंग बच्चे जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, उनका जुनून भी मतलब मुझे कमाल का नजर आ रहा है। फिलहाल अगले कॉलर में हमारे साथ आज की शाम फिर जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पार्वती। पार्वती, कहाँ से बात कर रही हैं पार्वती आप?
1: किचन गांव से।
0: खीचन गांव से। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप?
1: एक
0: 8th में। अच्छा, 8th क्लास में भी पढ़ रही हैं। आगे जाकर क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या बनना है, अभी से कुछ सोचा है या फिर बाद में सोचना है?
1: साइंस लेनी है।
0: अच्छा, साइंस लेनी है, तो क्या बनना है साइंस लेकर?
1: डॉक्टर।
0: डॉक्टर बनोगे? अरे वाह, आप डॉक्टर बन जाओगे बिल्कुल, अगर लगातार पढ़ाई करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे। यूथ क्विज प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम आपके लिए ये रहा आपका पहला सवाल।
2: किस ग्रह पर सबसे अधिक चंद्रमा है? विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स? आपके ऑप्शंस है बृहस्पति, जुपिटर, मंगल यानी मार्स, शनि यानी सैटन, वरुण यानी कि नेपच्यून।
1: डी ऑप्शन।
2: क्या आप श्योर हैं?
1: हाँ।
2: डी ऑप्शन यानी कि नेपच्यून आपने चूज किया है। आपका ये जवाब गलत है, सही जवाब है सैटन।
0: चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए यूथ क्विज प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया, और भी आगे पार्टिसिपेट करते रहिएगा। अगर और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं
2: इन नंबर्स पर, और वो नंबर्स है 02915253300, 02915253300।
0: चलिए जी, हमारे साथ अगले कॉलर भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएंगे इस नंबर पर। और फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे म्यूजिकल कारवा में ये अगला म्यूजिकल ट्रैक।

0: वेलकम बैक जी, आपको एक बार फिर से यूथ क्विज प्रोग्राम फिलहाल चल रहा है और हमारे साथ अगली कॉलर भी अब जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: सुरेश,
0: सुरेश, आज की
1: हेलो।
0: शाम आपके लिए ये रहा आपका पहला सवाल।
1: आइए।
0: किस आपको बताना है, किसे BSF में हाल ही में आपको बताना है? आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पर जो कि हैं
2: 02 91 25 53 300, 02 91 25 54 300 पर।
0: पढ़ेंगे आगे, सुनेंगे म्यूजिकल कारवां में अगले म्यूजिकल ट्रैक।

0: क्या बात है, क्या बात है। बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक हमने एंजॉय किया टू स्टेट्स मूवी से, मस्त मगन, और हम भी मस्त मगन हो रहे हैं, आप भी इन गानों के साथ ऑब्वियस है मस्त मगन हो ही रहे होंगे। फिलहाल प्रोग्राम युवाणी चल रहा है, आप सुन रहे हैं ऑनली 102.1 FM पर, और इस वक्त आज की शाम यूथ क्विज प्रोग्राम है, जिसे आप दूसरे और चौथे मंगलवार इंजॉय करते हैं। देखो भैया, युवाओं का प्रोग्राम चल रहा है, यूथ प्रोग्राम चल रहा है, और आज के दिन कुछ नॉलेजेबल बात ना हो तो मतलब कैसे कैसे काम चलेगा। आज काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि अब बताने वाले हैं आपको आज का वर्ड ऑफ द डे। डॉली क्या है
1: आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है सेवा, यानी कि SAVOR, मतलब टू एंजॉय अप्रिशिएट योर एक्सपीरियंस समथिंग स्लोली एंड कम्प्लीटली, यानी कि किसी भी पल, किसी भी अनुभव को, किसी भी भावना को पूरी तरह हम आनंद लेके उसे महसूस करें। राहुल, आजकल की जो ये हमारी फास्ट लाइफ है, उसके अंदर हर चीज़ हमें जल्दी जल्दी करनी है, कि खाना खाते तो जल्दी जल्दी खाओ, गाने सुन लिए तो नेक्स्ट ट्रैक, फटाफट नेक्स्ट ट्रैक लगाओ, सफ़र करते हैं तो हमें जल्दी जल्दी करना है, तो हर चीज़ अपना एक टाइम मांगती है जो कि हम उसे देते नहीं हैं, और इसी वजह से हम उसे अच्छे से इन्जॉय भी नहीं कर पाते हैं। तो सेवा हमें सिखाता है कि रुक कर हमें पूरी तरह महसूस करना चाहिए हर एक पल को।
0: इस एग्जाम्पल के जरिए भी बता दो एक लाइन में कि भाई इसका ये मतलब होता है।
1: जैसे कि डोंट रश योर मील, सेव एवरी बाइट, यानी कि हर बाइट को हमें अच्छी तरह आनंद लेना चाहिए,
0: एंजॉय करना चाहिए। जैसे कि आज की शाम अब आपके सामने अब चाय आने वाली होगी, तो उसका आपको लुत्फ उठाना है, जल्दबाजी में नहीं पीना, आराम से चुस्कियाँ लेनी चाय की और मज़े से पीना उसको, उसको उसको आनंद लेना है, पीना है, चाय को गटकना नहीं है, पीना है आराम से। और फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे, मज़ेदार से गानों का कारवा तो चल ही रहा है, अगला गाना आपकी नज़र पेश है साहब।

0: तुम तक और आज का हमारा और आपका जो साथ था वो यहीं तक था। प्रोग्राम युवाणी में यूथ क्विज प्रोग्राम को आज की शाम एंजॉय कर रहे थे मैं राहुल और मेरे साथ
1: आपकी रेडियो हम सफर डॉली। और आज हमने बहुत सारी बातें की और श्रोताओं से बहुत सारी प्यारी प्यारे से सवाल पूछे, उन्होंने जवाब भी काफी बढ़िया दिए।
0: आज के कार्यक्रम का संयोजन रहा मनीष कुमार सोलंकी, प्रस्तुति रही राजेश शर्मा, मरोड़ की कंसोल पे हमारे साथ मुस्कान। हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सन सिटी चैनल है। सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमरीका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $100,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $100,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

नमस्कार जोधपुर। आसमान में घुलती हुई शाम की लाली और दिन भर की भागदौड़ को थोड़ा पॉज करने का वक्त अब आ गया है। आप सुन रहे हैं FM सन सिटी पर आपका अपना कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर और मैं

क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाएं।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचरन जीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

दिन चाहे कितना भी हेक्टिक क्यों ना रहा हो, चाहे फाइल्स और डेडलाइंस के बीच बीता हो या घर के छोटे बड़े कामों में, अब घड़ी का गियर थोड़ा शिफ्ट करने का वक्त है। आप शायद इस वक्त घर लौट रहे हैं, ट्रैफिक में हैं, या शायद अपनी बालकनी में बैठकर शाम की उस पहली गर्मा गर्म चाय का इंतजार कर रहे हैं। ये जो ढलते हुए सूरज के बाद का वक्त होता है ना, ये बिल्कुल आपका अपना होता है, और इस वक्त में सुकून खोलने के लिए संगीत से बेहतर हम सफर भला और क्या ही हो सकता है।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर, आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सन सिटी चैनल है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला विविध भारती मुंबई से।

0: ही कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति के साथ, यानी आपको सुनवाएंगे ये देशभक्ति से भरा हुआ गीत। इसे हमने लिया है फिल्म देश प्रेमी से। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये।

0: सेना।
1: अभी आपने सुना भारतीय सेना का गीत। गीत संगीत और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। आइए अब सुनते हैं अमित कुमार और आशा भोसले की आवाजों में बातों बातों में फिल्म का ये गाना। इसे लिखा है योगेश ने, संगीत से सवारा राजेश रोशन ने।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत है, संगीत आनंद मिलिन का, फिल्म का नाम लाल दुपट्टा मलमल का।

0: आइए अब सुनते हैं चरस फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: दिल

अभी आपने किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में इंकार फिल्म का गाना सुना। गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था, संगीत था राजेश रोशन का। जयमाला का शेष भाग अंतराल के उस पार।

अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं रूना लैला की आवाज में घरौंदा फिल्म का ये गाना। इसे लिखा है नक्श लालपुरी ने, संगीत जयदेव का है।

आइए अब सुनते हैं सागर फिल्म का ये गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत जावेद अख्तर का है, संगीत आर डी बर्मन का।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में पॉप एक्सप्रेस। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं करण औजला और नेहा कक्कड़ की आवाजों से। एल्बम का नाम है आय हाय, गीत करण औजला और संगीत है करण औजला और जय ट्रैक का। आइए सुनते हैं ये गाना।

आइए अब सुनते हैं अनामिका की आवाज़ में कैटवॉक एल्बम का ये गाना। इसे लिखा है अनामिका और राजीव आनंद ने, संगीत है एडविन ए जे फर्नांडिस का।

आइए अब सुनते हैं साकेत सिंह की आवाज में ये गाना। संगीत साकेत सिंह और निरंजन का है, गीत है साहिल सुल्तानपुरी का।

0: नहीं, ओफो, ये कमबख्त दाढ़ी भी महंगाई की तरह रोज बरोज बढ़ती जाती है। अजीब इल्लत है, चाहे साबुन मिले ना मिले मुंह पर झाग मलते रहो। मैं कायर तो नहीं मगर
1: पुष्पजी खिल रहे हो अर्थात अंदर विराज रहे हो क्या? बड़ा सन्नाटा लगा रखा है।
0: आइए दुख घोटन लाल जी, आइए पधारिए।
1: पधारते हैं तनिक चरण दासियों से मुक्ति पा लें अर्थात जूतियां उतार लें। लो भाई पधार गए, कहाँ रखें अर्थात तशरीफ? इधर ही कोने में रखते हैं, पंखे की शीतल वायु लगती रहेगी। हाँ भाई एक शुभ समाचार है।
0: कह डालिए पंडित जी, मन व्याकुल हो रहा है।
1: पहले यह बताओ कि तुम्हारी राशि क्या है?
0: है ये क्या वस्तु होती है पंडित जी?
1: क्या वस्तु होती है? कव्वे की चोंच की भस्म होती है
0: जी?
1: राम राम धर्म कर्म तुम नवयुवकों ने विक्रय करके भक्षण कर लिया है अर्थात बेच खाया है, जन्म राशि नहीं जानते। अच्छा तुम पहले मुख रोमों का खुरचन निपटा लो अर्थात दाढ़ियां बना लो तो बात करूं।
0: जी पंडित जी मैं दाढ़ियां नहीं दाढ़ी बना रहा हूं, सिर्फ अपनी मोहल्ले भर की नहीं।
1: काश मोहल्ले की बनाते तो धना लाभ तो होता। खैर भाई कहने का अर्थ यह है कि कई राशियां होती हैं जैसे सिंह मीन कर्क कन्या तुला आदि अर्थात

0: शेर, मछली, मकड़ी, लकड़ी, लड़की, तराजू वगैरह वगैरह, इनमें से तुम्हारी कौन सी?
1: जी ना मैं लड़की हूँ, ना तराजू, ना शेर हूँ, ना मछली, सिर्फ दिवाकर नाथ पुष्प हूँ और बस।
0: काश तुम लड़की होते
1: जी,
0: मेरा तुम्हारा परिचय तो ना होता। मैं तुम्हारे लाभ की सोच रहा हूँ और तुम परिहास फ्लाई कर रहे हो, अर्थात मजाक उड़ा रहे हो। जानते हो ये कपड़ा क्या वस्तु है?
1: जी वो जूता पोछने का चीथड़ा लगता है।
0: तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अर्थात खलास हो गई है। अरे बांगड़ू, यह है राशि फल।
1: जी कौन सा फल?
0: राशि फल अर्थात राशि के अनुसार भविष्य का पूरा हाल। हमारे महापंडित ज्योतिषी ने 21 दिवस सिर्फ कद्दू खाकर बांचा है।
1: हाँ।
0: कागज की कमी के कारण उन्होंने इसे कपड़े पर छपवाया है। यदि हमें तुम्हारी राशि मालूम होती तो भविष्य बांच देते। ठहरो, पहले तुम्हारी राशि निकालते हैं। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम किस वर्ष, किस महीने, किस दिन, कितने बजकर कितने मिनट पर कहाँ और क्यों पैदा हुआ?
1: है, है, है, पंडित जी मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। डेट ऑफ बर्थ पिताजी के पास थी, सो तो परलोकवासी होते गए, या फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट में है जो दफ्तर में जमा है। बहरहाल इतना मुझे अवश्य याद है
0: क्या क्या
1: कि मैं पैदा अवश्य हुआ हूँ।
0: और नहीं तो क्या लैटरी में निकले थे? काश तुम पैदा ना हुए होते तो पृथ्वी का बोझ 200 पाउंड हल्का तो रहता है। क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम किस मौसम में पैदा हुए?
1: जी वो बरसात में है।
0: बरसात में? शाबाश शाबाश, अर्थात अगस्त में। या तुम्हें कैसे मालूम?
1: मुझे याद है पंडित जी कि मेरे पैदा होने से पूर्व जब पापा जी नर्स को बुलाने गए थे तो मम्मी ने कहा था कि छाता लेते जाइए, यानी बरसात थी।
0: पुनः शाबाश। अब जरा ये भी बताओ
1: जी
0: कि वो अगस्त का कौन सा सप्ताह था जब तुम्हारे जन्म की दुर्घटना हुई थी?
1: जी पहला हफ्ता।
0: भाई पुनः पुनः शाबाश। अच्छा यह कैसे विश्वास हो कि वो अगस्त का पहला सप्ताह था?
1: पहले सप्ताह में तनख्वाह मिलती है पंडित जी। पापा के पास पैसे थे तभी तो नर्स बुलाने गए, वरना दाई पकड़ लाते। बात साफ है।
0: अरे मुझे भयंकर प्रसन्नता हुई, तुम कितने समझदार हो। अच्छा उस समय दिन था या रात थी?
1: जी रात थी। मेरे जन्म से पहले पापा छाते के साथ टॉर्च भी ले गए थे। दिन होता तो छड़ी ले जाते।
0: बस बस बस, बस पर्याप्त है। अगस्त पहला सप्ताह रात। भाई तुम्हारी राशि मीन है, अर्थात तुम मछली हो।
1: व्हाट डू यू मीन पंडित जी?
0: नाराज ना हो, नाराज ना हो, मैंने कोई अंग्रेजी वाला मीन थोड़ा ही कहा है। मीन यानी मछली, अर्थात फिश।
1: मैं मछली हूँ? कौन सी? रेहू, टेंगन, पढ़न या वे? धीरे बोलिए पंडित जी, पड़ोसियों को पता लग गया कि मैं मीन यानी मछली हूँ तो कांटिया डाल देंगे और पकाकर हड़प कर जाएंगे। अजी सुनती हो?
2: क्या है?
1: मैं मछली हूँ।
0: काश तुम गधे होते, गधे। अरे मैं तुम्हारा भविष्य बांचने जा रहा हूँ और तुम दादुर अर्थात मेंढक की नाई टर्रा रहे हो। शांत रहो।
1: जी मैं एकदम शांत हूँ। हाँ पंडित जी इतना ध्यान रखिएगा कि कोई लॉटरी वॉटरी निकल रही हो तो बहुत आहिस्ता से कहिएगा, और अगर खर्च बढ़ने की संभावना हो तो वॉल्यूम जरा ऊंचा कर दीजिएगा ताकि अंदर रसोई में ये जो मोहब्बत है वो भी सुन ले।
0: राम
1: वाची पंडित जी।
0: माता च पिता त्वमे।
1: वो मेरे माता पिता नहीं है, उन्हें क्यों बुलाते हो?
0: पक पक पर पूर्ण विराम रखो, अर्थात चुप रहो।
1: जी
0: सुनो
1: जी,
0: लिखा है इस मास मंगल शनि पर राशन पानी लेकर हावी है, अर्थात तुम्हें वो धन मिलेगा जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं।
1: हाय सच। अजी सुनती हो? वो जो हमारे मझले साले साहब मुझसे पिछले महीने पैसे उधार ले गए थे, अरे भाई पिक्चर देखने के लिए, वो धन लौट आएगा। बहुत अच्छे पंडित जी, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो।
0: अरे महापंडित जी लिखते हैं कि मीन राशि वालों का स्वास्थ्य अर्थात सेहत उत्तम रहेगी, शरीर में नई उमंगे पैदा होंगी और नया खून बनेगा।
1: ठहरो ठहरो पंडित जी, मेरे मस

0: पास फड़क रहे हैं, हैं, हैं, बाजू ऐश रहे हैं, हैं, जरा एक मुझे किंग कॉन्ग, गामा और सैमसन के पते देना, मैं तीनों को इकट्ठा पछाड़ कर नाम कमा लेना चाहता हूँ।
1: पता नहीं अगले महीने सेहत ठीक रहे ना रहे।
2: शांत हो जाओ, शांत, उतावले मत बनो, जरा अपनी जन्मपत्री मंगा लो, तुम्हारे ग्रह तगड़े बन रहे हैं।
1: जन्मपत्री कहाँ से लाऊं?
2: जरा भीतर पत्नी से पूछो, शायद उनके पास हो।
1: वो कोई मेरे घर थोड़ी ही पैदा हुई थी, जन्मपत्री उसके पास होगी, वो भी मेरे जन्म के 4 साल बाद जन्मी थी, काफी जूनियर है।
2: जूनियर है, खैर आगे सुनो, घर में नया मेहमान आएगा
1: जी।
2: काफी चहल पहल रहेगी
1: जी,
2: नया सामान खरीदोगे, सजावट बनी रहेगी, धूमधाम रहेगी।
1: पंडित जी जरा नजदीक खिसक आइए, क्या मेरे लिए विवाह का जुगाड़ बन रहा है? है लड़की कैसी है, कहाँ तो पढ़ी है, किसी एक्ट्रेस से मिलती जुलती है कि नहीं?
2: जमाखोर, क्या एक पत्नी पर्याप्त नहीं? शिव शिव शिव, आगे सुनो बंधु, किन्हीं कारणों से तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी, सैकड़ों के बीच में नाम ऊंचा होगा।
1: हाय पंडित जी, है अपने चरण दीजिए चरण, उनकी गंदगी साबुन से धोकर अपने माथे लगाऊंगा। आप धन्य हो पंडित जी,
2: सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, अर्थात जीते रहो
1: जी।
2: हाँ भाई, अंत में लिखा है कि इस मास की तारीख 5, 13 और 29 से सावधान रहना।
1: 5 और 13 तो बीत गई पंडित जी, बस 29 आज है, मैं ओढ़कर मच्छरदानी में लेट जाता हूँ, सुरक्षित रहूंगा।
2: अच्छा तो अब चले, कई जिजमानों की अंतिम क्रिया में जाना है
1: जी।
2: वैसे हमें तुम्हारा भी काफी ख्याल है।
1: प्रणाम पंडित जी।
2: आयुष्मान भव।
1: पंडित जी, वो छाता मेरा है जिसे आप ले जा रहे हैं।
2: श्याम रंग देखकर भ्रम हो गया, हमारा छाता भी काला है।
3: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
0: अजी मैंने कहा कृपया सुनती हो?
4: इतनी ऊंची आवाज तो पड़ोसी तक सुन रहे हैं। आज्ञा दीजिए, बंदी हाजिर है।
0: हाय, आज तुम किस कदर मुगलिया हो रही हो, जाने बहार, कहना ये है कि मैं मछली हूँ।
4: तो क्या मैं कढ़ाई में तेल चढ़ा दूँ?
0: देखो जी, मजाक ना करो, मेरी राशि मछली है। जरा मेरी छपी हुई रचनाओं वाले अखबार तो लाना, मैं आज ही शुभ मुहूर्त में संकलन छपवाने का प्रोग्राम बनाता हूँ।
4: अखबार?
0: हाँ।
4: वे तो सब मैंने रद्दी में बेच डाले।
0: क्या रद्दी में बेच डाले? मर गया, सारी रचनाएं गई। पंडित ठीक कहता था कि धन लाभ होगा, हो गया।
4: I'm sorry, मुझे क्या मालूम था कि उनमें आपकी रचनाएं हैं। हाँ, ये चिट्ठी है आपकी।
0: चिट्ठी? कोर्ट समन, मकान खाली करने का मुकदमा।
4: क्या?
0: आज ही पेशी है, सैकड़ों के बीच नाम पुकारा जाएगा, दिवाकर नाथ कोई हाजिर है? पंडित सच कहता था कि सैकड़ों के बीच नाम ऊंचा उठेगा।
4: अरे तो निराश क्यों होते हो, एक शुभ समाचार भी है। आज ही शाम की गाड़ी से मेरे बड़े भैया 7 बच्चों और भाभी सहित आ रहे हैं, खूब चहल पहल रहेगी।
0: और बच्चे क्रॉकरी तोड़ेंगे, मैं नई खरीदूंगा, काफी धूमधाम मचेगी। अरे भगवान, पंडित ठीक कहता था। ओह, मैं मर क्या? गाड़ का दर्द बढ़ रहा है।
4: अरे आपका तो दाहिनी ओर का चेहरा काफी सूज गया है।
0: पंडित ठीक कहता था, सेहत बढ़ेगी, मेरे दाहिने गाल की सेहत बढ़ती जा रही है, शरीर में नया खून बनेगा, जरा 2-4 बोतल खून भी चढ़वा दो।
4: हाँ, महीने के आखिर 29 तारीख को डॉक्टर भी कैसे बुलाया जाए, फीस भी तो देनी होगी।
0: हाँ, पंडित ये भी ठीक कहता था, 29 तारीख से सावधान रहना। हाय पंडित, तू मुझे मीन यानी मछली बनाकर कांटे में फंस गया। ओहो, काश मैं रुक कर पैदा हुआ होता तो सिंह यानी शेर होता, लेकिन मछली।

लाल जब से देखा तुझको मुझको स्विमिंग भी आ गई, मैं मछली तो नहीं।

मैं मछली तो नहीं, झलकी अभी आपने सुनी। लेखक के पी सक्सेना, निर्देशक पुरुषोत्तम दार्भेकर। ये झलकी विविध भारती की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उन किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अरिजीत सिंह के गाए यारियां फिल्म के इस गाने के साथ। इसे लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का है।

अब सुनते हैं के और शिल्पा राव की आवाजों में बचना ए हसीनो फिल्म का गाना, गीत अन्विता दत्त गुप्तन का है, संगीत विशाल शेखर का।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए एआर रहमान की आवाज में हाईवे फिल्म का ये गाना। इसे लिखा है इशात कामिल ने, संगीत एआर रहमान का है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित

0: बड़ा विषय है, इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू

0: रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूं।
2: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों पश्चिम बंगाल के हिमालय के

तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश के गाए इस गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म हिमालय की गोद में से। गीतकार हैं कमल जलालाबादी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

कार्यक्रम का अगला गाना जलती फिल्म से है। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एस डी बर्मन ने।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में है। फिल्म का नाम है दिल देके देखो। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत उषा खन्ना का।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, फिर जो हो सो हो, फिर जो हो सो हो।
1: अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना दिल दे के देखो फिल्म का ये गाना। आइए अब सुनते हैं तेरे घर के सामने फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीत एसडी बर्मन का, आवाज है मोहम्मद रफी की।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आराधना फिल्म का गाना। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत एस टी बर्मन का।

0: इसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया कहने के यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते दो लाइन चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में को थे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर।
1: वो जब याद आ

असद भूपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्ला खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर, वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर में दिए हैं। उन्हीं में से एक जगमगाता नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली कोई 28 साल के रहे होंगे जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया, ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का।

सियासत भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ, ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे SF हसनैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे, लिखने वाले थे

असद भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे SF हसनैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नजर पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाय खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया जिनके भोपाल शहर में दो थिएटर थे मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो फाजली साहब के सामने उन्होंने मदद की पेशकश करते हुए मशवरा दिया कि भोपाल शहर में शायरों की कमी नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं एक मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज फाजली ब्रदर्स को पसंद आई। भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और SF हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ।

फिल्म दुनिया में असद भोपाली के दो गाने थे, रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के दो गाने लिखने का उन्हें ऑफर मिला, इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे, संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। अब आपको सुना रहे हैं आगे बढ़ने से पहले ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने।

सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे। वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे श्याम सुंदर।

सन 50-51 के आसपास बी आर चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित होसन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में, इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफी मकबूल भी हुए थे।

फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थीं। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। इस फिल्म के दो संगीतकार थे, एक खयाम साहब और दूसरे धनीरा।

दूसरे गीतकारों में थे जानेसार अख्तर, कैफी आजमी और शेवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था, मुबारक बेगम का गाया हुआ, कलियों को चूमूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने कुल 100 के आसपास फिल्मों में गाने लिखे, करीब करीब 400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है।

पंडित हुसैन लाल, पंडित भगत राम, सी राम चंद्र, खय्याम, हंसराज बहल, लच्छी राम, धनी राम, दत्ता राम, पंडित शिव राम, श्याम सुंदर, एन दत्ता, नौशाद, ए आर परेशी, चित्रगुप्त, रवि, सी अर्जुन, सोनी कोमी, राजकमल, लाला सत्तार, हेमंत कुमार, मानस मुखर्जी, कल्याण जी आनंद जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा काम उन्होंने गणेश और उषा खन्ना के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी आनंद बख्शी साहब के साथ साथ असद भोपाली से गाने लिख पाए थे। फिल्म पारसमणि के जो दो गाने हैं, वो जब याद आए, बहुत याद आए, और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये काफी मकबूल हुए थे।

अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब का एक अनोखा शाहकार था फिल्म लव एंड गॉड। इस फिल्म के लिए भी असद भोपाली साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया। नौशाद साहब का संगीत सब कुछ अमर सा लगता है।

सन 1989 में सूरज बड़जात्या ने बड़ी ही खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई मैंने प्यार किया। इस फिल्म का कबूतर जा ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, पर अफसोस इस गाने को जो सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला उसे लेने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे असद भोपाली साहब भोपाल से मुंबई न आ सके।

जून सन 1990 को इस शायर गीतकार असद भोपाली ने बगैर किसी अहलो अयाल के अपने शहर भोपाल से दुनियाए फानी को अलविदा कहा।

आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर, शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। रात आती है तो साथ लाती है ख्वाबों का जहां, साथ लाती है ढेर सारी यादें। यादों में एक अनोखी दुनिया होती है, जिंदगी की पुरानी तस्वीरें होती हैं यादों में। यादों की चौखट पर बैठ

एक रात मुराद पूरी होने की रात, एक मुराद चांद पर पहुंचने की, एक मुराद चांद को देखने की। चांद और रात ये एक दूसरे के हम सफर हैं। एक रात यादों की रात, यादों में मोहब्बत के चिराग जलाए, गम के मध्यम आंच पर जज्बात पिघले, ख्यालों में उनका मुस्कुराना और फिर उदास हो जाना, यादों में सितारों को हथेली पर रोपना और मुस्कुरा देना। इन दिनों दिल इन्हीं में रहता है मसरूफ।

गम का साया दिल के किसी कोने में पुराने सामान की तरह रखा था, पर उन्होंने एहसास दिलाया कि जिंदगी गमों के टूटे फूटे टुकड़ों से भी सजी होती है। गम के एहसास के बाद खुशी दोगुनी हो जाती है। एकाकीपन के साये में होता है साथ का एहसास। उन्होंने याद दिलाया, जिंदगी मोहब्बत से सजती है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। ये दिल को क्या हुआ, अपने काबू में न रहा, औचक दिल में बातों का सागर भर गया, औचक आंखें खोई खोई सी रहने लगी, बिना बात होठों पर मुस्कुराहट तिरने लगी, आंखें बिना काजल कजरारे लगने लगी। ये शायद किसी के आने की चाप है जिसने दिल का मौसम बदल दिया।

वक्त के धारे मोड़ दिए उन्होंने, उगते सूरज की लाली ने चेहरे को रंगीन बना दिया और दिल को हसीन। भली सी सूरत, भला सा नाम, दिल की धड़कन बन गए, निगाहों से वे दिल में समा गए। उनके हुस्न का जादू आंखों में तिराया, उन्होंने दिल से करार किया और मासूम दिल उनकी मोहब्बत के गिरफ्त में आ गया।

उनके आने से पौधों में अंकुर फूटे, खिले कलियां मुस्कुरा उठी, फूलों में ताजगी आ गई, बारिश की बूंदों से सज उठी धरती। उनके आने से आसमान में जैसे किसी ने नीला रंग छिड़क दिया हो। खुशनसीब दिल को एहसास हुआ कि उसे प्यार हो गया है। सारी कायनात जब खूबसूरत लगने लगे तो समझो कि उसे प्यार है किसी से।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सच है क्या सब सच।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है।

0: सुनेंगे समाचार कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनिमय संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेक राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर रात्रि के ठीक 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। कल सवेरे 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।